0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर में एक बात से हमने शुरू किया था कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वही हमारा भाग्य या हमारी डेस्टिनी लिख देते हैं। और आज अगर हम देखें इस पूरी बातचीत को जो हमने किया, पूरी सीरीज में हमने ये बात जान ली है कि हमारा पहले थॉट ये रहता था कि मैं ये शरीर हूं और उसीलिए सारी जो चीजें जुड़ी हुई होती थी वो इस शरीर से जुड़ी रहती थी और हमारा भाग्य हमारी डेस्टिनी लिख देता था ये थॉट। आज हमने उस थॉट को थोड़ा सा बदला, हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा जो प्रेम से भरी है, जो शांति स्वरूप है, और हमारा भाग्य एक नए रूप में हमारी डेस्टिनी सामने आई। एक और बात जो इस पूरे सफर में हमारे सामने आई है कि जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इस जन्म में या फिर कार्मिक फिलॉसफी को अगर हम देख रहे हैं तो पिछले कई जन्मों से जो होता आ रहा है, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ और क्या जो आज मेरे साथ हो रहा है उसे मैं बदल सकती हूँ, क्योंकि बदलना भी मेरे ही हाथ में होगा। कैसे हो पाएगा ये सब कुछ, इसी को जानने के लिए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और हर बार की तरह इस सफर में हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने सफर तय किया, जो आज मैंने कहा भी है अभी, वो सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे सोए हुए को एक जागरण हुआ है, एक अवेकनिंग हुई है और रियलाइजेशन हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक जर्नी की हमने बात की थी, जो पूरा कि कर्म का जो एक पूरा एस्पेक्ट था, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने मान लिया, एक्सेप्ट है कि जिसकी मैं, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्या जो मैं आगे चाहती हूँ उसको बदल सकती हूँ?
1: जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेवार मैं हूँ, इसलिए उसको बदलना भी
0: मेरे अपने
1: हाथ में है। अभी तक क्या था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे वजह से नहीं है, वो औरों की वजह से है, वो परिस्थिति की वजह से है, वो कोई मेरे गलत समय मेरा चल रहा है या बैड लक है,
0: ये मेरा मानना चलता जा रहा है,
1: ये सब जो बातें थी, तो इट वाज एवरीथिंग व्हिच वाज नॉट इन माय कंट्रोल। मेरे जो सितारे हैं इस टाइम वो ठीक नहीं है, या परमात्मा मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स थे, तो इनकी वजह से मेरी थिंकिंग थी कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए मेरे अलावा बाकी सब जिम्मेवार है।
0: मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये सवाल अब कहीं तंग नहीं कर।
1: आप अगर मेरे से ठीक तरह से बात नहीं कर रहे, इसके जिम्मेवार आप हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करती रही आपको चेंज करना, और आपको मैं चेंज नहीं कर सकती, तो आई केप्ट ऑन सफरिंग। मेरी भोगना बढ़ती रही, क्यों हो रहा है, आप मुझे तंग करते रहे, मैं परेशान होती रही, एंड दैट प्रोसेस वेंट ऑन। अब समझ में आया, आप मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके जिम्मेवार मैं हूं कि मैंने उस तरह की एनर्जी कभी ना कभी आपको ट्रांसमिट की है, वो मेरे पास वापस आ रही है। नाउ आई कैन चेंज। व्हाई? बिकॉज मुझे समझ में आया कि जो मुझे सबसे मिल रहा है, इट इज ओनली अ रिटर्न ऑफ व्हाट आई हैव सेंट आउट, यू नो। सो इफ आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम गेटिंग, आई जस्ट हैव टू चेंज व्हाट आई एम गोइंग टू सेंड आउट, यू नो। जो अगर मैं कहती हूँ मुझे लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मुझे लोगों से प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे लेना नहीं है, मुझे उनको वो देना है। तो अगर वो हम देंगे तो वो जाकर हिट करके वो ही वापस आएगा।
0: इनफैक्ट ये भी एक लॉ है अगर हम देखें तो, यू नो, लाइक व्हाटएवर गोज आउट एक्चुअली वी कैन गिव इट बैक।
1: दैट इज ओनली कार्मिक फिलॉसफी, दैट यू नो, जो आप व्हाटएवर एनर्जी गोज आउट द सेम एनर्जी कम्स बैक। तो जो एनर्जी वापस आ रही है उसको देख के ग्रम्बल करने का तो कोई फायदा
0: नहीं। एक्चुअली उसको देख के एक बार रियलाइजेशन एकदम से हो जाना चाहिए। मुझे लगता है नाउ इट्स सो क्लियर कि जो एनर्जी हमारे पास वापस आ रही है वो कहीं ना कहीं मैंने ही दी है।
1: तो अब अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम और उस तरह की एनर्जी भेजते जाएंगे बाहर, तो फिर वो और ज्यादा आती जाएगी हमारे पास। तो इफ आई एम नॉट लाइकिंग द एंगर दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, गिव यू लॉट ऑफ लव, तो समवेयर दैट लव विल गो हिट यू एंड इट विल कम बैक टू मी।
0: Even if there is a karmic account,
1: you think this is all if it is a karmic account, because everything is a karmic account. कुछ भी तो बिना karmic account के हो नहीं रहा है। फर्क क्या है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कई जैसे भाई बहने फोन करके कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन वो मुझे क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं. यू नो बहुएं कहेंगी इन लॉज क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, कोई हस्बैंड कहते हैं वाइफ क्रिटिसाइज और वाइस वर्सा, या बॉस क्रिटिसाइज करता रहता है. नाउ वॉट टू डू एट दैट टाइम, कि वो क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हैं, एंड ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनसे हम छूट नहीं सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू लिव विद देम. तो वी should we live with the criticism? Can we change the criticism? Can we accept the criticism? What can I do? The energy जो है वो हमारी तरफ travel कर रही है, आपसे मेरी तरफ energy आ रही है. मेरे पास तीन choices है, या तो उस energy को absorb कर लूँ, तो आपने negativity भेजी, मैंने absorb कर ली, क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अंदर ही अंदर घुलते रहे, पिसते रहे अंदर. दूसरा है एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो आपने एनर्जी नेगेटिव भेजी, मुझे हिट की और भी ज्यादा फास्ट से आपकी तरफ गई, ये ऐसे है वैसे है व्हाटएवर, सो आपने भेजी मैंने रिफ्लेक्ट की. तीसरा होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो आपने नेगेटिव भेजी, नाउ इफ आई एम पावरफुल आई शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इट टू पॉजिटिव.
0: आई विल वर्क ऑन इट.
1: यस,
0: डू आई वर्क ऑन
1: आई
0: इट?
1: वर्क ऑन इट. हाउ? कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक मुझे अब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है इट्स बिकॉज ऑफ मी, तो मेरा कुछ पिछला इम्प्रेशन अंदर बना हुआ है, जो जैसे ही मैं आत्मा आपके सामने आते हूँ तो आपके अंदर से वो एनर्जी मेरी तरफ आनी शुरू हो जाती है. अब अगर मुझे अपने ऊपर रहम करना है, अपनी भोगना को खत्म करना है, व्हाट लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप औरों को यू नो लेट गो करते हैं, या ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचते हैं, या उनकी बात पर बहुत ज्यादा परचिंतन नहीं करते हैं, आप उनको नहीं क्षमा कर रहे हैं,
0: खुद को कर रहे
1: आप
0: हैं,
1: अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी भोगना को कम कर रहे हैं. अभी हम क्या करते हैं, क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, तो एवरी दैट थॉट अगेन आई एम क्रिएटिंग दैट इम्प्रेशन, अगेन इट विल गो आउट अगेन. तो वो संस्कार री इन्फोर्स होता जा रहा है, वो कार्मिक अकाउंट और भी डीप होता जा रहा है. The other option is, वो उन्होंने जो बोला वो उनका ओपिनियन है, मैं अपने आप को चेक कर लूं कि मैं वो कर रही हूं या नहीं, अगर मेरी गलती है तो चेंज, अगर नहीं है तो लेट देम गो, जस्ट लेट देम से व्हाट दे आर सेइंग एंड टेल योर सेल्फ इफ आई वॉन्ट आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, आई हैव द पावर, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, आई एम डिस्टर्बिंग माई सेल्फ बाय वॉट दे आर सेइंग टू मी. So if I can disturb myself, I can also stabilize myself. I am doing it.
0: By not ignoring them. You know what?
1: I will not ignore them. No.
0: होता ये है, देखा ये गया है कि जब मुझे
1: विड्रॉ कर देते हैं,
0: हाँ, तो मैं विड्रॉल में चले जाती हूँ कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. ये भी एक तरीका है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज अगेन वो कुछ ना कुछ अकाउंट क्रिएट हो रहा है.
1: एब्सोल्युटली, हम दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ना, हम पॉजिटिव उनके लिए सोचे कि वो जो बोल रहे हैं वो अपनी पोजिशन में बैठ कर किसी एंगल से सही बोल रहे हैं, अगर वो मुझे अभी नहीं पहचान पा रहे हैं या मुझे नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी कर लेंगे, और नहीं भी अगर करते हैं देन दैट्स आल्सो ओके, आई नो हु आई एम, दैट्स व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट,
0: आई नो अबाउट माय सेल्फ,
1: आई नो अबाउट
0: माय सेल्फ. अगेन यहाँ ये अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, कई बार मुझे या मुझे कुछ लोग मिलते हैं जिनके जिनको लेके मैं अननेसेसरीली इरिटेट होती हूँ,
1: राइट.
0: यू नो ये तो ये थे कि जो मुझे
1: इरिटेट करते हैं,
0: हम भी तो कितनी बार
1: बहुत ज्यादा
0: कहीं ना कहीं हमारा भी वो कार्मिक अकाउंट होगा, उसको भी हैंडल करना,
1: राइट.
0: अननेसेसरली गुस्सा आ जाता है, अननेसेसरली इरिटेशन होती है, उसको भी हैंडल करना लोगों के लिए मुश्किल होता है. कि एक तो एहसास ही नहीं हो पाता, बट नाउ व्हेन वी स्टार्ट लिविंग विद अवेयरनेस, ये एहसास होने लगता है कि ये जबरदस्ती की कुछ एंगर है. तो उसको भी कैसे करें,
1: हर स्टेप पे अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं जितनी बार हो रही हूँ मैं अपनी भोगना को बढ़ा रही हूँ. सो स्टॉप, क्या मैं और कर्जा लेना चाहती हूँ, या जो पहले लिया हुआ कर्जा है उसको चुकता करना चाहती हूँ, यू नो अदरवाइज दिस इज जस्ट गोइंग टू गो ऑन एंड भोगना बढ़ती जाएगी. तो आप मेरे सामने आ रहे हैं, अगर 10 बार पहले आए थे और मैं इरिटेट हो रही थी, टुडे मॉर्निंग आई विल सिट इन मेडिटेशन एंड आई विल से व्हाट इज इट दैट इज इरिटेटिंग मी, कैन आई डू विदाउट इट, डू आई हैव एन ऑप्शन, एंड विजुअलाइज माई सेल्फ कि यू विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, I will remain in the awareness. I'm a pure soul, and so is she. We have had some energy exchange. जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन यहाँ है, वो अभी भी ट्रिगर हो रहा है, बट फुल स्टॉप, नॉट फ्रॉम टुडे. इट्स जस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू द माइंड. अभी तक वो इंस्ट्रक्शन दिया नहीं था, तो वो माइंड अपने जो प्रीवियस थॉट्स हैं उसके हिसाब से चल रहा है. अब हम एक नया थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो थॉट को हम एक्शन में लाएंगे. तो मैं मॉर्निंग में एक थॉट क्रिएट करती हूँ कि आज जब आप मिलेंगे, आप चाहे कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे. इट्स अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ. एंड फिर आप आते हैं, आई एम एबल टू रिमेम्बर दैट इंस्ट्रक्शन. तो वो थॉट एक्शन में आया कि मैं इरिटेट नहीं हुई, इम्प्रेशन बन गया. आई डिड नॉट गेट इरिटेटेड. फर्स्ट न्यू इम्प्रेशन. पहले बहुत सारे इम्प्रेशन थे कि आई गेट इरिटेटेड, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. बहुत अच्छा लगा, लेस पेन. टुमारो अगेन, अगेन अनदर इम्प्रेशन, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. दो और चार बार, उसके बाद आदत. उसके बाद आप कितनी बार भी आए दिन में, आई विल नॉट गेट इरिटेटेड.
0: ये इम्प्रेशन जो हैबिट बन जाएगी.
1: आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ फॉर दैट. इफ आई से नहीं, वो ही इरिटेट कर रहे हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट.
0: नहीं, इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं अपने बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, इतने कॉल्स, इतने फोन्स, इतने ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं कि जो मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट. दिस इज वन कॉन्सेप्ट जिसे हम लेकर चले थे कि कैसे मेडिटेट करेंगे. आई थिंक आई वांट टू शेयर इट नाउ टुडे. इज लाइक आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम.
1: राइट,
0: इट्स नो मोर अ मेडिटेशन. मतलब मैं सचमुच इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, कर रही होती हूँ हर रोज सुबह शाम या दिन में कभी भी, कि जब मैं अपने आप से रूबरू हो लेती हूँ, अपने आप से और परमात्मा के साथ जो एक शिव बाबा के साथ एक रिलेशनशिप है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. और हर बार ये कर पाना, अब हर काम करना आसान लगने लग गया है. जो भी आप हमें बताती हैं कि किस तरह से करना है, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये बात समझेंगे शायद, कि वो आसान हो जाता है.
1: जब अपने साथ और परमात्मा के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, तो औरों के साथ ऑटोमेटिकली बन जाता है.
0: ब्यूटीफुल, दैट्स रियली ट्रू. सिस्टर शिवानी, हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि लॉ ऑफ कर्मा जो है, जो कानून ऐसा है, जो जैसा बोया है वैसा हमें मिलता ही है. कुछ और भी ऐसे स्पिरिचुअल लॉज हैं जो काम करते हैं?
1: फंडामेंटल तो सारा कुछ कार्मिक फिलोसफी पे ही कनेक्टेड है, लेकिन इसको हम अलग अलग तरह से भी देख सकते हैं. जैसे एक कहेंगे कि लॉ ऑफ अटेंशन. ओके, व्हेरेवर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज.
0: अच्छा, हमारा ध्यान जहां जाता है,
1: एनर्जी फ्लोज. एंड व्हेरेवर माय एनर्जी फ्लोज, दैट थिंग विल ग्रो.
0: ओके,
1: तो नाउ आई नीड टू कीप दिस इन माइंड कि जहां भी मेरा अटेंशन जाएगा, मेरी सारी एनर्जी उस तरफ चली जाएगी, और जिस तरफ मेरी एनर्जी जाएगी, वो चीज ऑटोमेटिकली शक्तिशाली ग्रो होती जाएगी. स्थूल रूप से सिंपल देखें, गार्डन है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपकी सारा ध्यान, आपकी एनर्जी उसमें लगेगी, तो वो गार्डन बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा. आप एक कारोबार शुरू करते हैं, आप अपना ध्यान उस पर देंगे, वो कारोबार फलीभूत हो जाएगा. ये हुआ स्थूल रूप से. अब अगर थॉट लेवल पे भी, जिस थॉट की तरफ मेरी अटेंशन जाएगी, वो थॉट ऑटोमेटिकली और भी पावरफुल होती जाएगी. सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किन थॉट्स पर अटेंशन देना है. जो हमने सोल कॉन्शियसनेस के दिन देखा कि बहुत सारी थॉट्स आती जाती है, जस्ट टेक वन एंड पुट ऑल योर अटेंशन ऑन दैट, जस्ट सी इट कि आई एम अ प्योर सोल. तो जब आप वो एक थॉट को लेकर उस पर अटेंशन देंगे, तो सारी एनर्जी उसमें जाएगी एंड सोल कॉन्शियसनेस ग्रोज. गिव योर अटेंशन टू गॉड, energy will flow into that relationship will grow. कोई भी relationship को भी अच्छा बनाने के लिए attention देना पड़ता है ना. आजकल husband, wife, parents, child क्या बोलते हैं, attention नहीं दे रहे हैं हमारे तरफ, तो attention नहीं दे रहे हैं तो रिश्ता
0: टूट रहा है.
1: Same with my relationship with myself and my relationship with God. जितना हम उसको attention देंगे, हम कहें time ही नहीं है, सारा दिन में टाइम नहीं है याद करने के लिए या सोल कॉन्शियस का ध्यान रखने के लिए, देन इट विल नॉट ग्रो. हम अगर हमारा ध्यान सारा उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नाउ ऑल आर अटेंशन गोज टू दीज थॉट्स, एनर्जी फ्लोज, दोज थिंग्स ग्रो, दैट प्रॉब्लम बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर. तो इनफैक्ट जो इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं, वहां से अटेंशन को हटा लीजिए.
0: अगेन
1: यू विल बी विड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम
0: डेस्टिनी. मैं खुद लिख सकती हूँ अपनी, यू नो, बात वही आ गई कि लॉ ऑफ, अगर अटेंशन की बात करते हैं, तो जो ध्यान प्रायोरिटाइज करके जिस बात पे मैं ध्यान दे रही हूँ, वाह, दैट्स नाइस.
1: जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दो. आपकी एनर्जी वहां से विड्रॉ हो जाएगी. और उस चीज पर ध्यान दे दीजिए जो आपके कंट्रोल में है, दैट थिंग विल ग्रो, वो चीज अपने आप सेट हो जाएगी. सो लॉ ऑफ अटेंशन पे भी अगर हम ध्यान रखें तो विल बी वेरी केयरफुल कि किन एस्पेक्ट्स पे, किन बातों पे, किन थॉट्स पे अटेंशन देना चाहिए और किन पर नहीं देना चाहिए. बिकॉज क्योंकि लोग कई बार कहते हैं हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं. सो दे हैव टू रिमेम्बर कि जितना वो सोच रहे हैं, दे आर पुटिंग एनर्जी इन टू दैट थॉट एंड दैट थॉट विल ग्रो. एंड फिर जो हम कहते हैं कि राई से पहाड़ बना लिया, एंड शिव बाबा आकर हमको सिखाते हैं पहाड़ को
0: राई बना लो. बहुत सुंदर.
1: और राई को भी कहते हैं रुई बना लो, क्योंकि राई भी बाबा कहते हैं हार्ड है, रुई सॉफ्ट होती है, ब्लो एंड इट विल फ्लो.
0: वाओ, दैट्स रियली नाइस. इनफैक्ट ये पूरा थॉट ही एक इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि आपका एक भार उतर गया. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल जो है, आकर्षण का जो एक कानून है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो जी जान से वो आप तक पहुंचाने की बात करती है. ये कितना काम करता है?
1: ये 110% इट वर्क्स. कि आप कोई एक थॉट ले लीजिए, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. तो इसीलिए वो बहुत क्रिटिकल है. लेकिन हम पॉजिटिव करें कि अगर आप एक पॉजिटिव थॉट ले लीजिए एंड यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट, एब्सोल्युटली यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट, सारे लोग, सारी सिचुएशंस, सारी परिस्थितियां चेंज होती जाएंगी. एंड दे विल, यू नो, ऑल राइट वंस विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. दैट्स वेयर डेस्टिनी गेट्स क्रिएटेड ना. एज माय थॉट सो विल बी माय डेस्टिनी. क्योंकि जैसे मेरी थॉट, सारे लोग, सारी परिस्थिति सब बदलती जाएगी उसके अनुसार. तो इसलिए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपल विल गेट अट्रैक्टेड. ऑपोजिट तो ऑपोजिट. अब क्या हो रहा है, हम वो थॉट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सो वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट एंड वी होल्ड ऑन टू इट.
0: इन फैक्ट वी कीप ऑन डाउटिंग.
1: या
0: यू नो, अगर हम
1: दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई ऑलवेज शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल कि व्हाई डू यू डाउट. क्योंकि आपके डाउट करने से सामने वाली आत्मा के अंदर वो थॉट क्रिएट होता जा रहा है. आप ट्रस्ट नहीं कर रहे. एंड यही अगर आप ट्रस्ट कर लें तो सामने वाली आत्मा के अंदर ट्रस्ट, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू फ्लो टूवर्ड्स यू. तो जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा विजन, हमारा गोल, तो एक विजन क्रिएट कीजिए एंड होल्ड ऑन टू इट. लेकिन उसके अंदर फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए. यू नो, कई बार कहते हैं हाँ मुझे ये बनना है लेकिन बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, देन इट विल नॉट हैपन.
0: अच्छा, एक और जो बात कही जा रही है कि आप कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस कीजिए.
1: हाँ,
0: यू नो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, देन बी श्योर कि वो आएगा.
1: दैट इज व्हाट दिस इज, दैट इज व्हाट इट इज. तो कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस करे मतलब व्हाट? वो कहते हैं ना, सारा कुछ चेंज हो जाएगा आपकी वो थॉट को रियालिटी बनाने में. बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ द माइंड. बट वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट तो सारा कुछ चेंज हो जाता है उसको रियालिटी बनाने में.
0: अच्छा, इनफैक्ट हम उसे टाइम फैक्टर में भी कभी बांध देते हैं.
1: हाँ,
0: यहाँ तक हो जाना चाहिए.
1: राइट.
0: सो वो हमें एक इंडिपेंडेंट,
1: वो भी डाउट हो जाता है ना कि एक महीने से मैंने ये सोचा था, नहीं हुआ. तो वो भी तो नहीं, आप एक थॉट क्रिएट कीजिए. And if you want to set a time factor to it, तो वो time factor में भी आप firmly believe करते हो
0: कि मेरे को महीने में ही हो जाएगा.
1: हो जाएगा, absolutely. तो वो हो जाएगा. And impossible things happen. Mind इतनी powerful शक्ति है कि उसी से तो सारी शक्तियां चल रही हैं. इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की थॉट क्रिएट करते हैं
0: और किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं. एक्चुअली ये बहुत,
1: क्योंकि वो रियलिटी बनता जाएगा. तो वो नेगेटिव थॉट्स को जितना हो सके,
0: और कहीं अनजाने में हम कुछ ऐसा मांग लें जो कहीं बाकी सारी चीजों के लिए गलत हो जाए.
1: हाँ, एब्सोल्युटली. तो दैट्स व्हाई एवरी थॉट इज वेरी क्रिटिकल. बहुत ध्यान से अपने संकल्पों को क्रिएट करना चाहिए और उसमें मेडिटेशन हेल्प करता. यू नो, राइट एंड रॉन्ग थॉट्स. एंड कहीं अगर वो गलत अनकंफर्टेबल थॉट्स आ भी रहे हैं, स्टॉप. एक मिनट स्टॉप, अपने माइंड को बताएं नॉट नीडेड आउट, दैट्स ऑल. एक बार आएगा, दो बार आएगा, चार बार आएगा, इट विल गेट ओवर. लेकिन अगर उसको रुकने के लिए नहीं बोलेंगे
0: तो बहुत अच्छा, और वो फिर बिल्डअप हो
1: जाए.
0: आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक इमेज आती है, तो जब तक वो इमेज ना आए तब तक आप इंतजार कीजिए. एक्चुअली इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन आई वाज स्टार्टेड मेडिटेशन, लाइक दिस थिंग हैपेंड कि वो अगर आप वो लाइट को देख रहे हैं, वो इमेज नहीं आती है, कोई ना कोई इमेज आती है, आप उसके पीछे भागते हैं, देन यू ब्रिंग इट बैक.
1: सो दैट्स द डिसिप्लिनिंग ना, और ये कॉन्सेंट्रेशन है. एक और जो लॉ बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है और जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, दैट्स लॉ ऑफ बिलीफ. ओके, वट एवर यू बिलीव विद फीलिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन. वट एवर यू बिलीव विल फीलिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन. जो आप फीलिंग क्रिएट करते हैं वैसा ही आपके साथ होता जाएगा. और इसमें भी हमारे अलग अलग प्रकार के बिलीव्स होते हैं. कई होते हैं बहुत फेटल, खतरनाक बिलीव्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकती हूँ, मैं इनके सामने ये नहीं कर सकती हूँ. गर्ल्स शुड नॉट क्लाइंब ट्रीज, यू नो दीज ओल्ड बिलीव्स. सो व्हाट हैपेंड, गर्ल्स डिडंट क्लाइंब ट्रीज फॉर सो लॉन्ग. तो ये जो फेटल बिलीव्स है ना, ये हमें ग्रो नहीं होने देते. तो जो हम बिलीव करेंगे वो ही होता जाएगा हमारे साथ. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने बारे में कैसे बिलीव्स बनाते हैं. हमें बाइंड नहीं करना चाहिए अपने आप को इस तरह की चीजों में कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा. दूसरा है सर्वाइवल बिलीव्स.
0: मैं सर्वाइव, आई विल सर्वाइव,
1: जितना है अभी कर लो, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकेंगे. तो ये जो बिलीफ एक बन गया है, उसकी वजह से हम जो सारी ये भाग दौड़ एक दूसरे को नीचे खींचते ना, बिकॉज हमने समझा कि उनको अगर मिल गया तो मेरे को नहीं मिल सकता, यू नो, एंड इतना ही अमाउंट अवेलेबल है सिर्फ. तो इधर दे गेट इट और आई गेट इट. तो हम सब एक जैसे एक दूसरे को गिरा के नीचे खींच के वो प्राप्त करने में लग गए. तो ये बिलीफ सिस्टम ने भी हमारी पूरी यू नो वे ऑफ वर्किंग को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया.
0: और इतने कॉन्फिडेंस से कहा जाता है आजकल कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं. पर ये भी हम एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं कि ये है,
1: दिस इज अ बिलीफ, दिस इज अ बिलीफ कि ये कॉम्पिटिशन है, ये कोऑपरेशन नहीं है. हम कच्चे मिलकर काम नहीं कर सकते, या तो वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा.
0: एक लड़ाई है, कंटिन्यूस लड़ाई है,
1: कंटिन्यूस वो है. कच्चे मिलकर काम करेंगे और ज्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे, नो, इट्स ईदर हिम और मी. तो इसलिए वो कंपटीशन वो चलता रहता
0: है. तो कई सारे लॉज जो है
1: नहीं, और ये बिलीव्स में भी एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ब्लॉक करने वाला बिलीफ, जो मैं दूसरों के प्रति क्रिएट कर देती हूँ. ये ऐसे ही है,
0: फिनिश्ड,
1: देन आई विल नॉट चेंज माई एटीट्यूड towards you. तो उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी जो आपकी तरफ जाती है. तो कभी भी किसी को लेबल्स नहीं दे हम, ये तो है ही गुस्से वाले, ये तो है ही ऐसे, यू नो, एवरीवन इज चेंजिंग.
0: मार्जिन नहीं छोड़ते, यू नो, कि वो चेंज हो सकता है.
1: हमने एक उनको टाइटल दे दिया कि ये है ही ऐसे. तो जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे, वी विल फील लाइक दैट अबाउट देम. सो दैट एनर्जी which should be of a better quality, it will not go because my that belief will create that energy. And what I could change it to, empowering belief. Pehle ho raha tha ki main nahi kar sakta, main kar sakta hu. Shaktishali belief system apna banaye, main kar sakta hu, kyun nahi kar sakta, main inke sath apne relation change kar sakta hu. So that belief, everything
0: again, कितने सारे beliefs हम साथ साथ लेके चलते हैं. कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता,
1: absolutely.
0: You know, सारी खुशियाँ नहीं मिल सकती, ऐसा होता है.
1: These are all blocking beliefs. तो इसकी वजह से वो नहीं मिलती है, क्योंकि जैसा आप बिलीव करते जाएंगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द ट्रू beliefs. मैं आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल. ये भी एक बिलीफ है, इसको एक्सपेरिमेंट करें. जब ये आपके लिए वर्क कर जाता है, इट्स अ ट्रू बिलीफ, इट्स द ट्रूथ फॉर यू. अगर वो ट्रूथ नहीं आप फील करते हैं, तो ईदर इट वॉज नॉट राइट, और देन आई डिडंट डू इट द राइट वे. मैंने उस राह पर ठीक से चल कर नहीं देखा, या वो रास्ता ही ठीक नहीं था. लेकिन हर अपने बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए टिल इट बिकम्स द ट्रूथ. तो अपने बिलीव्स को बहुत ध्यान से, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लॉज, सारा दिन जो वर्क कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. इट्स बिकॉज मैंने वो बिलीफ होल्ड किया हुआ है, मैंने वो थॉट क्रिएट की हुई है, मैंने वो थॉट को अटेंशन दी हुई है. तो दैट विल बी माई रिजल्ट. इट्स ऑल सेम विद कार्मिक फिलोसफी, लेकिन धीरे अलग अलग अगर ध्यान दे तो वी अंडरस्टैंड कि हर चीज जो हमारी तरफ आ रही है
0: लॉ ऑफ कर्मा के हिस्सा बन जाते हैं. एक्चुअली अगर हम तोड़ने में आए तो लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ बिलीफ की बात, सारे बिलीफ वही आ जाते हैं. इनफैक्ट और अगर हम पीछे मुड़कर देखें, जो हमने सफर जब शुरू किया था तो आपने यही कहा था कि हमारा थॉट जो क्रिएट होता है वो बिलीफ से होता है. उसमें तीन चीजों से हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे थे, बिलीफ था. सो बिलीफ एक्चुअली बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट.
1: एंड नाउ सोल कॉन्शियसनेस इज दैट बेसिक बिलीफ सिस्टम जो हमें करेक्ट करना है कि आई एम अ बॉडी. तो ओ मैं मरने वाली हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगी, ये सब कुछ मेरे से चला जाएगा, जितना है अभी इकट्ठा कर लो। तो होल्ड किया, नहीं मिल रहा था, गुस्सा आना शुरू किया, किसी ने छीनना लगे तो डर लगा, औरों से छीनने लगे तो ग्रीड, कहीं चला ना जाए अटैचमेंट, फियर। सो ऑल दीज वाइसेस केम इन विद वन बिलीफ सिस्टम दैट आई एम अ बॉडी।
0: इनफैक्ट बट लेकिन इट्स अमेजिंग यू नो, जितने लोगों के साथ जब भी मेरी बातचीत हुई है अब, लाइक व्हेन वी से दे कि पर ये बॉडी नहीं हूं मैं, ये कैसे मैं मान लूं, बट द मोमेंट वी से माय बॉडी यू नो लाइक दैट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्क्ड यू नो बिकॉज द माइंडसेट एक चेंज होते हैं। सिस्टर चिमानी, यहाँ एक और बिलीफ सिस्टम है या एक और बात जो कहीं ना कहीं मुझे खटकती रही है, मेरा सवाल अपना पर्सनली हो जाता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं जो भी मैंने किया है या जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं करके भी आई हूं या इस जन्म में भी जो मैंने किया है, इस बर्थ में भी, तो क्या जब मैं कहीं ये कहा जाता है कि मैं वहां जाकर सारे पाप धो सकती हूँ, मैं मतलब कई बार मुझे एक क्वेश्चन होता है कि मैं सारी जिंदगी गलत करती रहूंगी, फिर मैं वहां जाकर अपने सारे पाप धो लूंगी, तो इसका मतलब मैं मुझे परमिशन है कि मैं सब कुछ, दिस इज माई माई क्वेश्चन।
1: अगर आप किसी का मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद आप उस चाकू को धो देते हैं, तो क्या पाप खत्म हो गया?
0: डेफिनेटली
1: क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया गया था, तो पनिशमेंट चाकू को नहीं मिलती है, तो ना चाकू धोने से पाप धुलने वाले हैं। इसी तरह जो हाथ है जिसने उस चाकू को पकड़ा हुआ था, इसको भी तो आप नल के नीचे धो देते हैं, खून उतर जाता है, पाप धुल गया?
0: नहीं,
1: क्योंकि ये भी उतना ही इंस्ट्रूमेंट है जितना इसके हाथ यू नो इसमें जो पकड़ा हुआ चाकू था। लेकिन हमने अभी तक क्या समझ लिया था, चाकू इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी कोई गलती नहीं, बाकी पाप इसने किया, इसने तो नहीं किया, इसको कोई नॉलेज नहीं।
0: लेकिन
1: है
0: यहां
1: हम धो इसको देते
0: से जाते हैं लोग,
1: हम धो इसको देते हैं।
0: यहाँ ये सवाल मेरा ये है कि मैं मान रही हूँ यू नो कि जो पाप है उसको ना धोने से ना किसी से जा
1: नहीं
0: सकता,
1: शरीर को धोने से नहीं करेगा, क्योंकि पाप करने वाला या पुण्य करने वाला शरीर नहीं है। आई द सोल एक्ट थ्रू द बॉडी, तो किसी को सुख दिया किसी को दुख दिया, मैं आत्मा कर रही हूँ, ये मुख नहीं कर रहा, ये हाथ नहीं कर रहे, ये पांव नहीं कर रहे, पर हम धो सिर्फ इनको रहे। यू नो जो भावना थी, देखो अगेन इट्स बॉडी कॉन्शियसनेस, भावना बहुत अच्छी है लेकिन उस कॉन्शियसनेस से जाना पड़ेगा आपको। जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए कि मुझ आत्मा ने ये विकर्म किए हैं, मुझ आत्मा को परमात्मा को याद करके अपने संस्कारों को धोना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, तब वो
0: अच्छा।
1: पाप धुल रहे हैं। मैं अपनी वही ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में जाऊं और सिर्फ शरीर को वहां तक ले जाऊं और शरीर वापस आ जाए, तो वो तो सिर्फ शरीर धुला, वो तो रोज ही धुलता है, यू नो भले वो बहुत ही पवित्र जल में धुला, लेकिन फिर भी शरीर धुला, लेकिन उसने पाप नहीं किया था। तो कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, वो संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो हम कहते हैं कि ज्ञान गंगा स्नान, कि ज्ञान की एक एक बूंद जब इस आत्मा पर गिरेगी और इससे वो जो पुराने इम्प्रेशन है उसको वो धोती जाएगी और नए इम्प्रेशन बनते जाएंगे, तब पाप धुलते जाते हैं, स्थूल धुलाई से सिर्फ नहीं हो पाएगा।
0: यहाँ एक छोटी सी बात मैं ये जानना चाहूंगी कि गहरी आस्था से जब लोग जाते हैं, जब ये मान के जाते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अपने सारे पाप धो के आऊंगी, अपने कर्मों की माफी मांग के भी आएंगे या जो करके आएंगे, डज इट वर्क?
1: सी अगेन इट वर्क्स इफ यू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। यू नो लेट्स से कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो मैंने बहुत पाप किए होंगे इस पूरे साल के अंदर, मैंने अनेक आत्माओं को दुख दिया होगा और वो सारा अक्यूमुलेट हो गया है। अब मैं जा रहे हूँ स्थान पर ये सोच के कि ये सारे धुल जाने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि फिर आने के बाद मुझे अंदर एक अंश भी क्रोध का नहीं रहना चाहिए, तब तो मैं आगे अक्यूमुलेट नहीं करूँ ना, तब कहेंगे सही मायने में कि कुछ धुलाई हो गई। लेकिन गए बहुत अच्छी आस्था के साथ, रियली बहुत अच्छी फीलिंग के साथ जाते हैं, लेकिन आने के बाद क्या किया?
0: आने के बाद तो फिर वही वैसा का वैसा जिंदगी।
1: फिर कैसे हम कह सकते हैं ना कि रियली वो उतने स्ट्रॉन्ग उसके साथ गए थे? पश्चाताप मतलब परिवर्तन, पश्चाताप मतलब नहीं कि हाय मैंने क्या किया और फिर वही किया। शिव बाबा निराकार परमात्मा हमें बताते हैं पुरुषार्थ मतलब एफर्ट, मतलब ये कि एक बार की हुई गलती दूसरी बार नहीं होने
0: रिपीट
1: चाहिए,
0: नहीं होनी चाहिए।
1: क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हो जाएगा हो जाएगा, तो शिव बाबा से कब कब होगा, मतलब आप वही गलती करते रहेंगे और कहेंगे ये पुरुषार्थ चल रहा है हो जाएगा। सिर्फ पुरुषार्थ का भी मतलब है एक बार की हुई गलती फिर नहीं होगी, देन इट इज सही मायने में वो हिसाब किताब को फिनिश करना।
0: सुशील तिवारी, बहुत सी अभी बातें बाकी हैं, लेकिन वक्त है कि अब हम आगे बढ़े। लेकिन चलते चलते बहुत से लोगों के सवाल है। एक छोटा सा ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोग इनफैक्ट ये भी समझने लगे हैं कि शायद मैं भी बता रही हूँ ये बात, लोग जब मुझसे बात करते हैं कि इतनी क्लैरिटी से कैसा ये हो गया है, सदियों से हम सुनते आ रहे थे लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ये जो बातचीत है ये हमें समझ में आ रही है, अभी तक हमें समझ क्यों नहीं आ रही थी, क्या है ऐसी बात, क्या है ऐसा इस ज्ञान में जो मुझे इतना क्लियर, इनफैक्ट मुझे भी और बहुत से हमारे दर्शक हैं तो वो यही जानना चाहते हैं, मुझसे भी बहुत बार पूछते हैं कि आपको ये आता है, आपको पता है पहले, तो मैं उन्हें ये बार बार कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था बट मुझे क्लैरिटी है, ऐसा कैसे है?
1: जैसे आपको नहीं पता था ना, सुनने सुनते आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा और फिर आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे ही हम में से किसी को भी नहीं पता था, ये हम में से किसी को भी नहीं आता था। मैं मतलब इंडिविजुअली अपने लिए कह सकती हूँ कि वही पुराने संस्कार, वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, लेकिन जब निराकार परमात्मा ने स्वयं आकर ये ज्ञान दिया है, अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हमें ज्ञान आत्माएं दे रही थी, जो हमने पहले भी देखा कि कोई गलत नहीं था, लेकिन हर आत्मा ने शरीर लेने के कारण परसेप्शंस में बहुत सारी वेरिएशन आती है। जो इस बॉन्डेज से ऊपर होगा वो पूरी पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इस बॉन्डेज से ऊपर सिर्फ एक निराकार परमात्मा है। तो जब निराकार परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जब वो स्वयं आकर ये ज्ञान देते हैं, सुप्रीम टीचर है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सिंपल है, मैं कौन हूँ वो कौन है, जिसको राइट नॉलेज है जब वो आकर देते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, एंड फिर वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ, हमें समझ में आने लगता है, वी गेट द रिजल्ट इन आवर लाइफ, एंड दैट्स हाउ वी ओनली बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। अभी भी वी आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट हु इज सिटिंग हियर, ज्ञान सारा उसका है, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी।
0: That's great actually, because वही क्लैरिटी जो है वो समझ
1: नहीं,
0: में आती
1: अभी
0: है।
1: तक जितने भी हम संस्थाओं में गए, जहां भी गए, आत्माएं ज्ञान दे रही थी, महान आत्माएं, संत आत्माएं, वेरी प्योर सोल्स, धर्म आत्माएं, लेकिन परमात्मा डायरेक्ट ज्ञान देते हैं।
0: बिल्कुल, और वो ज्ञान तभी इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे साथ है। सुशील शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। ये बात तो सामने आती है कि क्यों ये ज्ञान जो है वो इतना क्लैरिटी से हमें समझ में आ रहा है, ये बात जो छोटी सी बात थी कब से सुनते आ रहे थे लेकिन आज समझ आ रही है और फिर अनुभव भी कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो परेशान करती है। अगर आज की इस कड़ी को देखें तो हमने ये जाना कि कई तरह के कार्मिक लॉ में कई तरह के और कानून हैं, कई लॉज हैं जो कितनी स्ट्रांगली, कितनी शिद्दत से काम करते हैं, तो हमारा हर थॉट, हर बिलीफ बहुत सोचा समझा होना चाहिए अगर आगे की जिंदगी को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अभी जो बात हमारे दिल में चल रही है वो ये है कि आज के इस दौर में ऐसा क्या हो गया है कि हर आत्मा, हर इंसान इतना परेशान नजर आता है, और सिर्फ बड़ा व्यक्ति ही नहीं, बच्चों से ये शुरुआत नजर आती है। क्या हो चुका है ऐसा कि आज हमें बच्चा बच्चा दुखी और बोझ से दबा दिखता है? अगली कड़ी में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कोशिश मुझे लगती थी कि कर सकती हूँ, और एक थॉट ही तो बदलना है। हर चीज को अगर पॉजिटिवली ले लें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और पॉजिटिव थिंकिंग में कर पाऊंगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया कि नहीं, उसके पहले जरूरी ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जा रही है, हर रोज की जो जानकारी मेरे पास आती है, मेरे जो आसपास का माहौल है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और उसमें कैसे फिल्टर करना है वो मेरे हाथ में है। सिचुएशंस, इन्फ्लुएंसेस, लोगों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जानकारी मैं लेना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन से स्टेप्स होंगे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट कर पाऊं या अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर पाऊं। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी में अगर हम देखें तो एक होमवर्क हमारे साथ था कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो मुझे गवर्न कर रही होती है। और हमने ये समझा था कि हर थॉट, मेरी सोच जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो जाती है जिस तरह की जानकारी जा रही है।
1: अभी क्या होता है, सुबह उठे नहीं कि यू नो माय फर्स्ट अब्सॉर्प्शन जो होती है, जो ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन है उस पे फर्स्ट चीज जो अब्सॉर्ब करते हैं दैट इज द फर्स्ट पेज। मतलब मेजॉरिटी के तो हम देखते हैं बेड में ही न्यूज़पेपर आता है, तो फर्स्ट पेज एक क्लीन माइंड के ऊपर क्या छाप दिया सुबह सुबह। फिर अब उसके बाद बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, देन वी आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डिफिकल्ट। फिर आपको मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम, क्योंकि आपने फाउंडेशन तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का क्रिएट किया है, लेकिन अब आप सारा दिन मेहनत ये करने वाले हैं कि पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कुछ स्टेप नहीं लिया जाएगा, लेट अस नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल। और इसीलिए हो रहा है कि इतना सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उसपे जो थोड़ा सा परिवर्तन। और हमने बहुत भाई बहनों से मिले हैं जिन्होंने सिर्फ ये किया है, अभी और ज्यादा तो किया ही नहीं है, कुछ उसके बाद कुछ नहीं किया है मेहनत, उसके बाद सिर्फ इतना किया कि सुबह सुबह अखबार पढ़ना बंद कर दिया, दे आर फाइंडिंग अ चेंज।
0: इन फैक्ट नो, आई विल टेल यू, बिकॉज मैंने भी जब शुरू में किया, आप बहुत लाइट रहते हैं।
1: अगर हर एक अपने आप को सिर्फ अपने जीवन को रिवाइंड करे थोड़ा सा, लास्ट कब बैठ कर एफर्ट करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी थी अपने अंदर, व्हेन वाज दैट द लास्ट टाइम, तो हमें याद नहीं आएगा। तो जो चीज भरी नहीं वो क्रिएट कहाँ से होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे घर पे कोई लेट आए शाम को, तो एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये जो नेगेटिव नेचुरल हम कहेंगे नेचुरल आ जाता है, ये नेचुरल इसलिए आता है क्योंकि सुबह मैंने वही भरा था। आप थोड़े 2 महीने के लिए सुबह वो भरना बंद करें और सुबह सुबह ये भरें जो परमात्मा के महावाक्य है कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा, आप कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, आपके साथ क्या गलत होगा। अब रात को देखो अगर कोई लेट आता है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट दैट टाइम। अभी तो पॉजिटिव उस टाइम बोलेंगे, उस टाइम तो याद नहीं रहेगा कि पॉजिटिव सोचना है, उस टाइम तो वो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, यू नो ड्रेनिंग योर सेल्फ आउट। तो ये उस टाइम नहीं एफर्ट हो सकता कि हाँ नाउ समवन हैज कम लेट नाउ और हैज नॉट रीच्ड नाउ आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। ये तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, बिकॉज अगेन थिंकिंग हैज बिकम वेरी ऑटोमेटिक। लेकिन हमें इसलिए सिक्योर रहेंगे क्योंकि हमें पता है भराई क्या था, और ये प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। सेकेंड चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी, वो है साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। अगेन detached word sunte hi it will see your face only how it has become
0: because it becomes like you know it is a feeling lot of people say ki detachment kehte ho to aisa lagta hai ki cold there is a coldness which sets in matlab aisa lagta hai ki bilkul har cheez

0: से हम परे हो गए, तो वो उससे डर लगता है लोगों को, लोगों को लगता है कि हम दूर हो जाएंगे अपनों से, हम अपनों से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, और कोई मुझसे डिटैच हो गया तो वो मुझसे दूर चला जाएगा।
1: डिटैचमेंट को तो हम समझेंगे ही वो क्या है, लेकिन फर्स्ट वे सेइंग डिटैचमेंट मीन्स डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि एक परिस्थिति को एक साक्षी दृष्टा होकर देखने से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, व्हाई डू आई नीड टू सी इट, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द वन थिंग ओवर लास्ट फ्यू डेज कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, नाउ आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, तो उस पर तो हम आ गए, लेकिन सेल्फ को मैनेज करने के लिए मुझे उससे एक स्टेप पीछे होकर उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा, ताकि परिस्थिति मेरे ऊपर
0: हावी
1: ना हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से दूर हो जाती हूँ, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, किसी को बीमार होना है, होए किसी को दर्द हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस लाइक यू से, इट्स नॉट हार्डनेस ऑल्सो, कई लोग समझते बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कड़क हो गए हैं, जैसे दैट इज इनसेंसिटिव, वो इनसेंसिटिव है। उल्टा जो डिटैच्ड होगा, सही मायने में डिटैच्ड होगा, वो तो और भी कंसर्न्ड होगा, क्योंकि डिटैच्ड अगर हम होंगे तो मैं दर्द में नहीं गई, और अगर मैं दर्द में नहीं गई तो मैं आपके लिए तो और भी कर सकूंगी, आपके लिए जो कंसर्न है, आपको अगर मदद करनी है तो मैं और भी ज्यादा कर सकूंगी, बट माय सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट, दैट इज इनसेंसिटिव, दैट इज अनकंसर्न्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल, दैट्स नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर रिलेशनशिप्स। डिटैचमेंट मतलब एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पॉज एंड स्टेप बैक, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो, जिसको कहते हैं ना सोच समझ कर फिर बोलना या सोच समझ कर करना, दैट इज डिटैचमेंट, कि टेक दैट वन मोमेंट टू पॉज, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा, मतलब एक
0: नपातुला होगा,
1: या मेजर नपातुला, यस राइट, मतलब एक आई नो व्हाट आई एम रिस्पॉन्डिंग, बट अगर डिटैच नहीं होते तो इट इज अ रिएक्शन,
0: और वो फैलता है फिर, वो
1: दैट इज मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हैबिचुअल रिएक्शन हो गया ना, वो मेरा रिएक्शन हो जाता है। डिटैचमेंट मतलब रिस्पॉन्ड करना, और पहले हम क्या करते थे, हम दूसरे के, जैसे सपोज अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं अपने बारे में, आपकी लाइफ में ये हुआ या ये है ये है, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट, आई वुड गेट सक्ड इनटू इट, एंड तो क्या होता था कि अगर आप दर्द में हैं तो आप रो रहे हैं अंदर से या बाहर से जो भी, एंड वेरी सून यू विल फाइंड कि मैं भी आपके साथ रो रही हूँ,
0: क्योंकि आप उसके साथ ही मर्ज हो गए ना, मैं उसमें,
1: यू गेट सक्ड इनटू द इमोशंस ऑफ समबडी एल्स, तो डिटैचमेंट इज जस्ट दैट वन मोमेंट, एक मोमेंट उस तरफ से, जैसे कि सपोज अगर हम स्टेज पर हैं तो हम पूरे प्ले को उतनी ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑडियंस है वो ऑडियंस उस प्ले को बहुत अच्छी तरह से देख सकती है, तो जब मैं परिस्थिति में हूँ तो मुझे परिस्थिति राइट पर्सपेक्टिव में नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं परिस्थिति को सिर्फ अपनी साइड से देख रही हूँ, मैं आपकी साइड से या किसी और साइड से तो उसको देख ही नहीं पाती, बिकॉज आई एम स्टक टू माई पोजिशन, पोजिशन कुड बी माई आइडिया, सपोज मैं राइट हूँ आप रॉन्ग है, दिस इज अटैचमेंट टू माई आइडिया ऑफ बींग राइट, तो मैं अपने राइट के आइडिया से इतनी अटैच्ड हूँ कि आपका आइडिया तो देखने का मेरे पास कोई मार्जिन ही नहीं है, सो अनलेस आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई अटैचमेंट ऑफ अ राइट आइडिया, हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, एंड जब तक मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं किया तो जो परिस्थिति है वो राइट पर्सपेक्टिव में मुझे कहाँ दिखाई देगी, इट्स नॉट पॉसिबल, तो डिटैचमेंट मतलब स्टेज से हटकर एक मिनट ऑडियंस की तरफ से देखें।
0: लोगों का एक और इस पे आता है कि हम कब तक करते रहे,
1: वो तो जब तक आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं। सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम कुछ भी किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम ये समझते हैं कि आपने गुस्सा किया और मैं चुप रही, ये आपके लिए किया, आपके लिए नहीं किया, हम ये प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है मैंने सहन किया आपके लिए किया, ना ना, किसी और के लिए तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, इट इज ओनली टू बी डन फॉर माई सेल्फ, हाँ उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली औरों को होता जाएगा, लेकिन हम जो भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, एंड ये हरेक कर रहा है विद द ज्ञान और विदाउट द ज्ञान, दैट इज डेफिनेटली, भले हमें ऊपर ऊपर से पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज हैपनिंग सो फास्ट, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, आज अगर मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ? हमें लगता है वो मैं आपके फायदे के लिए कर रही हूँ, आपको सुधारने के लिए कर रही हूँ. नहीं नहीं, उसके लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. गुस्सा मैं इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो मेरे अटैच्ड आइडियाज ऑफ राइट में नहीं फिट होता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिएक्टिंग. इट इज बिकॉज आई एम हर्ट, सो आई हैव रिएक्टेड. इट्स नथिंग टू डू विद यू.
0: लेकिन मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा हूँ. अपने जॉब में मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि मेरा परिवार कैसे चलेगा, या मैं एक रिश्ते में जिसमें हूँ तो उसमें बच्चा. बहुत सी आज
1: कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो रहा है? स्टेबल रहकर वी आर चोकिंग. कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज बाहर तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर अंदर. तो वी आर चोकिंग के सिचुएशन कोई भी होगी, क्या हम अपने आप को सिचुएशन में स्टेबल रख सकते हैं और उसके लिए मुझे क्या करना है? एंड उसमें ये जो अगर हम प्रैक्टिस करें, दिस विल अगेन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. कि सिचुएशन है आपके सामने, अभी आज आप अपनी सारी 1, 2, 3 सिचुएशंस लिख लीजिए, जो जो आपकी परिस्थितियां हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, चाहे वो जॉब की जो प्रॉब्लम है. अब इसको अपनी जगह से हटकर इस पोजीशन को देखने की कोशिश करें, और कोशिश करें दूसरे के दृष्टिकोण से देखने के लिए. बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज आल्सो राइट, बट इट्स ओनली राइट फ्रॉम द अदर साइड.
0: इट्स सो डिफिकल्ट.
1: इट्स नॉट राइट फ्रॉम माय साइड.
0: लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट. अनदर थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार हम ये कह तो रहे हैं कि अंदर से करें, लेकिन सचिवानी आज ऊपर से ही मेंटेन कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब रिश्तों की बात घर में.
1: ऊपर से मेंटेन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम ऊपर से मेंटेन कर रहे हैं,
0: अंदर से कर ही नहीं रहे.
1: दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन, अंदर तो फाउंडेशन पूरा गड़बड़ हो गया, ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो हर थोड़े दिन के बाद वो आपकी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है. और हम कहते हैं हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आवर रिलेशनशिप्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स. व्हाट्स द फाउंडेशन? तो फाउंडेशन पर क्योंकि टाइम नहीं है, या इंक्लिनेशन नहीं है, या पता ही नहीं है कैसे करना है फाउंडेशन पर, तो सारी मेहनत हो रही है उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में. आई वॉन्ट टू बिल्ड माई रिलेशनशिप एंड एवरी फ्यू डेज दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स.
0: ऑफ कोर्स
1: दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स, देन अगेन आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बट आई एम जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन. Just not working. Is it possible for one day? और उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है थॉट प्रोसेस को. कि जैसे ही कोई परिस्थिति में हम आते हैं, और ये तब हो पाएगा अगर हमने मॉर्निंग के टाइम पर वो थोड़ा सा साइलेंस एक्सपेरिमेंट किया.
0: सिचुएशन ऐसी लें कि हस्बैंड आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बहुत घरों में ये होता है कि, और सेम सिचुएशन ही हो जाती है, उसी सिचुएशन पे बार बार लड़ाई होती जाती है, और दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि वो गलत है. वैसे ही बॉस और सबॉर्डिनेट का भी सिचुएशंस अगर देखें तो मैक्सिमम टाइम वही होती है. उसकी आदत हमारे, हमें सबकॉन्शियस में जो भी है वो ऐसी हो चुकी होती है कि जैसे ही वो सिचुएशन आई मेरा रिएक्शन वही हो रहा होता है.
1: आपने अभी कहा कि हम वो कोशिश कर रहे होते हैं ढूंढने की कि वो गलत है या वो गलत है, बट एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. कौन गलत है दोनों में से? Which one of the two is ever wrong? Have you been able to find out? अगर आप logically decide करने की कोशिश करेंगे तो आपका answer हमेशा एक ही होगा कि मैं right हूँ, आप गलत है. इसीलिए तो हम, मैं जो कह रही हूँ वो तो right ही, मैं wrong थोड़ी बोलूंगी. That is the same way I will have to understand कि सोच समझ कर अपने दृष्टिकोण से मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो मेरे हिसाब से उस समय वो right है. And same goes for you. I may look at it and say it's wrong, but for you, it's right.
0: लेकिन मैं तो सोच समझ के बोल रही हूँ, वो तो सोच समझ के बोल ही नहीं रहे.
1: ये किसने बताया?
0: यही तो हम कहते हैं हर बार.
1: आपने कभी खुद ये गलत है ये सोचकर ऐसा किया? This is wrong. Now come, let me do it. ऐसा आपने कभी? Even if let's say I'm going to tell a lie, yeah, I am going to give a bribe, or I'm going to take a bribe, or whatever, anything.
0: But this is a need of the hour.
1: Whatever. तो सारी logic है ना उसके पीछे, कि ये नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, फिर वो government office में मेरा काम रुक जाएगा. तो logic तो दे देंगे ना उसको अपने आप को. और जैसे ही logic दिया, मतलब क्या कहने की कोशिश की?
0: It's justified. It's okay.
1: तो it's right. मेरे लिए वो right है, भले even the law of the country says that it's wrong. But मेरे लिए उस समय वो राइट है. हमें कई अपने कर्म थोड़ी देर के बाद लग सकता है कि ये गलत थे, लेकिन जिस क्षण हम वो कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं उस क्षण हमें वो राइट ही लगते हैं. कभी भी सोच समझ के कोई गलत नहीं करेगा, उसके पीछे उसके पास लॉजिक होगा कुछ ना कुछ करने के लिए. लेकिन बट द सेम अप्लाइज टू एवरीवन एल्स. एंड जिस समय, लेकिन आपका राइट देखने के लिए मुझे इस कुर्सी से उठकर उस कुर्सी पर आना पड़ता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन वो देखने के लिए मुझे अपनी सिचुएशन से, अपनी साइड से, अपने आइडिया से डिटैच होना पड़ेगा. तो डिटैचमेंट डजंट मीन यू नो कट ऑफ या बीइंग इनसेंसिटिव. इट मींस बीइंग एब्सोल्युटली देयर. लेकिन डिटैच्ड मतलब उस सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड,
0: जो हमने कहा
1: सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड. सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड. कुछ लोग क्या होता है, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएंगे, चलो ये मेरे से नहीं हो रहा फॉर फेस. लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड, और डिटैच्ड मतलब स्टेबल. सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, जो वो हमने कहा नदी पर, तो फिर कभी दर्द भी होगा, कभी कुछ होगा. लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड मतलब पेनलेस एग्जिस्टेंस. नाउ इफ आई वांट टू लिव अ पेन फ्री लाइफ, दैट्स माय चॉइस. इट्स नॉट कोल्डनेस. और जितना पेन फ्री मैं हूँ, दर्द के बिना हूँ, उतना मेरा औरों के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. तो कई लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब फिर ये तो परिवार में
0: डजंट वर्क,
1: बट एक्चुअली वो रिश्ते और भी
0: स्ट्रॉन्ग
1: होते जाएंगे. से समथिंग टू मी राइट नाउ विच इज लाइक वेरी इंसल्टिंग, इफ आई एम वेरी अटैच्ड, मेरे को कह दिया ऐसा, आई विल गो इनटू सो मच पेन. उसके बाद मैं चार दिन आपसे चाहे बात ही ना करूं या जो भी करूं. लेकिन You are right, whatever you are saying, but I still have to take care of myself. तो मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करना शुरू कर दूंगी. लेकिन दर्द में गई, फिर उस प्रोसेस से गुजरी, फिर अपने आप को ठीक किया, कितना टाइम बीता.
0: लेकिन वो इतनी जल्दी मैं आपसे बात करना शुरू कर पाऊंगी,
1: वो तो कितना टाइम लेके आता है. कितना टाइम हम लगाते हैं टू गेट ओवर दैट whatever. बिकॉज क्रिएट भी हमने किया, अब उसको गेट ओवर भी हमने ही करना है. हाउ मच टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन Again, me, not on you. So, jitna jaldi I will be able to get detached from my idea of what is, this is mine, this is what I think is right, I'll be able to see your perspective. और इस तरह अगर हम सारा दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड है ना हल्का रहता है. नहीं तो सबकी बहुत सारी क्लटर जो है वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है. एक इंटरनल चैटर जो है ना वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है. और फिर साइलेंस प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा दिन अगर बहुत सीन्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो अगर मॉर्निंग में साइलेंस में बैठने की भी कोशिश करेंगे अपने आप को देखने की, लेकिन वो सारा दिन जो नॉइज क्रिएट की थी वो ही वापस रिप्ले होने लगती है. तो साइलेंस सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, वॉचिंग योर थॉट्स सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, लेकिन सारा दिन की इस परिस्थिति को साक्षी होकर जिसको देखना. एंड साक्षी मीन स्टेबल स्थिति में. तो लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, सो वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड कि लेट मी फर्स्ट लुक एट द सिचुएशन. अब उस समय ये नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि जैसे ही सिचुएशन आए, अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम कर नहीं सकते. हम ये कर सकते हैं जो सिचुएशन गुजर गई है, लेट्स से
0: उसको एनालाइज कर ले
1: ताकि वो मेरा लर्निंग ले, नॉट उसके दर्द में चले जाए. दैट इज अगेन वेरी
0: इंपॉर्टेंट. तो हम जाते हैं, वो तो चलते ही रहता है हमारे साथ. कुछ हमारे साथ हो गया, किसी ने कल कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हो गया, वो दर्द तो कंटिन्यूस प्रोसेस हम अपने साथ रखते हैं.
1: फिर वो डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब दर्द नहीं. लेकिन अगर हमें पास्ट के सिचुएशन से कुछ सीखना है तो हम एक पल के लिए उस सिचुएशन को वैसे का वैसे सामने लाए, लेकिन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें. अगेन ऑडियंस में बैठकर कि वो सिचुएशन मुझे कैसे दिखाई देती है, ताकि उसमें आप सिर्फ, मैं अपना रोल नहीं लेकिन आपका रोल भी उतना ही इक्वली बैठकर देखूं, तो शायद मुझे उस सिचुएशन में क्लैरिटी और आती जाएगी. लेकिन सिर्फ अपने रोल पर देख रही हूँ और आपके रोल को तो बिल्कुल दूसरी साइड से देख रही हूँ कि ये तो है ही गलत सारा कुछ, देन आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ that pain, and then my mind is filled with so much of bitterness, so much of pain the whole day. For clarity or stability ये पॉसिबल
0: और सेल्फ को लेके जो सेल्फ पिटी वाला एस्पेक्ट है
1: Victimization.
0: कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं जब भी मैं एनालाइज करने लगती हूँ अपने साथ जो सिचुएशन हुई होती है, चलिए खुद अंदर भी एनालाइज कर रहे हैं, तो हर बार मुझे नजर आता है कि मेरे साथ गलत हुआ. मैक्सिमम लोग यही सोच पाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, तो एक साक्षी भाव यानी कि मैं अपने आप से भी परे हूँ.
1: Yes.
0: और उससे भी परे हूँ.
1: Yes. और उसमें जो हम आगे देखेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो है डिटैचमेंट, कि मैं कौन हूँ, ये सब तो मेरे रोल्स हैं, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब मेरे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ. वो मैं जब इस पूरे ड्रामा को देखेगा तो वो ड्रामा को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएगा, नहीं तो इट गेट्स सक्ड इनटू द ड्रामा, यू नो, इट जस्ट गेट्स कंज्यूम्ड बाय द होल सीन एंड देन इट कांट सी द सीन इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव. इसको अगर हम सारा दिन में, मुझे अगर रोज की अपनी तैयारी करनी है तो इसकी प्रोग्रामिंग मुझे सुबह से शुरू करनी पड़ती है. तो इसको हम आज तो 2 मिनट के लिए अभ्यास भी करेंगे, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल एक दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे 24 आवर्स. आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कल जब आप फिर प्रोग्राम देखेंगे आप तब तक अपनी चेकिंग करेंगे कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक प्रैक्टिस करनी है, कि वो हर सीन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, हर डायलॉग इंटेंगलमेंट जैसे जैसे होती जा रही है, एक दिन के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको देखने की कोशिश करें, रादर देन गेटिंग कंज्यूम्ड इनटू द ड्रामा. इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे इन अ वेरी इजी मैनर, बिकॉज हमें आदत पड़ी हुई है उस सीन के अंदर जाने की. तो डिटैच्ड होने के लिए शुरू में, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हमें उसी सीन के अंदर 2 मिनट साइलेंस कर लेना चाहिए. Lot of people are talking, there is lot of noise, everyone is going into chaos, kya hoga, kaisa hoga. Just 2 minute step back and try and look at the scene. Aapko wo scene bahut bada pata chalega ki itna bada hai nahi. Jaise na kabhi company mein hota project nahi ho raha, oh you will find that it just goes into chaos. Kya kiya tumne, nahi kiya, aisa nahi ho. Step, stop back, 1 minute. To jaise hi aap ye step back agar kal practice karenge, you will realize very soon ek bahut wonderful cheez, aur wo ye कि मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में,
0: क्योंकि मैं कर पाई. इवन स्टेप बैक में तो मैंने अपने आप
1: डिसाइड किया, मैंने ही तो किया अपने आप. सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे करना है, एंड भले थोड़े दिन अटेंशन से करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम वेरी इजी टू डू. कि देन वी विल रियलाइज कि परिस्थिति ने क्रिएट कर रही है ये सारा जो हम क्रियोस क्रिएट कर रहे थे, ये जो मैं अभी तक शोर मचा रही थी इस तरह से, ये मैं खुद ही बना रही थी, परिस्थिति तो वैसे की वैसे है. एंड धीरे धीरे वो रियलाइजेशन, जो ज्ञान समझ में आ गया है कि परिस्थिति नहीं स्थिति क्रिएट करती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, वो परिस्थिति में हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा. विल यू ट्राई टुमारो?
0: वेरी ट्रू.
1: यस, लेट्स डू 2 मिनट्स मेडिटेशन. इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं. आज सारा दिन जैसे जैसे मैं अपना रोल प्ले करती जाऊं, तो मुझे सिर्फ एक स्मृति रखनी है, मैं एक्टर हूं, ये मेरा रोल है, और मुझ एक्टर को इस रोल को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है. और मुझ एक्टर की विशेषता है, I am a powerful being. मैं शक्तिशाली हूं, और इस शक्ति के साथ मैं हर रोल प्ले करने वाली हूं आज. चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मेरे चारों तरफ कुछ भी हो जाए आज सारा दिन, I am a powerful being. I am the master of the situation. जैसे ही मैं ये परिस्थिति में ये स्मृति रखती हूं, तो परिस्थिति छोटी होती जाती है. Just one thought to take with me today, the whole day. I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. And I am master of every situation. Paristhiti मेरी रचना है। अगर आप सुबह कुछ देर, ये तो हमने बहुत, बट दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, दिस इज अ मेंटल प्रोग्रामिंग दैट आई एम डूइंग, आई विल डू दिस अगेन टुमारो मॉर्निंग, एंड कल की अपने दिन को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि नॉर्मली पता होता है आज सारा दिन में क्या क्या सीन्स आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड अपने आप को उन सब सीन्स में देख लीजिए ऑलरेडी कि यू आर गोइंग टू रिमेन स्टेबल। सो दिस इज अ सीन, यू नो दिस इज अ सजेशन विच आई एम ऑलरेडी टेलिंग माई सेल्फ कि दिस इज योर कैपेसिटी, तुम ये कर सकते हो, क्यों, बिकॉज यू आर अ पावरफुल बींग। लेकिन अगर मैंने अपने आप को थोट दिया मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, that will be the result. The thought is creating destiny, right? So just the thought, I am a powerful being. Paristhiti is here, I am here. Paristhiti mere upar nahi, main apni sthiti se paristhiti ko parivartan karti hu. Start the day un thoughts ke sath, aur fir jaisa hum har bar karte hain, har ek ghante ke baad ek minute beech mein, that's very important, kyunki thoughts par kai bar कहाँ कहाँ चले जाते और फिर पता ही नहीं चलता, तो इसलिए बीच में रुक कर कल एक ही थॉट लेते हैं सिर्फ, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ। और हर एक घंटे के बाद उसे एक ही थॉट को ही लेना है, लेट्स नॉट डू टू मच हार्ड वर्क, एक थॉट, आई एम अ पावरफुल बींग, वो एक थॉट मुझे सारी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाता है बिल्कुल। So let's try that out tomorrow.
0: And we should all try actually. Sister Shivani, thank you so much. आज जो हमने बात की, और यहीं से पॉजिटिव थिंकिंग क्या पॉजिटिव लाइफ शुरू हो सकती है, यू नो, क्योंकि यहीं से थॉट जो है वो मेरी पॉजिटिव डेस्टिनी बनता जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कोई सवाल, कोई बात आपके पास है, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-944-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन जिस पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस पर हम चल रहे हैं वो हमारा अपना अनुभव हो सकता है। हर रोज का अनुभव, हर रोज का होमवर्क हमें मिल रहा है जो कि हमें एम्पावर करेगा, हमें वो खुशी देगा जिसे हम शायद सिचुएशंस में भूलते जा रहे थे, उसके अंदर साक्टिन होते जा रहे थे, तो अब हम सिचुएशन से ऊपर हो जाएंगे, ये हमें एक एश्योरेंस मिल रही है। आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। जिंदगी साथ तय करते करते ऐसे लगता है कि हमारा और आपका एक परिवार बन गया है। ऐसे में कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आती है या कभी ऐसा लगता है कि कोई अड़चन है, तो फिर हमारे लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाती है और साथ मिलकर इस ज्ञान को जिसे हमने जान लिया है उसके आधार पर उसका सोल्यूशन, उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इस जीवन में हमारी बहुत सी ऐसी आदतें हैं, कई आदतें अच्छी होती हैं और कई आदतें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि हमारी मजबूरी बन सकती हैं। अगर वो आदत हमें ना भी हो तो हमारे किसी अपने की वो आदत हो सकती है जिसे हम दूर करना चाहते हैं ताकि वो मजबूरी ना बन जाए। आने वाली कुछ कड़ियों में हम इन्हीं आदतों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये आदत जब हमारी मजबूरी बन जाती है तो उसे क्या हम दूर कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञान हमारी मदद कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारी हम सफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत का कि जब हम आम जिंदगी जी रहे हैं, कई चीजों की हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि हर रोज करते करते दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है, तो लेकिन देखा गया है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उन आदतों को हमारी मजबूरी हम मान लेते हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चल पा रहा होता, तो तब हमें परेशानी लगती है। अगर हम इन आदतों के बारे में सचमुच में जानने की कोशिश करें तो कौन सी हैं वो आदतें जो हमारी मजबूरी में बदल सकती हैं?
1: मूल रूप से जो आप बात कर रहे हैं उसमें जब आमतौर पर हम सोचते हैं, मनोविज्ञान के विषय में जब सोचते हैं, तो अधिकतर एडिक्शन है, व्यसन है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़े दिन भी शराब पीने लगता है और फिर एक दिन शराब न पिए तो उसे जो तकलीफ होती है ना, उसको हम आमतौर पर एडिक्शन कहेंगे। जैसे ड्रग्स भी है, बहुत सारे ड्रग्स है कि जिसकी भी एक मजबूरी हो जाती है, परंतु छोटी छोटी बातें भी,
0: इवन स्मोकिंग, निकोटीन का जो है उसे भी व्यसन माने। ये मोटे मोटे तौर पर है, अगर हम सूक्ष्म बातें,
1: सूक्ष्म बातों पर अगर हम सोचे तो चॉकलेट्स खाने की आदत हो सकती है, आज कहीं है नहीं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि भी भोजन के बाद मैं मीठा नहीं खाऊं तो मुझे नहीं चलता है, भी रोज रात्रि के भोजन के बाद कोई मीठी डिश खाने की इच्छा होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वह भी एक प्रकार से देखो तो एडिक्शन। ऐसे और बातें भी हो सकती है, जैसे कि किसी को गुस्सा करने की आदत हो जाती है, छोटी सी बात को लेकर के भी वो गुस्से में आ जाते हैं, या तो दे वुड नो स्टार्ट फाइटिंग। आज यूथ में देखो, बच्चों में देखो, तो छोटा सा कारण देख करके भी दे विल इनिशिएट फाइट, इवन आई हैड सिमिलर थिंग व्हेन आई वाज स्मॉल। तो अभी जब बड़ा हुआ सोचने लगा, मनोविज्ञान को पढ़ा, तो इसके बारे में सोचने लगा तो पता चला कि सचमुच देयर वाज समथिंग रॉन्ग। और बच्चों की गलती नहीं होती थी, स्टिल आई विल इनिशिएट फाइट एंड एंजॉय इट।
0: अच्छा, एंगर को एंजॉय करने लगते हैं। एक्चुअली वही है एडिक्शन, जब हम एंजॉय करने लग जाए तो, या कोई भी आदत हम एंजॉय करने लग जाएं जो नेगेटिव है, वो एडिक्शन बन जाती है।
1: हाँ, वो मतलब एडिक्शन की शुरुआत हुई है। और भी अगर आगे बढ़े और वो बात ना हो और फिर अगर आपको तकलीफ होती है, हाँ, अंदर में आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, सर भारी हो गया और कई बातें भी, तो सचमुच कहेंगे कि एडिक्शन हो।
0: बिल्कुल डॉक्टर पटेल, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, कई ऐसी आदतें हैं जो हमारी एडिक्शन बन सकती हैं। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, जैसे शिवानी, जिंदगी जीते हुए आज हम जिस अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, एक्चुअली ये आदत जब व्यसन की तरफ या मजबूरी की तरफ बढ़ रही होती है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड अस?
2: आई थिंक थिंकिंग, क्योंकि हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं, हम एक थॉट क्रिएट करते हैं जो एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, हमने एक संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि उसको परखती है, निर्णय देती है और फिर वो एक्शन में

0: राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कई बार डिसीशन दिया था लेकिन हमने उसको बाईपास कर दिया. तो अब वो जिसको हम कहते हैं कि वो आवाज जो अंदर से आती थी वो आनी बंद हो गई, बट इट्स बेसिकली वो विवेक, वो अब काम नहीं कर रहा. तो थॉट क्रिएट हुआ और सीधा कर्म में आ गया एंड फिर वापस उसका इम्प्रेशन पड़ गया. तो ये एक बहुत डीप रूटेड साइकिल चलता जाता है,
1: विशेष होता है, जिसे हम कहते हैं, जहां कहीं ना कहीं हमारी विल पावर जो है, विल
2: पावर. सुमानी बेन कह रहे हैं ना, शी माइट आल्सो एग्री कि संस्कार बुद्धि को सप्रेस भी करते, या तो कहेंगे कि उसको मोटिवेट करते हैं कि यही करो. जैसे चॉकलेट खाने की आदत की बात कही, तो अगर संस्कार हो गए तो वो संस्कार उसे अफेक्ट करेंगे, कहेंगे पुल करेंगे या पुश करेंगे,
1: चॉकलेट अगर दिख भी नहीं रही तब भी याद
2: आएगी, और थोड़ा भी क्लूज भी मिल जाए, कहीं रैपर भी दिख गया चॉकलेट्स का, तो उसे याद आ जाएगा कि मुझे चॉकलेट्स खानी है. इवन बुद्धि भी, एक बार अगर ये हुआ आपने किया तो बुद्धि को भी उसी प्रकार का जजमेंट लेने की. बुद्धि है ना वेइंग स्केल जैसी है, जिससे हम माप करते हैं भी कितना वजन है, तो बुद्धि फिर जो वे करती है ना वो भी नेगेटिवली करेगी. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आदत हो गई कैडबरीज खाने की, तो बोले मेरा वेट बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से तो बुद्धि में कि भी वेट बढ़ रहा है, मैं कैडबरीज खाऊंगा वेट और बढ़ेगा. परंतु तब अगर ये आदत हो गई है तो बुद्धि कहती नहीं नहीं खा लो, और चीजें सोचेगी, अरे इससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है. ये ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है. ब्रह्मा कुमारीज में भी जब मैंने इनिशिएशन लिया तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी. जो सारा खेल है वह है मन बुद्धि और संस्कार का खेल है. अगर तीनों को ठीक से आपने मैनेज नहीं किया तो इसे बहुत सारी चीजें जो मजबूरी में परिवर्तन हो जाएगी.
1: डॉक्टर पटेल, अगर हमने अभी मोटे मोटे तौर पर हमने बात की है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यसन का या मजबूरी का या एडिक्शन का रूप ले सकती है, अगर और डीप में जाए तो क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? चॉकलेट की कैसी बात, क्योंकि अभी तक हम जनरली ये सोचते थे कि स्मोकिंग, निकोटीन का जो इनटेक है, स्निफिंग करना या ड्रग्स, ड्रिंक्स या इवन गुटखा, यही है जो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यू नो फिजिकली कर रही हैं, तो वही है जो एडिक्शंस हैं. आगे इसके डीप और हमारी जिंदगी में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एडिक्शन का रूप ले सकते हैं.
2: और जैसे सिंपल सी चीजें जिसे हम आमतौर पर एडिक्शन नहीं मानते हैं, वह है चाय कॉफी. आज कॉफी को तो मेडिकल साइंस में भी बोलने कि उसके फायदे हैं, टीस के बेनिफिट्स भी डिस्कस करने लगे. बट मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा तो ठीक है, परंतु ये कंपनीज ज्यादा मोटिवेट करती है. जो रिसर्च आ रही है ना, अधिकतर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ये माइंड सेट होता है कि मैम ये प्रूव करना है कि भी कैफीन अच्छा है.
1: रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमें जा रही है. बिल्कुल,
2: क्योंकि जो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करनी है इसके लिए अधिकतर वो रिसर्च देते हैं, अदरवाइज इट्स अ प्रूवन फैक्ट उसकी आदत होती है.
1: इनफैक्ट ये बिना सोचे ही हम वो कॉफी का कप उठा लेते हैं या चाय का कप उठा लेते हैं और पीने लगते हैं.
2: और अगर नहीं मिला
1: तो सर में दर्द.
2: हाँ, एक घंटा भी नहीं हुआ सर दर्द, पाल्पिटेशन होने लगेगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल, डिसीजन नहीं ले पाते हैं. और हार्मफुल इफेक्ट्स आर नोन टू एन एक्सटेंड एटलीस्ट, कि भी वो एसिडिटी क्रिएट करेगी. एक स्फिंक्टर होता है, इसोफेगस और पेट के बीच में एक द्वार है जिसको लूज कर देती है, तो एसिड आएगा और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होगा, जिसको आमतौर पर हम एसिडिटी कहते हैं. आज बच्चों में भी गुटखा सिंपल चीज नहीं है. आज आमतौर पर यही सोचते हैं कि भी सरल सी चीज है, उससे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, अच्छा लगता है. परंतु कॉलेज के विद्यार्थियों में ऑलमोस्ट 70% है उनको इसका व्यसन हो.
1: डॉक्टर पटेल, एक और एस्पेक्ट हम बात करना चाहते हैं कि ये तो हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे, कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी आदतें पड़ चुकी हैं, आजकल ये देखा गया है टेलीविजन की एडिक्शन है, कंप्यूटर्स की एडिक्शन है, और वो भी अब वो एडिक्शन है या क्योंकि वो कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, अगर कंप्यूटर नहीं कर पा रहे तब मुश्किल है, टेलीविजन के वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे तब भी. मैंने देखा है कि विमेन जो सीरियल देखती हैं, अगर एक एपिसोड छूट जाता है तो देयर इज अ हेडेक. तो ये भी सारे क्या एडिक्शन में
2: यार? बिल्कुल, अभी दो दिन पहले ही एक नौजवान था जो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ तब तक मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे और कोई काम दे दे कि ऑल ऑफिस वर्क करो तो मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है. तो दिस इज एडिक्शन इनका. सिर्फ इंटरनेट का ही नहीं, इंटरनेट का एडिक्शन तो बहुत कॉमन है कि सारा दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहेंगे, अगर थोड़ा भी उन्हें मौका नहीं मिला तो सर दर्द हो जाएगा, इरिटेशन होगी, नींद नहीं आएगी.
1: सिस्टर शिवानी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, जब हम बात कर रहे हैं जागरण की आज, तो

0: अब ये सारी बातें अगर हम बात देखें तो चॉकलेट खाना तो मैं मान ही लेती हूँ कि ये आदत है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझ सकती हूँ, कैसे मैं ये जानूँ कि मेरी जो आदत है ये मेरी मजबूरी बनती जा रही है? हाउ कैन आई डू इट विद अवेयरनेस?
1: जिस क्षण हमें ये लगने लगे कि इसके बिना अब हम रह नहीं सकते,
0: सर में दर्द हो रहा है या कोई फिजिकल
1: नहीं, इवन इंटरनली यू नो, वो खींचती है वो चीज मुझे. फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका सर दर्द या बॉडी में जो भी परिवर्तन आए वो तो फिर दूर की बात, लेकिन संकल्प मेरा जिस तरफ जाता है, अगर जैसे कंप्यूटर का एडिक्शन है, अब दूसरा काम करने बैठे हैं लेकिन थॉट इज गोइंग बैक टू द कंप्यूटर, तो एडिक्शन पहले तो संकल्प लेवल पर आएगी ना. तो हम कर एक चीज रहे हैं लेकिन माइंड उस पर ना कॉन्सेंट्रेट होकर दूसरी चीज की तरफ वापस खींचता हुआ जा रहा है, जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती, सपोज चाय या जो भी चीज इस तरह से जो लैकिंग है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा माइंड उस तरफ ही खिंचता जाएगा. सो आई कम टू नो कि यू नो आई एम अडिक्टेड टू समथिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. एंड मेरे को लगता है सबसे डीपेस्ट लेवल ऑफ एडिक्शन होगा थॉट लेवल पर. इवन हम अडिक्टेड है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंकिंग के, इसी तरह से सोचना है. जैसे हमने देखा नेगेटिव सोचना, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव यू नो रिस्पॉन्स क्रिएट करना, तो वो भी तो एक एडिक्शन है. तो इसीलिए लोग कहते हैं हम सोचना चाहते हैं पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव संकल्प आता ही नहीं है. या एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करना, जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लूं,
0: मुझे लगता है नहीं, हाँ,
1: या सपोज मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए तो मुझे उन्हीं के साथ शेयर करना, दैट मीन्स समवेयर आई एम अडिक्टेड इवन टू रिलेशनशिप्स. यू नो कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये यू नो इनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई कैन नॉट मैनेज विद द रिलेशनशिप, बट देन आई कैन नॉट मैनेज विदाउट द रिलेशनशिप ऑल्सो. सो दैट समवेयर दैट इज एन एडिक्शन, के साथ भी नहीं चल पा रहे, यू नो संबंध बना के भी नहीं चल पा रहे, लेकिन
2: एक बहुत अच्छी दो बातें मेरे ध्यान में आई. एक तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम आमतौर पर कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट में कहा गया, सारी एक पूरी किताब इस पर लिखी गई है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम पहले करो. तो जब हमें एडिक्शन होने लगा है तो वह प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं कर सकेंगे. नहीं, आपको पता है कि भी अभी मुझे ये फोन करने की जरूरत है, लेकिन तब भी आप इंटरनेट को खोल के बैठे हैं या तो और कोई भी ऐसी ही बात कि जो शो करते कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम नहीं कर रहे. शिवानी बेन ने साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत अच्छा बताया कि अगर हमें किसी की क्रिटिसाइज करने की भी आदत होगी तो नहीं, जब तक आप उस व्यक्ति की टीका नहीं करेंगे, नहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढ निकाल, हाँ कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि आप मन में तो टीका नहीं करेंगे, आप व्यक्ति को ढूंढेंगे कि ऐसा कोई मिल जाए तो जो उसको आपके जाके बात करे, उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव कुछ चर्चा करने लगे, तो यह भी एक व्यसन हो जाता है. तो नहीं, बड़ी सूक्ष्म बात है,
0: बहुत डीप लेवल पे चले जाते हैं डॉक्टर पटेल. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैं चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चाय पीना, ठीक है आदत है मेरे को, नहीं पीती तो सर में दर्द हो जाता, तो कोई बात नहीं मैं पी लूंगी, चॉकलेट खाना अच्छा लगता है या कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, वो आदत है मेरी, हैबिट होना कोई, मैं मानती हूँ या बहुत से हम में से लोग ये मान के ही चलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, गलत हो गया, कितना हैजार्डस है. हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड.
2: पहले भी तो अगर सपोज आदत भी है, चलो मान ले कि वे एडिक्शन नहीं है, आप कहते हो अच्छी आदत है, परंतु फिर भी आपकी एफिशिएंसी तो कम हो रही है, कि जब कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो उस समय जरूरत है कि भी और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और कुछ क्रिएटिव थिंकिंग आपको करना चाहिए और फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए, पर अगर आप उस समय आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो गई. तो उस रीति से तो देखो हैजार्डस है ही है,
0: फोन में बात करने के
2: एडिक्शन हो जाती है, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ
1: SMS सारे दिन करने की,
2: तो कितना टाइम. यहाँ पर ये देख, क्योंकि ना टाइम ऐसा रिसोर्स है कि जो कोई भगवान भी नहीं दे सकता. आमतौर पर भी कि हम सोचते मैं सारा समय बिजी हूं, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं, परंतु हमने सही समय पर सही काम नहीं किया. नो राइट थिंग एट अ राइट टाइम.
1: आई थिंक एंड इट्स आल्सो दैट हम अपने ऊपर अब मास्टरी नहीं है, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है. जब कोई एक बाहर की चीज हमें अपनी तरफ इतना खींच सकती है कि हम रोकना चाहें फिर भी नहीं रोक पाते, दैट मीन्स मेरा अपनी कर्म इंद्रियों पर अब सेल्फ कंट्रोल जो हम कहते हैं, और राजयोग हम इसीलिए कहते हैं ना, स्वयं पर राज्य करने की शक्ति, तो वो राज्य करने की शक्ति खत्म हो गई है. एक चॉकलेट ही मेरा स्वराज्य खत्म कर देती है.
0: आई विल डू व्हाट आई वांट, बट देन वांटिंग शुड बी अगेन यू नो नॉट डिपेंडेंट ऑन माय संस्कार.
1: एब्सोल्युटली, मतलब हाँ चॉकलेट खाना वो गलत नहीं है या कॉफी पीना वो गलत नहीं है, लेकिन जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊं उसको करने से, या कुछ और कर रही हूँ फिर भी मन उस तरफ खींच रहा है, तो मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मुख मेरे कंट्रोल में नहीं है कि पता है नहीं खाना फिर भी मुंह में डालना पड़ रहा है, तो दैट मींस आई एम टोटली अ स्लेव टू व्हाटएवर दैट हैबिट।
2: और एक बात है ना, और भी सूक्ष्म है, जैसे आपने कहा कि भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है कि भी मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं चाय पी रही हूँ और ये हार्मफुल भी नहीं है, परंतु आप आपकी ये जो आदत पड़ रही है और चीजों में भी होगी, जो कहेंगे कि माइंड पावर आपका कम हो रहा है, आज तो चाय की बात,
0: आज आपने एक को दे दिया, हाँ
2: कल और कोई नेगेटिव विचार आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि एक डिप्रेसिव थॉट आ गया, तो अभी आपने तो मन को तो कंट्रोल किया ही नहीं है, तो डिप्रेसिव थॉट आपका चलता रहेगा, वो सारा दिन उसमें बर्बाद कर देगा, इवन फिजिकल डिजीजेस कर देगा अल्टीमेटली। सुनो, इट्स स्मॉल थिंग इज ऑल्सो डेंजरस, इसीलिए कहा गया है कि हमें सब कुछ अवेयरनेस के साथ करना।
0: बिल्कुल, कई बार ये देखा गया है पेन के भी ऑब्सेसिव हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। आई नो समबडी एक थॉट को लेके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 3 दिन उनके निकल जाते हैं, क्योंकि आई थिंक वो कोई नहीं भी हो चीज तब भी उन्हें आदत पड़ जाती है कि विक्टिम बनने की जो आदत होती है, दिस आल्सो आई थिंक पार्ट ऑफ
2: एंजॉय। आगे चल के तो ये होता है कि भी अगर उन्हें कोई दर्द ना हो, किसी ने उनको दुख नहीं दिया है, तो फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं,
0: सेल्फ इन्फ्लिक्शन हो जाता है,
1: खुद को देना शुरू करेंगे ना सर,
2: या तो ढूंढेंगे फिर क्यों नहीं हो रहा है, जैसे एडिक्शन वाले को चीज ना मिले तो कैसे वह तकलीफ महसूस करता है, सर दर्द होगा, पल्पिटेशन होगा, तो ऐसे जिनको ये भी आदत हो गई है कि भी कुछ ना कुछ दुख होना ही चाहिए, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, संबंधों की पीड़ा हो, और वो उनको अगर ऐसा मौका नहीं मिला सोचने का, बातें करने का, तो दिक्कत होने लगी,
0: तो किसी और की पीड़ा को लेके वो जीने लग जाते हैं, फिर साथ साथ किसी और का साथ
1: टेंशन करने की आदत पड़
0: जाती है, टेंशन अच्छी होती है, मैं टेंशन में हूँ तो मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा, तो इसलिए हर बार टेंशन क्रिएट करूंगा।
1: कुछ लोग कहते हैं इस बात की टेंशन है कि आज कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन भी मतलब वो होनी चाहिए कंटिन्यूअसली माइंड के ऊपर,
2: दिस इज अ डीप साइकोलॉजी इनफैक्ट, कि अगर ऐसी आदत हो गई किसी को तो फिर वह समस्या क्रिएट करेगा, कि जैसे ना आपने कोई काम दिया तो ठीक से नहीं करेंगे ताकि आप उसको डांटो, जब उसे डांट पड़ेगी तब उनके लिए अच्छा है, या दे आर विक्टिम।
0: एक्चुअली यू नो अगर हम डीप में जाते हैं डॉक्टर पटेल, तो मतलब अब हमारे दिमाग के भी ऐसे पर्दे खुलते जाते हैं कि कितना हम किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात ये हम जानना चाहेंगे कि देखिए जो बड़े बड़े व्यसन है, चाहे हम स्मोकिंग की बात करते हैं या जो फिजिकल लेवल पे सामने दिखते हैं, उनके लिए तो डी एडिक्शन के बहुत सारे कैंप्स और बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, डीप रूटेड लेवल पर एक्चुअली सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करता है?
2: इसका डीप लेवल का सबसे पहला तो स्टेप जरूरी है, वह है सजगता, कहेंगे अवेयरनेस। शिवानी बेन ने भी जो कहा ना कि वो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आप उसको वहां जब शुरू हो रहा है, छोटा सा पौधा आगे बढ़ रहा है, पहचान ही नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले ये जरूरी कदम है कि मेरे शरीर में क्या फीलिंग्स हो रही है, मुझे विचार क्या आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम सजग हो जाए, सजग हो और साथ में उसको हम वॉच भी करें,
0: देख पा रहे हैं, साक्षी बन जाएं, जैसे
2: वॉच करना पड़ेगा कि भाई क्या है वो,
0: ये आया, ये
2: अच्छा है या नहीं है, नहीं जैसे आगे भी मैंने कई बार कहा है वॉच और मैच भी करना है, नहीं वो दोनों स्टेप्स आवश्यक है, वह प्राइमरी स्टेप्स लेंगे तो इसको ढूंढना सहज होगा।
0: ये तो बात हुई कि हम अवेयर हो गए, क्रिएट हो गए, उसके बाद क्योंकि अल्टीमेटली हम जब भी कोई बात कर रहे हैं, जब भी किसी समस्या की बात कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना जरूरी है। कैन द एडिक्शंस बी कंट्रोल्ड, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, क्योंकि यही एडिक्शंस ही कहीं ऑब्सेसिव कंपल्शन भी बन जाती हैं, जो बड़ी बीमारी मानी जाती है साइकेट्रिक, या एक छोटी चाय पीने से लेकर शुरू करके, ये पूरा जो एक प्लेटफॉर्म, पूरा जो एक हम देखते हैं ग्राफ बनता है, क्या छोटी से छोटी ऑब्सेशन से लेकर बड़ी से बड़ी ऑब्सेशन सॉल्व की जा सकती?
2: नो, डेफिनेटली आंसर इज यस, और जितना जल्दी आप स्टेप्स लेंगे वह सहज होगा। शुरू में कितना ना बड़ा एडिक्शन हो, शुरू में अगर आपने समझ लिया तो उसे कंट्रोल करना इजी है, जब वह जैसे ही फर्म बनता जाएगा फिर हो सकता है, फिर भी पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। कितना ना बड़ा एडिक्शन हो, हीरोइन का एडिक्शन है, ब्राउन शुगर का एडिक्शन है, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर प्रॉपरली हम सिस्टमेटिकली उनके साथ वर्क करते हैं, डॉक्टर भी करे, व्यक्ति खुद एफर्ट्स करे, फैमिली मेंबर्स भी उसमें सपोर्ट देते हैं, कुछ हद तक आध्यात्मिकता को भी अपनाया जाए, तो सब कुछ मिला करके बड़े से बड़े एडिक्शन से भी व्यक्ति 100% बाहर निकल सकता है, और वही लक्ष्य होना चाहिए।
0: सिस्टर शिवानी, स्पिरिचुअली अगर हम देखें कि आज जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, इट हैज रियली हेल्प्ड इन लॉट मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। अवेयरनेस जहां तक बात हुई है, एक कनेक्शन से जुड़ते गए हैं, ये जो ऑब्सेशंस हैं, पहला पहचानना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सजगता, तो क्या मेडिटेशन विल क्रिएट दैट अवेयरनेस इन मी? एंड सेकेंड इज क्या सोल्यूशंस की तरफ जाने की जो मेरी विल पावर है, जो जो संकल्प शक्ति है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है।
1: मेडिटेशन करने से क्या होता है, हम अपने संकल्पों के लिए अवेयर है। पहले क्या हो रहा था, क्या चल रहा है सारा दिन, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था चल रहा है, और हमें ये भी पता है कि दिन में 25-30-40,000 थॉट्स क्रिएट हो रहे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है। अब जितना जितना हम कॉन्शियस होने लगे हैं कि ये अंदर का प्रोसेस क्या है, तो हम अवेयर है, हाँ ये मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है, ये राइट है या ये गलत है, ये भी अवेयरनेस आ गई है। इसलिए कई बार अब लोग कहते हैं मेडिटेशन हमने करना शुरू किया तो लगता है गलत थॉट्स ज्यादा आ रही है, बट एक्चुअली गलत थॉट्स ज्यादा नहीं आ रही होती है, इट्स जस्ट दैट पहले हम देख नहीं रहे थे, अब क्योंकि उसकी तरफ देखना शुरू किया तो लगता है ये तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, बट विच इज अ गुड साइन, क्योंकि जहां हम उसको देखना शुरू करेंगे तो वो फिनिश भी होने लगेगा। तो अगर ऑलरेडी कोई एडिक्शन नहीं है तो अब आगे तो नहीं होगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि नाउ यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तो जहां थोड़ा भी आपको पता चलेगा कि आपका माइंड किसी चीज के साथ जुड़ता जा रहा है, आप तुरंत से अपने आप को उसके से विड्रॉ कर लेंगे। और अगर ऑलरेडी कोई है एडिक्शन, ऑलरेडी हमें किसी चीज की बहुत स्ट्रांग आदत पड़ गई है, अब अगर हम डिसाइड करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज इफ आई चूज कि मुझे उसको फिनिश करना है, तो मेडिटेशन से विल पावर बहुत बढ़ जाती है। जो चीजें इम्पॉसिबल पहले लगती थी वो बिल्कुल सहज पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि विल पावर है। और आत्मा को जब स्मृति आ गई कि मैं मालिक हूँ, एंड दीज आर ऑल अंडर माई कंट्रोल, वो एक कॉन्शियसनेस ही बहुत सारी चीजों को सहज कर देती है। और फिर जैसे सारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल हेल्प, अगर बहुत सिवियर एडिक्शन है, बट मेडिटेशन से विल पावर बहुत बढ़ती है, करना बहुत ईजी हो जाता है।
2: मेडिटेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भी हम वो निर्णय करें, वह निर्णय में भी मेडिटेशन बहुत मदद करता है, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने आप को क्लियरली देख पाते हैं। पानी भी जब नहीं हिल रहा है तो आप अपना इमेज क्लियरली देख पाते हैं। तो जब मेडिटेशन में आपका मन शांत होने लगता है तो शांत मन अपने आप को स्पष्ट रूप से देख पाता है कि भी मेरे में कौन सी कमियां हैं, छोटी सी भी कमी, कि भी छोटी सी भी कमी को मैंने देख लिया कि भी नेगेटिव सोचने की आदत हो गई। आज मेरे एक मित्र है कि जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना तो उसे तकलीफ होती है, ही इज वेरी गुड इनफैक्ट अदरवाइज क्वाइट सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं कहा एक बार कि भी मैं देख लेता हूँ कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो मुझे जलन होती है, और वो मेडिटेशन में पता चला। आमतौर पर हमें पता ही नहीं चलता है,
0: क्योंकि हम तो हमेशा परफेक्ट होते हैं, हमेशा विक्टिम है, हमेशा ये है कि दूसरा ही गलती पे है। डॉक्टर पटेल, हमने ये भी देखा है अक्सर कि जब हैबिट हो जाती है या व्यसन, जो फिजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, तो उसमें अगर वो नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस बहुत हो रहे होते हैं। सो क्या वो मेडिटेशन के द्वारा उन केमिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी कंट्रोल किए जा सकते हैं?
2: वो भी अल्टीमेटली होंगे। अल्टीमेटली अगर आप अच्छे से मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो केमिकल्स, इवन नर्व्स पर जो इफेक्ट हुई है, वह नर्व्स पर हुई नेगेटिव इफेक्ट को भी आप कम कर पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन में जो बहुत अच्छी चीज है वह है एक्स्ट्रा सेंसरी ब्लिस, अति इंद्रिय आनंद जिसको कहे, तो जब अति इंद्रिय आनंद का हम अनुभव करते हैं तो वही स्थिति है
0: जो हम, जिसके लिए हम व्यसन कर रहे हैं एक्चुअली, जिसे हम मान रहे हैं कि हमें इनसे वो मिल रहा है।
2: हाँ, तो वह अति इंद्रिय आनंद में भी वही एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स आदि निर्माण होते हैं, और उसके लिए एक पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट बन सकता है।
0: ओह दैट्स वंडरफुल एक्चुअली, कि वही केमिकल्स जो हमें कहीं ना कहीं उस आदत से मिल रहे हैं वो हमें मेडिटेशन से मिल पाएंगे,
2: और वो नेचुरल है।
0: हाँ, बिल्कुल, विद अ पॉजिटिव
2: और सही मात्रा में मिल रहे हैं। एडिक्शन से मिल रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और मेडिटेशन में जितना आवश्यक है उसी मात्रा में वो अपने ब्रेन के केमिकल्स से, इसलिए सबसे अच्छा है।
0: बहुत सुंदर आपने बात की, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमें मिल सकता है। सिस्टर शिवानी, कोई ऐसी बात एडिक्शन से जुड़ी हुई या व्यसनों से जुड़ी हुई जो कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस को और इंक्रीज कर सकती है, कहना चाहिए?
1: बस यही कि सारा दिन चलते फिरते, अब तो पहले थोड़े समय के लिए जस्ट ट्राई एंड इवैल्यूएट कि किन किन बातों से हमें एडिक्शन है, क्योंकि जहां हम एक प्रोसेस, एक जर्नी पर चल रहे हैं इन आदतों से मुक्त होने के लिए, तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किन बातों की आदत है। जैसे भाई साहब ने भी कहा, जेलसी, नॉट लाइकिंग somebody's सक्सेस, बहुत सूक्ष्म है। तो ये अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो हमें अपनी आदतें पता नहीं चलेंगी, इसके लिए थोड़ी सी सूक्ष्म चेकिंग, और उसके लिए अगर हम एक दो दिन भी अपने आप को ध्यान से चेक करें, मुझे लगता है हमें अपनी सारी आदतें पता चलती जाएंगी, एंड देन वी कैन बिगिन ऑन दिस जर्नी।
0: बिल्कुल, और हमने भी ये सफर शुरू किया ही है, अब सारी अपनी आदतों को जानकर उनको किस किस तरह से एक एक आदत को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शिवानी एंड डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच, आगे बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। ओम शांति। सचमुच जब अपनी आदतों को देखने की कोशिश की तो नजर आया कि वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम सिर्फ आदत मान लेते थे या लगता था कि नहीं हमारे कंट्रोल में है, जब हमें नहीं मिलती है तो पता चलता है कि नहीं, कंट्रोल हमने किसी और के हाथ में दे दिया है, और वो कंट्रोल हमारी आदत के हाथ में हो सकता है। चाहे वो बड़े से बड़ा व्यसन हो, या फिर सिर्फ चॉकलेट खाने की, या फिर किसी से नाराज होने की या जलसी की आदत हो, ये सारी आदतें कहीं ना कहीं हमें डिप्लीट करती हैं उस खुशी से जिसे हम तलाश रहे हैं। तो आने वाली कड़ियों में जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन सभी आदतों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर कराते आते हैं, हर बार की तरह खुला निमंत्रण है आपके पास, स्वागत करते हैं। आप हमें खत लिखिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
3: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में ये मुलाकात यूं ही चलती रहेगी। आने वाले कुछ कड़ियों में इन सभी हैबिट्स, इन सभी एडिक्शंस या आदतों को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके जानेंगे। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

का ये रूप नया है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है जीवन एक साधना है, संघर्ष नहीं। चलिए हम इस पर आज चिंतन करते हैं। आज के इस व्यस्त और भागदौड़ भरे जीवन में हम सभी किसी न किसी चिंता, तनाव या दबाव से गुजर रहे हैं। कभी काम का बोझ, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी भविष्य की चिंता। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, क्या जीवन सच में इतना कठिन है? प्रिय श्रोताओं, जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना लिया है। असल में जीवन संघर्ष नहीं, एक सुंदर साधना है। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है हर दिन हर कार्य को पूरे मन से करना। जब हम अपने काम को बोझ समझकर करते हैं तब तनाव पैदा होता है, लेकिन जब वही काम हम कर्तव्य और सीख के रूप में करते हैं तो वह साधना बन जाता है। आज हम सफलता को सिर्फ पैसे, पद और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि शांति भी सफलता का एक मापदंड है? यह सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो फिर वह सफलता अधूरी है। प्रिय श्रोताओं, भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब हम परिणाम से ज्यादा कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। आज की सबसे बड़ी समस्या है मन का भटकाव। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और। आध्यात्मिक जीवन शैली हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जब हम इस क्षण को स्वीकार करते हैं तभी जीवन सरल और सुंदर बनता है। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, जरूरत है केवल दृष्टि बदलने की। यदि हम हर दिन थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकाल लें, अपने मन से बात करें, आभार व्यक्त करें, तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। इसी संदेश के साथ यही कहना चाहूंगा, जीवन को संघर्ष नहीं साधना बनाएं। तो मित्रों, ये था आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया तो बाहर जाओ, कर क्या? यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाएं? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, आप आइए।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एक बार और।
1: दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज वेलकम सिस्टर ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस
2: थैंक यू
1: सिस्टर हम ब्लिस की बात कर रहे थे हैप्पीनेस की बात कर रहे थे कंजर्विंग एनर्जी की बात कर रहे थे तो इससे पहले मैं कुछ आपसे पूछूं मैं कुछ पढ़ सकता हूं जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज हाँ जी द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग और ब्लेसिंग यू द यूनिवर्स इज ओनली रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल एटीट्यूड दैट यू आर एमिटिंग वॉट इफ एवरी वर्ड यू सेड वेर अ विश to the universe would you still say the same things that you did yesterday your thoughts and words echo throughout the universe make sure to only put out ones that you want back
2: this is exactly in line with what we were talking about yesterday
1: ji
2: kal humne dekha ke thoughts जो सारा दिन हम क्रिएट करते हैं ये एक ही चीज है जो हम सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं ये कभी भी नहीं रुकते रात को भी नहीं बंद होती कम हो सकती हैं लेकिन बंद नहीं होती हैं एंड विच मीन्स एवरी सेकेंड ऑफ माय लाइफ आई एम क्रिएटिंग थॉट्स एवरी सेकेंड दिस लिविंग बीइंग जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं सोल कहते हैं स्पिरिट कहते हैं ये हर क्षण सोच रहे हैं सिर्फ शरीर लेने के बाद नहीं शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा सोचती है आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो भी सोचती है फिर बच्चा पैदा होता है तब से सोचता है
1: तब मन
2: आत्मा है ना आत्मा है मतलब सोच है
1: अब मन है के बाद सोचती
2: सी इट्स एनर्जी आत्मा यहाँ बैठी है सोच रही है मतलब एक एक थॉट क्रिएट हो रही है अब वो यहाँ बैठने के बजाय अगर यहाँ से निकलकर यहाँ बैठी है सोचने का काम तो उसका चल रहा है शरीर में आने से क्या होता है जो थॉट वो क्रिएट करती है उसको वो इस शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती है जब आत्मा शरीर छोड़ती है थॉट फिर भी क्रिएट करती है एक्सप्रेस नहीं कर सकती है एक छोटा बच्चा है थॉट क्रिएट करता है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कोमा में है थॉट क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बोल नहीं सकते हैं उसको कर नहीं सकते हैं थॉट क्रिएट कर सकते हैं इसीलिए अगर जैसे सो ब्यूटिफुली यू सेड कोई कोमा में है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सुन सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी हर बात सुन सकते हैं हमारी हर थॉट कैच कर सकते हैं तो इसीलिए अगर कोई इस तरह से बीमार है उनके पास बैठकर हम जो बोलेंगे और बहुत अच्छी प्यारी बातें अगर हम उनसे करें क्योंकि आत्मा जब एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट यू नो यू वांट टू से समथिंग बट यू कांट से इट यू वांट टू डू समथिंग यू कांट डू इट सो इट्स लाइक
1: वैसा सपने में भी होता है आई वांट टू से समथिंग लेकिन आवाज नहीं निकल रही चोक हो गया
2: इसी तरह जब आत्मा माँ के वूम्ब में भी होती है बोल नहीं सकती छोटा बच्चा होता है अपनी बात नहीं बता सकता सिर्फ रो सकता है भूख लगी तो भी रोएगा पेट दर्द हो रहा है तो भी रोएगा
1: नींद आई
2: तो भी रोएगा बिकॉज इट जस्ट कांट डू इट एनी अदर वे सो दिस इज सफरिंग क्योंकि वो रोता ही जाता है हर बात के लिए रोता ही जाता है दिस इज सफरिंग क्योंकि बोलना चाहता है बताना चाहता है बता नहीं सकता क्योंकि अभी तक फिजिकल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है बताने के लिए इसी तरह जब कोमा में है तो आत्मा का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है सी आत्मा थॉट क्रिएट करती है सिग्नल ब्रेन को भेजती है फिर ब्रेन उसको बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करके बाहर ले आता है कोमा में सिर्फ इतना सा होगा बॉडी भी है वहां ब्रेन भी है सब ठीक है लेकिन आत्मा का ब्रेन से जो एक कनेक्शन है ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया वो एक तार जिसको बोलेंगे ना जैसे डिस्कनेक्ट हो गई तो लिंक टूट गया तो सोच रही है सुन रही है फील कर रही है सिर्फ उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती ब्रेन को और फिर ब्रेन बॉडी के थ्रू उसको करा नहीं सकता तो इट इज सो पावरफुल कि हर क्षण आत्मा सोच रही है एंड जो चीज हम हर क्षण कर रहे हैं उसी के बारे में हम अवेयर नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
1: तो ये अवेयरनेस हमें नहीं थी कि हमें अवेयर होना है।
2: होना है। और इसी तरह जैसे आपने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी सोच रही है, वाइब्रेशंस रेडिएट भी कर रही है, हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है उसको भी कैच कर सकती है। वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उस आत्मा के प्रति जिसने शरीर छोड़ा है हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं,
1: कितने भजन करते हैं, पूजा करते हैं उस समय पे, भगवान का नाम लेते हैं,
2: भजन राम करते हैं,
1: बोलते हुए ले जाते हैं,
2: पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत रोते भी हैं। भजन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत रोते हैं, रोते भी हैं लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं और सोचते हैं, कैसे चले गए ऐसे, मेरा क्या होगा अभी आपके बिना, आपको वापस आना ही पड़ेगा, मुझे तो जीना ही नहीं है आपके बिना। एक एक थॉट ये हमें विजुअलाइज करना होगा कि हाउ इट फील्स कि हम यहाँ से निकले, हम एक दूसरी जगह पर है और हमारा परिवार कंटिन्यूसली इस तरह के मैसेज भेज रहा है।
1: सपोजिंग मैं छुट्टी पे या बिजनेस के लिए अमेरिका गया,
2: यस,
1: और पीछे से बोल रहा है आपने सोचा भी नहीं कैसे चले गए, हम काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, आप वहाँ क्यों चले गए, जल्दी वापस आ जाओ।
2: और वो भी कॉन्स्टेंट, ऐसे नहीं दिन में एक बार ऐसा मैसेज आ जाए,
1: कॉन्स्टेंट नहीं, दुख से रोते हुए दर्द से,
2: कॉन्स्टेंट
1: नहीं, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट भी है, खुशी से नहीं,
2: खुशी से नहीं ना, हाँ दर्द के, और वो भी एक व्यक्ति से नहीं, परिवार के कई लोगों से। तो ये आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए कितना सफोकेटिंग होगा। अब आप तो अमेरिका गए तो वापस आना हो तो आ तो सकते हैं ना, फोन पर बात कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट सफोकेटिंग, उतना सफोकेशन नहीं है। फिर भी परेशान होंगे ना, वहां कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस मिले, अगर दिन में कोई दो ईमेल भी भेज दे ऐसी, या दिन में एक बार फोन करके भी रोज ऐसा बोल दे तो भी कितना परेशानी होगी। और यहाँ तो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, वापस आ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और उसको कांस्टेंट और पूरे परिवार से ऐसे मैसेज मिले तो कैसी फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये हमें सारा दिन इस डायनामिक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा गर्भ में है तो भी थॉट्स कैच कर रहा है, बोल सुन रहा है, बता नहीं सकता, अटेंशन रखे हम उस बच्चे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। द सोल इज कैचिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग, नॉट ओनली जस्ट कैचिंग।
1: पुरानी कहानियों में थे, गर्भ में इसने ये सीख लिया, बाप ने ये सुनाया तो गर्भ ने में इसने ये सुन लिया, वो सीख लिया।
2: एब्सोल्युटली नो, सो इट्स नॉट ओनली जस्ट कैचिंग बट इट्स ऑल्सो थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट दैट। सपोज हमारे मतलब somebody is expecting a baby and उसके घर में ये चिंता हो, ये बच्चा आ रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसको कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पालूंगी, हमारे पास तो घर में एक ही कमरा है, दो कमरे भी नहीं है,
1: पता नहीं लड़की है कि लड़का,
2: लड़की है या लड़का है,
1: शादी कैसे करेंगे, लड़का हुआ तो ये होगा,
2: अच्छा लड़की है तो मेरा परिवार ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी तो ऑलरेडी दो बेटियां हैं। अब ये आत्मा गर्भ में ये सब कैच भी कर रही है, मतलब सुन भी रही है, लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में सोच भी रही है, फील कर रही है,
1: टाइप की फीलिंग
2: हाँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ना,
1: कि मैं बोझ बन के तो नहीं आ रहा हूँ।
2: सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर आत्मा वो मन है जो हर क्षण सोच रहा है, और जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, जो हम सोच रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है, और जो रेडिएट हो रहा है वही हमारा भाग्य है, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी। जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है तब से वो अपना भाग्य क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि वो सोच रहा है, तो उसको हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए सोचने के लिए, ताकि उसकी सोच अच्छी हो। हम इस बात पर तो ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा किस दिन पैदा होना चाहिए, किस पल पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए, किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए, कैसा पूजा होनी चाहिए जब बच्चा पैदा हुआ, नामकरण है तो कैसे पूजा होनी चाहिए, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, ताकि उस बच्चे के लिए सब कुछ शुभ होना चाहिए, उसका भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन उसका भाग्य सिर्फ ये बाहर की चीजों से, तो उसका भाग्य तो उस क्षण बनना शुरू हो गया जब वो आत्मा आपकी सोच कैच करके अपनी सोच क्रिएट करने शुरू कर दे। अगर हमने उस आत्मा को किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे, अच्छा चलो उस बच्चे के प्रति नहीं भी क्रिएट कर रहे थे, हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर उसमें टेंशन है, एंग्जाइटी है, सपोज उस बच्चे के पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं, अगर कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो रहा है, तो वो आत्मा पहले से ही नहीं कैच कर रही कि ये जो दो लोग जिनके पास मैं जा रही हूँ ये तो ऑलरेडी कितना झगड़ा करते हैं।
1: अगर इतना कोई मजबूरी से पैदा हुआ हो बच्चा और बड़ा हो कि उसकी जो हरकतें कुछ आपको अच्छी नहीं लगे, तो उसके ऊपर हम उसको दोष कैसे दें फिर?
2: Yes,
1: दूसरे पॉइंट से सोच रहा था अभी।
2: Yes, अगर हमने कह दिया स्ट्रेस नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, तो उस घर में जहां वो आत्मा ऑलरेडी आ चुकी है और वो थॉट्स को कैच कर रही है, और जिस क्वालिटी की थॉट्स को कैच कर रहे हैं उस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो उसका भाग्य अभी लिख रहे हैं। सो द पेरेंट्स, द इन लॉज, मतलब जितने भी लोग आसपास उस बच्चे के, उस आत्मा के हैं, दे नीड टू रिमेम्बर कि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, कि ये जो हमारे घर बच्चा आया है इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर चाहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, अगर चाहते हैं कि उसकी सोच अच्छी हो तो उसको उस समय से ही अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सोच देनी होगी, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो और थोड़ा बड़ा हो उसको सही सोचना सिखाना होगा। अगर सही सोचना नहीं सिखाया तो फिर सही समय, सही दिन, सही अक्षर का नाम, ये सब चीजें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दिस वाई दीज टू लाइन्स आर सो पावरफुल। द यूनिवर्स इज नीदर ब्लेसिंग यू नॉर कर्सिंग यू। हम कह देंगे ऐसे समय पे पैदा हो गया, मतलब वी आर ब्लेमिंग द यूनिवर्स,
1: नॉट इवन पनिशिंग यू। यस,
2: इट इज नॉट ब्लेसिंग यू। सी, इट्स नॉट इवन सेइंग इट्स नॉट पनिशिंग यू, इट्स सेइंग इट्स नॉट ब्लेसिंग यू आल्सो। हम अच्छा अगर कहे ना कि नहीं, पनिश नहीं करती प्रकृति या परमात्मा, पनिश नहीं करता, लेकिन ये कहता है ना पनिश करता है ना ब्लेस करता है। यू आर ओनली गेटिंग दैट
1: व्हाट
2: यू आर रेडिएटिंग आउट। तो सारी पावर किसके पास है?
1: मतलब जैसे जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है,
2: और उसकी खुशबू सबसे पहले किसको मिलती है?
1: मुझे।
2: दिस इज इट।
1: तो मतलब ये वो जो वही रेड उसी प्रकार ये है।
2: Yes, हर सोच, मेरी हर सोच, सारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले मुझे मिलती है, फिर मुझसे रेडिएट होती है, रेडिएट होके वो वापस मेरे पास आती है। कर्म और भाग्य, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तो मालूम है कि वो रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होके वो वापस आ रहा है। जब रेडिएट हो रहा है कर्म, वापिस आ रहा है भाग्य। सिर्फ ये हुआ कि जब हमने अपने कर्म को चेक किया तो हमने सोचा जो हम करते हैं वो कर्म है, जो हम बोलते हैं वो कर्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी गहरा सिखाती है जो हम सोचते हैं वो पहला कर्म है।
1: मेरे ये समझ में नहीं आया कि अभी सोच को कैसे सोचें या फिर चेंज कैसे करें या बदलें कैसे, क्योंकि मुझे अभी भी सोचने के बाद खाते समय कभी कोई बिल्कुल फालतू सी थॉट आ जाती है तो मेरा खाने का फिर क्या हुआ, आप खाना रोक दे, नहीं मैंने सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ये सोच इतनी देर देर बाद पता चलेगा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं करूँ क्या?
2: इसमें भी
1: इसकी भी फिर टेंशन हो जाएगी मुझे।
2: हमारी थॉट्स की क्वालिटी, अब हमें थॉट्स को चेंज करना है ना, एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो अगर मुझे अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थॉट्स किसकी वजह से क्रिएट होती है। क्रिएटर तो मैं हूं, लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है?
1: ये बहुत,
2: जैसे फिजिकल एनर्जी है, हमें आज पता चल रहा है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं या वीक हूं, एनर्जी है या नहीं, परिस्थिति मतलब मौसम को फेस करने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं, लेकिन ये एनर्जी क्रिएट किस बेसिस पे हुई? मेरा रॉ मटेरियल जो इस बॉडी को दिया जा रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो अगर मुझे इस एनर्जी को चेंज करना है, मैं बार बार सिर्फ बोल नहीं सकती ना, शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है, क्या करूं, शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। तो देन आई विल आस्क समबडी, अच्छा स्ट्रांग बनाओ तो क्या करो? तो बोलेगा ये डाइट, ये एक्सरसाइज, ये विटामिन, सनलाइट, वाटर, 5-6 इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। आप ये करो, शरीर ठीक, एनर्जी ठीक, चीजों को फेस कर लेंगे। मौसम बदलेगा, गलत खाना आप खाएंगे, कुछ होगा, यू विल मैनेज, यू विल क्रॉस एवरीथिंग। अब मन कमजोर है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, छोटी छोटी बात में बीमार हो जाता है. स्ट्रांग करना है. कैसे स्ट्रांग करो? रॉ मटेरियल को चेक करो, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है इसके अंदर. तो थॉट्स जो हमारे हैं उसकी जो क्रिएशन है उसके लिए तीन रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल मीन्स थ्री फैक्टर्स जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होती है. सबसे पहला इंफॉर्मेशन, जो हम सारा दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ जो ऐसे जा रहा है. एनीथिंग, चलते चलते क्या पढ़ा, सुबह अखबार में क्या पढ़ा, टीवी पर क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसी मूवी देखी, कैसे गाने सुने, किन लोगों से आज बात की, कैसी बातें सुनी, एवरीथिंग जो आई टेक इन, इनटेक, यू नो, इनटेक ऑफ द बॉडी, इनटेक ऑफ द सोल. तो ये जो इनटेक जाएगी ये स्टोर हो जाएगी जाकर, जिसको हम कहेंगे मेमोरी. मेमोरी में स्टोर जो क्वालिटी की इनटेक हो गई,
1: तो ये एक बैंक की तरह है.
2: आपके पास कितनी मेमोरीज है? आपके पास, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा 10 साल पहले मुझे किसी ने शादी पे नहीं बुलाया, तो वो मुझे याद है ना, तो वो कहाँ स्टोर हुआ हुआ है? मेमोरी में. तो वो सारा स्टोर होता जाएगा. अब जो स्टोर होता जाएगा, स्टिमुलस आएगा, मतलब परिस्थिति आएगी. जब परिस्थिति आएगी वो उस मेमोरी बैंक को ट्रिगर करेगी. जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी उस क्वालिटी की ही थॉट क्रिएट होगी. ये डेफिनेट है. इसके साथ तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है. आप जो स्टोर करेंगे परिस्थिति आएगी. जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी परिस्थिति उसको ट्रिगर करेगी और उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट होती जाएगी. अगर हम सारा दिन में, आज क्यों इतना बोला जाता है कि बच्चे वायलेंट ज्यादा हो रहे हैं ना, अग्रेसिव ज्यादा हो रहे हैं, तो इमिजिएटली ये कहते हैं आज वो वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं. पहले हम बहुत सिंपल क्यूट सी कार्टून्स देखते थे, आज कार्टून भी वायलेंट हो गई है. आज जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी वायलेंस है. आज टीवी वो देखते हैं जो हम नहीं देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे, उसमें भी वायलेंस है. तो ये जो सब वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है. क्यों? इंफॉर्मेशन, थॉट्स, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, हैबिट, एक्शन, पर्सनालिटी. सो इंफॉर्मेशन पर्सनालिटी बन गई. वायलेंट इंफॉर्मेशन ली, वायलेंट पर्सनालिटी बन गई.
1: एक सवाल था, खाना शरीर के लिए, मैंने आज अच्छा अच्छा खाना शुरू कर दिया बीमार होने के बाद. डॉक्टर ने बोला अभी आप फल खाओ, फ्रूट खाओ, अच्छे थोड़ी सब्जियां हरी हरी खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो. लेकिन पहले, उससे पहले मैं जंक फूड या नशे वाली चीजें सब, तो तब बॉडी, तब की अब की फर्क. इसी तरह जो खाना हमने माइंड को पहले दिया हुआ था, आपने जैसे कहा 10 साल पहले वाली बात, उसको फिर मैं अब नया वाला कैसे करूं? आज जो खाना थॉट को दूंगा वो इम्पोर्टेंट है, या पुराने वाले को मैं कैसे डिलीट करूं?
2: जैसे शरीर भी पुराने वाले खाने से बना हुआ ना, अगर जो हमने 30 इयर्स खाया वो शरीर के अंग अंग में है ना, जो ब्लड में, मसल्स में, बोन्स में. मैंने दूध ही नहीं पिया बचपन से, तो हड्डी तो कमजोर है, अब वो बना हुआ है. लेकिन अब जैसे ही नया डाइट देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर उससे चेंज हो जाएगा. सेम विद द माइंड. अगर वो स्टोरेज बैंक है जैसे, और वहां बहुत कुछ स्टोर्ड है, अब हम वो स्टोर्ड को निकाल नहीं सकते, वी कैन रिमूव इट. तो स्टोर्ड है तो हमें क्या करना है? सिर्फ डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है. जितना ये डलता जाएगा, क्योंकि स्पेस तो उतनी है ना फिर आपकी. इट्स लाइक अ बोल. आपने एक कटोरा लिया जिसमें गंदा पानी है, अब अलाउड नहीं है, कटोरे को टेढ़ा करके खाली नहीं कर सकते. तो एक ही ऑप्शन है ना, दूध डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ. एक बूंद दूध भी अगर जाएगा तो एक बूंद गंदा पानी स्पिल ऑफ हो जाएगा. एक बूंद भी अगर जाएगा, एक बूंद स्पिल ऑफ हो जाएगा. भरते जाओगे, भरते जाओगे, दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी, पुराने गंदा पानी कम होता जाएगा. एक दिन आएगा बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ होगा. आज जो बच्चे वायलेंट मूवीज या वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आज बंद करा दो एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. कोई बहुत ऐसे, जैसे पहले मॉरल स्टोरीज, जकार्ता टेल्स, ये वो ऐसी कहानियां हमें सुनाएंगे ना, आज वायलेंट है. तो जो कहानियां सुनकर पढ़कर, जिस तरह की कॉमिक्स पढ़कर हम बड़े हुए, वो यहाँ है।
1: हम लोग बचपन में कैसी कैसी कहानी सुनते थे, वाल्मीकि जी की, और श्रवण कुमार अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखता था, ऑल दीज थिंग्स। अभी तो कुछ और ही हो गया।
2: तो अभी क्या देख रहे हैं वो? आज उनके पास 24/7 टेलीविजन है, हमारे पास नहीं था। आज उनके पास 24/7 इंटरनेट है, हमारे पास नहीं था। फॉर्चुनेट, एक्चुअली फॉर्चुनेट कि इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। एंड इन्फॉर्मेशन होना प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आज अगर बच्चा पेरेंट के साथ बैठकर न्यूज देख रहा है, तो वो क्या न्यूज देख रहा है? यहाँ वायलेंस, यहाँ डेथ, यहाँ अटैक, यहाँ गलत गलत गलत। हर आधे घंटे की न्यूज में उसने एक एक विजुअल क्या देख लिया, तो थॉट क्या क्रिएट हुई? दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है। और फिर विजुअल देखा, फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली ने बैठकर उसको डिस्कस भी किया।

0: नाश्ते की टेबल से ही शुरू हो जाता है आज के पेपर में क्या हुआ।
1: इन्फॉर्मेशन कौन सी जा रही है? कल यहीं पे जहां हम शूट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आए थे बिजनेस स्कूल से, 5 लड़के थे। तो मैंने कहा आप बिजनेस स्कूल से पास होकर क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले हैं। आई सेड गिव मी वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज आप याद रखेंगे, एक चीज कौन सी पक्की करते हैं? तो एक ने कहा बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, डजंट मैटर हाउ यू आर विद अदर पीपल। तो आई सेड इसका क्या मतलब है? तो कहा अपने काम के साथ, काम के प्रति पूरी मतलब वफादारी, ऑनेस्टी, उसके लिए शायद चाहे आपको आसपास के लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े। तो बोला ये किसने सिखाया कि आसपास के साथ आप कुछ भी करो, मतलब अपने काम में आपको ऑनेस्टी चाहिए? कहते दुनिया में यही है आज। बोला ये किसने सिखाया, मम्मी पापा ने बोला आपको? कहते नहीं, हम सारा दिन नहीं देख रहे क्या दुनिया में क्या है, यही चलता है। ये कहाँ सीखा?
0: बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, इसका मतलब है बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड।
1: ही सेड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव टू डू विद एनीबॉडी।
0: हाँ, तो यही तो मीनिंग हो गया कि बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड, अपनी बिजनेस के साथ आप ऑनेस्ट रहो।
1: मतलब आपको अपने प्रॉफिट पर, अपने काम पर फुल अटेंशन, डजंट मैटर आपको। एंड सेंटेंस कितना अच्छा बनाया था उसको। ऐसे आके मम्मी पापा ने तो नहीं सिखाया ये? कहते नहीं, वो तो सिखाते हैं कि सबको सुख दो। मैं कहा तो मम्मी पापा तो अच्छी बात सिखा रहे हैं सबको सुख दो, लेकिन सारा दिन इन्फॉर्मेशन, विजुअल, ऑडियो, इंटरनेट, टीवी, दोस्त, तो वो एक मम्मी पापा भी कितना सिखाए फिर। सो इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है। आज सुबह उठेंगे, म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, टीवी न्यूज, मेजोरिटी हाउसेज बिगिनिंग द डे, मॉर्निंग डे, 6 o'clock मॉर्निंग टीवी न्यूज, मतलब एंड ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सारी सुबह 6 बजे आने वाली है।
0: वर्ड बड़ा अच्छा है, ब्रेकिंग। किस किस चीज को ब्रेक कर देता है?
1: ब्रेक्स लॉट ऑफ अस, इट कम्प्लीटली, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग लाइक दिस। सुबह का समय मन एकदम फ्रेश होता है। मनोवैज्ञानिक साइकाइट्रिस्ट बताते हैं कि मन की जो अब्सॉर्प्शन पावर है वो सुबह के 2-2.5 घंटे है, वेरी हाई। आप देखो, हमें तो बचपन में सिखाते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, आज तो वो भी ऑपोजिट हो गया है, रात को पढ़ते हैं।
0: कॉफी पी के मास कॉफी रख देती है स्ट्रॉन्ग, ताकि नींद ना आए बच्चे को। हाँ, पूरी रात पढ़ो बच्चे।
1: यस, पर हमें तो सिखाया जाता था एंड जिसका हमें बेनिफिट हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना है, मन फ्रेश, जिस चीज जो किताब लेकर बैठोगे वो ऐसे अंदर समझ आती जाएगी, फिट होती जाएगी, बिकॉज क्लीन ब्लॉटिंग पेपर है।
0: कई रिलीजन्स में ऐसा ही है ना, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना,
1: सभी जगह है ना। क्योंकि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि जो सुबह का समय है, 4 बजे का, 3 से 5, 6 बजे का, ये जो समय है
0: वातावरण,
1: यस, अमृत वेला,
0: गुरादा वेला,
1: यस, ब्रह्म मुहूर्त, शब्द कितने सुंदर है, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट एनर्जी टाइम ऑफ द डे, हाईएस्ट एनर्जी टाइम। एंड उस समय जो वातावरण में हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ की क्रिएटिविटी हाईएस्ट है उस समय। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू नो समटाइम्स पता ही नहीं चल रही है, गेट अप एट फोर ओ क्लॉक, जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस एंड सी। टू रीजंस, मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग एट दैट टाइम। सो जब मेजोरिटी लोग सो रहे होते हैं, मतलब मेजोरिटी जो एनर्जी है, मन की एनर्जी, जो आज काफी तनाव और गुस्से वो वाली क्वालिटी की है, वो सब थोड़ी साइलेंट है। ये वो टाइम है। आज लोग 1, 2, 3 बजे तक भी जाग रहे हैं, 4 बजे तक आते आते मेजोरिटी लोग सोने जाते हैं। 4 बजे जो लेट सोते हैं वो भी अभी सोए हैं, तो थोड़ा जल्दी सो के 5-6 बजे उठते हैं वो भी सोए हैं। 4 o'clock इज द टाइम व्हेन मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग, बोथ द साइड्स आर स्लीपिंग। उस टाइम आप उठ जाइए, फ्रेश होकर आप साइलेंस में बैठ जाइए, कुछ नहीं, इवन इफ यू आर नॉट प्रेइंग, नॉट मेडिटेटिंग, नथिंग, just sit and start thinking about the solution, you will get it. Kyunki wo highest energy time hai, highest energy even of you, jo intuition hum kehte, intuition ko activate karna hai. Intuition tab activate hogi jab upar ki layer of thoughts silent hongi na, meri sara din ki baate, problems ki baate, gussa, ye silent hoga. To jo intuition hai ki andar wala jo mera tutor baitha hai, वो अंदर वाला टीचर जिससे मुझे सोल्यूशन चाहिए, वो उस टाइम इजी हो जाता है, क्योंकि मेरा भी कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, आसपास भी वातावरण में कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, प्रकृति हाईएस्ट एनर्जी पर है। ये समय पर हम जब उठे हमारा माइंड हाई एनर्जी पर है। अब ये समय पर हम जो पढ़ें भी, अगर स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट टाइम टू स्टडी 4 to 7 बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू कॉलेज। इफ यू स्टडी, मेहनत कम, रिजल्ट कई गुना ज्यादा मिलने वाला है, बिकॉज इट विल जस्ट गो इन लाइक दिस।
0: कल सुबह 4 बजे मैं उठकर क्या ये कर सकता हूँ कि मैं अपने आप के साथ बैठकर ये सोच सकता हूँ कि मैं सोच कैसे कम करूँ, अच्छी सोच कैसे लाऊं, और अवेयरनेस कैसे रहे कि मैं क्या सोच रहा हूँ?
1: आप 4 बजे ये करें, सी अगेन, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्टाइल टाइम, फर्टाइल लैंड जब होती है, समय अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, ऐसे समय पे बीज डाल देना चाहिए। जब अभी कैसे है, ये टाइम पे कॉन्शियस माइंड अवेक है, तो जो बीज हम डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है। सी, एक है कॉन्शियस माइंड, मतलब रोज की थॉट्स, ऊपर की लेयर, एक है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब डीप लेयर ऑफ थॉट्स। अब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये ऊपर जैसे धरती पे बस ऊपर आती है और बीज खत्म हो जाता है, नीचे नहीं जाती है, उसको नीचे जाना है। क्योंकि वो, हाँ, नीचे जाने के लिए जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है। तो आप सुबह 4 बजे उठकर ये नहीं सोचे कि ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आपको जो करना है सारा दिन, सपोज यू वांट टू से टुडे होल डे आई विल बी वेरी पीसफुल, इंस्टेड ऑफ डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक व्हाई गेट एंग्री, आई शुड नॉट गेट एंग्री, वो बीज चला जाएगा अंदर, जो सोचेंगे वो बीज अंदर चला, हाँ मेरे से होता ही नहीं, मैं कितना ट्राई करता हूँ, ये कितना, ऐसा नहीं। क्रिएट वन पावरफुल बीज, एक श्रेष्ठ बीज लेना है, आई एम अ पीसफुल सोल,
0: आई विल ट्राई दिस टुमारो मॉर्निंग एंड कम बैक टू यू अगेन, आई एम अ पीसफुल सोल। थैंक यू सिस्टर,
1: थैंक यू,
0: ओम शांति।
2: द सोल इज ऑलवेज क्रिएटिंग थॉट्स, वेदर अ सोल लीव्स द बॉडी और a soul is in the womb of the mother, or if a person is in coma, the soul still creates thoughts and also receives our thoughts but cannot express. When a soul leaves the body, the family left behind should create thoughts of love, not pain. Thoughts such as, we cannot live without you, how could you leave us? These thoughts will only cause pain to that soul. When a soul is in the womb, create thoughts of love and happiness. Thoughts such as, will it be a boy or a girl? Do we have the resources to look after the baby? These thoughts of anxiety are not welcoming energy. The information we take in is the most powerful influence on the thoughts we create. Early morning newspaper has a deep impact. Begin the day with 15 minutes of powerful, positive information.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये कचतुर नार हम छोड़े नहीं।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला
1: एक चतुर ना।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। बात फूलों की सुना करते थे हम, कभी शेर कहा करते थे, मशाले लेकर तुम्हारे गम की हम अंधेरे में चला करते थे, अब कहा ऐसी तबीयत वाले छोट खाकर जो जिया करते थे, तर्क ए एहसास से मोहब्बत मुश्किल हाँ मगर अहले वफा करते थे, बिखरी बिखरी हुई जुल्फों वाले काफिले रोक लिया करते थे। नमस्कार, रेडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं ख्वाबों का सफर। आज इस ख्वाबों का सफर प्रोग्राम में हम कुछ गीत जो शुरू होते हैं अक्षर आ से सुनेंगे। ख्वाबों का सफर में आपका स्वागत है। सफर चाहे ख्वाबों का हो, जिंदगी का हो, लेकिन सफर तो सफर है जो कभी रुकता नहीं, बस चलता रहता है। आज के इस संगीत में सफर को एक यादगार सफर बनाएंगे हम, क्योंकि बड़ी दिल से, बहुत मोहब्बत से

जी हाँ, नमस्कार। गीतकार साहिल लुधियानवी, गायक मोहम्मद रफी साहब का, संगीतकार रवि जी का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, नील कमल इस चित्रपट से, जो 1968 का था। नील कमल 1968 में रिलीज हुई, जिसमें वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार व ललिता पवार मुख्य भूमिका में थे। एक महान मूर्तिकार चित्रसेन के काम से खुश होकर राज्य का महाराजा उससे मनोवंचित वर मांगने के लिए कहता है। वर में चित्रसेन राजकुमारी नील कमल को मांग लेता है। उसके दुस्साहस से क्रोधित होकर राजा उसे जिंदा दीवार में चिनवा देता है। अगले जन्म में जब नील कमल सीता के रूप में जन्म लेती है, तो चित्रसेन की आत्मा उसे रातों में पुकारती है और वो अपना होश खोकर आवाज की ओर चल देती है, जिसके कारण फिल्म में एक सस्पेंस बना रहता है। और अंत में यही बताया गया है कि सच्चे प्रेमी इंतजार करता है, वो किसी का बलिदान नहीं लेता, लेकिन वो खुद एक प्रेमी के लिए बलिदान दे सकता है। तो ये है सच्चा प्रेम, एक सकारात्मक ऊर्जा जो व्यक्ति को सत्य पर टिके रहने की शक्ति देता है, और आखिर जीत भी सत्य की होती है। राम महेश्वरी के डायरेक्शन और गुलशन नंदा का लिखा ये फिल्म, जिस संगीत से सवारा रवि ने ये पूरा फिल्म, वहीदा रहमान पर फोकस किया गया है और एक डांसर के रूप में उन्हें दिखाया गया है, और पूरे फिल्म में वहीदा रहमान और रवि का संगीत का जादू बना रहता है, जिससे दर्शक बंधे रहता है। और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी वहीदा रहमान को ही मिला। साथियों, पूरे फिल्म को देखने के बाद एक मैसेज मिलता है, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो अहिंसक होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो आप भी सकारात्मक रहिए और हीरो बन जाइए। 1968 का एक और फिल्म जिसका नाम है ब्रह्मचारी, उसकी बात करते हैं इस गीत के बाद। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत जिसने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी ने गाया था। जी हाँ, और संगीत से सवार था शंकर जयकिशन। फिल्म थी ब्रह्मचारी 1968 का, जिसका निर्देशन बप्पी सोनी ने किया था और जिसके निर्माता सिप्पी है। इस फिल्म में पी शम्मी कपूर, राजश्री पान, लता मुमताज हैं और इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया था, क्योंकि ये एक सामाजिक संदेश पर फिल्म बनाई गई थी अनाथ बच्चों पर, और उसमें मुख्य रोल शम्मी कपूर का था जो हीरो है, जिसका नाम ब्रह्मचारी है और वो खुद एक अनाथ है और वो अनाथ बच्चों को संभालता है। एक सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति खुद के साथ दूसरों का भी देखभाल करता है, उनका ख्याल करता है। इसलिए सकारात्मक रहिए और सकारात्मक ऊर्जा अपने चारों ओर फैलाते रहिए, ताकि आपके अपने बहुत सारे दोस्त बनेंगे और जितने ज्यादा दोस्त आपके होंगे उतना आप ज्यादा खुश रहेंगे। तो आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजा मेहंदी अली खान का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, मदन मोहन का संगीत से सवारा हुआ ये गीत चित्रपट नीला आकाश जो 1965 में रिलीज हुई थी। और ये गीत अभी आपने सुना, मोहब्बत सच्ची है तो वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, सुख मिलता है, परिवार में भी सुख रहता है। वही दूसरी तरफ अगर सकारात्मक ऊर्जा के बजाय नकारात्मक ऊर्जा है तो वो अगर परिवार में दुख और क्लेश उत्पन्न करेगा। नीला आकाश फिल्म में एक परिवार के जो मुखिया है उनके शराब पीने की आदत की वजह से पूरा परिवार दुख फील करता है, ये वहां पर दिखाया गया है। यानी हमारे आदत अगर बुरे हैं या किसी भी तरह का वशीभूत आदत है यानी नशे की आदत है उसके वशीभूत हम हैं तो उसकी वजह से हम खुद तो दुखी रहते ही हैं, उसका प्रभाव, उस एनर्जी का प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। लेकिन वही समय के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ जब मिलने शुरू हो जाता है, जैसे एक हीरो की एंट्री होती है, तो धीरे धीरे परिवार में फिर से खुशियां तो आती है। सकारात्मक ऊर्जा जो है कमाल का काम करता है। सकारात्मक रहिए। ख्वाबों का सफर, मैं हुआ का हम सफर सनी, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार साथियों, खाबों का सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गीत आंचल में सजा लेना कलिया, ये बहुत ही प्यारा सा गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म थी वही दिल लाया हूँ, 1963 में ये रिलीज हुई थी फिल्म। इसमें का ये गाना आपने सुना जिसके लिरिक्स बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से अगर सुना होगा तो आपको पता ही चला होगा ये लिरिक्स, रास्ते जो मिले अनजान, आ जाए अगर तूफान कोई, अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना। जी हाँ दोस्तों, कभी भी मुश्किल घड़ी आती है तो आप बहुत ज्यादा दुख फील करते हैं या आंखों में आंसू भर लेते हैं, तो ऐसे करने के बजाय अगर आप उस दिशा में सोचिए और सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचिए कि क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू की जगह चमक आ जाए। ऐसे ही कभी जब शाम डले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना। एक सकारात्मक ऊर्जा वाला इंसान ही ऐसा किसी अनजान व्यक्ति के लिए सोचता है, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और फिल्म जीने की राह, जो जितेंद्र पर फिल्माया गया था, जिसका बाद में अलग अलग भाषाओं में रीमेक भी हुआ, तेलुगु और तमिल में,

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: जी हाँ, आइए ख्वाबों का सफर में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और जीने की राह 1969 में रिलीज हुई थी उस फिल्म का आपने ये गाना सुना। आने से उसके आए बहार, आनंद बख्शी ने क्या खूब, यानी चार दशक के बाद, यानी पूरे 40 सालों के बाद भी ये गाना उतना ही सुकून दे रहा है। इस फिल्म में जितेंद्र को सकारात्मक दिखाया है, परिवार के कारण गांव से शहर की ओर जाकर नौकरी करता है, लेकिन समय के साथ गांव में भी बदलाव आता है, परिवार में भी बदलाव आता है और स्टोरी में एक क्लाइमैक्स दिखाया गया है। परिवार में जिस व्यक्ति को देखभाल की भाव बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनकी तरफ परिवार वालों का कोई ध्यान नहीं रहता और उनका कोई ख्याल नहीं करता। फिर जब ये बात हीरो यानी जितेंद्र को पता चलता है तो वो आकर सब कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होता है। तो आइए, ऐसे कई बातें हम लोग सुनते हैं और सकारात्मक ऊर्जा ही हमें जो है नकारात्मक ऊर्जा से दूर ले जा सकता है या नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, तो उस समय थोड़ा देर के लिए ब्लैंक होना जरूरी है, यानी प्लेन होना जरूरी है, जहां पर आपको उन सारी चीजों को सकारात्मक नकारात्मक को छोड़कर डीप साइलेंस की ओर बढ़ना चाहिए। जब डीप साइलेंस में जाते हैं तो अपने आप आपको एक नया रास्ता मिलता, नए रास्ते का आपको पता चलता है और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे संभल संभल कर आगे बढ़ेंगे तो फिर से आप सकारात्मक बनेंगे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी आपके साथ चलेगी। तो आइए, कभी कभी किसी के आंखों में काजल की जगह कयामत भी दिखाई देता है, तो आइए सुनते हैं ऐसा ही कुछ भाव भरा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए, ख्वाबों का सफर में।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आपका हम सफर सनी खाबों के सफर में। आंखों में कयामत के खाजल इस गीत को बहुत ही खूबसूरत ढंग से एच एस एच बिहारी ने लिखा था और महेंद्र कपूर साहब ने इसे गाया। ओपी नैयर का संगीत था। किस्मत इस फिल्म का ये गाना था। शमेद बेगम और ओपी नैयर ने साथ में काम किया। इसके बाद शायद वो दोनों फिर एक साथ कभी नहीं काम किया। पता नहीं होनी को कौन टाल सकता है, या इन चीजों को शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें संसार में ऐसी होती है जहां पर हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें सहन करना पड़ता है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। शमशेद बेगम और ओपी नैयर बहुत ही अच्छी तरह से इसके लिए काम किया, लेकिन उसके बाद फिर उनकी जोड़ी बनी नहीं और इस फिल्म में एक फ्लॉपी को जिसमें सीक्रेट है बम ब्लास्ट किए वो पुलिस तक पहुंचाना होता है, लेकिन वो व्यक्ति जब तक पुलिस तक उस चीज को, उस सीडी को, उस फ्लॉपी को देने जाता है, तब तक वो दूसरे लोगों के शिकार हो जाता है और इस तरह से बहुत सारे लोगों के बीच से होकर गुजरती है वो चीजें और वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाती और इस बीच में एक कश्मकश और इसी के बीच में स्टोरी चलती है। हीरो विश्वजीत मुख्य रोल में है जिसके पास एक गिटार होता है और गिटार में वो चीजें पड़ी रहती है फ्लॉपी। तो इससे पता नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन लास्ट तक कुछ सस्पेंस बना ही रहता है। साथियों, मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास भी कुछ खास सकारात्मक शक्तियां हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन उसका हमें पता नहीं होने के कारण हम कमजोर फील करते हैं और कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा दुख फील करते हैं क्योंकि हमें सीक्रेट पता नहीं होता कि हमारी शक्तियाँ किस जगह पर है और कैसे उन्हें हम ले सकते हैं। तो पूरे फिल्म में सस्पेंस बना रहता है, लेकिन लास्ट में वो चीजें खत्म हो जाती हैं और वो सारी चीजें पुलिस के हाथ में लग जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाना आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ख्वाबों का सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देवानंद पर फिल्माया गया ये गाना आपने अभी सुना, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा होता है, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये बात, अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि व्यक्ति में आंतरिक शक्तियां होती हैं जो उसकी आंखों से दिखाई देता है। ये गीत मज्जू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया, ओपी नैयर का संगीत, सीआईडी फिल्म जो 1956 में रिलीज हुई थी। और ऐसा भी होता है कभी कभी आंखों से देखने के बाद कुछ दिल में उतर जाता है, जैसे कि ईश्वर ने इंसान को आंखें देकर एक दुनिया दे दी है। अब आंखों से दुनिया तो देख ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी आंखों से कुछ और भी होता है, जैसे कि ख्वाबों का सफर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे साथ, मैं हूं आपका हम सफर सनी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत गाना अभी आप सुन रहे थे, जिसे संगीत से सवारा था ओपी नैयर साहब ने। फिर वही दिल लाया हूँ इस एल्बम से आप सुन रहे थे, जो 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के सारे ही गाने बहुत हिट है, लेकिन जो अक्षर अ से शुरू होता है वो हमने आपको सुनाया है, क्योंकि इस एपिसोड का थीम ये हमने रखा है, सभी अ अक्षर से शुरू होने वाले पॉपुलर गाने आपको सुना रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सुना है, जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है वो सकारात्मक रूप से सभी चीजों को देखने का प्रयास करता है, और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होने से हमारी आंखों से वो एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचता है। इसीलिए आंखों का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे शरीर में। जाने माने शायर लिखा है फिल्म उमराव जान में एक गीत, जिसके बोल आज भी दिल में छाए हैं। जैसे आपने कभी एक बार भी अगर उस गाने को सुना हो तो वो चीजें आपके दिलो दिमाग में घर कर जाती है, जैसे कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों है। कैद खाने हैं बिना सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तुम्हारी आंखों के, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, झील अच्छा कवल अच्छा के जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। इसके साथ ही साथियों, बहुत सारी बातें हैं आंखों के बारे में, फिर कभी आंखों के बारे में जिक्र होगा तो और भी बातें करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और अभी मैं यानी आपका हम सफर सनी चाहता हूँ इजाजत आपसे, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, नमस्कार, सलाम, खमा गणी, खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: किसी से।
1: कहता है कि पूरे पश्चिम के मिलन से इतिहास के पन्ने सुनहरे हो जाएंगे।
0: इज दैट सो? देन लेट हिम कंटिन्यू।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका।

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा अरे जा जा।

लड़की पहाड़ी है काटे की लाला।

0: डरना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक चन्नी कालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।
0: अरे
1: तू जा जा घर।

0: बौदी बौदी बोलो बौदी बौदी बौदी
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

0: हाय भैया।
1: हाय,
0: कैसे हो?
1: बस ठीक हूँ।
0: पता है भैया, स्कूल में मुझे एक एस्से लिखने के लिए बोला।
1: किस पे?
0: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
1: अच्छा,
0: आपका इंस्पिरेशन कौन है भैया?
1: मेरे पापा।
0: पापा? तो आपके पापा के बारे में कुछ बोलो ना।
1: हाँ, मेरे पापा बहुत ईमानदार है और मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ।
0: तो आपको एस्से लिखने को बोला, तो आप लिख सकते हैं?
1: हाँ, एक दो पेज तो लिख ही सकता हूँ।
0: ग्रेट, तो चलो हमारे दीदी की एडवाइस पे लेते हैं।
1: हाँ, ये ठीक है।
2: हेलो बच्चों।
0: हेलो दीदी,
2: क्या कर रहे हो तुम लोग?
0: दीदी, आपको पता है मेरे स्कूल में एक एस्से लिखने के बोला।
2: एस्से? किस पे लिखना है बुबना?
0: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
2: मतलब आपकी इंस्पिरेशन के बारे में? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं और लोग भी होते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं और सिखाते हैं। तो बुबना, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है?
0: मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन है। पहली इंस्पिरेशन मेरे पापा नरेंद्र मोदी जी, सुभाष चंद्र बोस।
2: अरे वाह, आपकी तीन तीन इंस्पिरेशन है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके इंस्पिरेशन क्यों है, उनके बारे में हमें कुछ बताओ।
0: सुभाष चंद्र बोस सच में बहुत इंटेलिजेंट थे दीदी, बहुत अच्छी आदमी है, उनके बिना हमको फ्रीडम नहीं आती।
2: ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वो आपकी इंस्पिरेशन है। आप उनसे क्या सीखते हो भावना?
0: कि किस टाइम क्या बात करना है। वो इतनी इंटेलिजेंस से बात करती, इतनी इंटेलिजेंस यूज कर भारत के लिए, हमारी इंडिया को यूनाइट करने के लिए इतना किया दीदी, मैं बोल नहीं सकती हूँ। बहुत मैंने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा।
2: आपने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी? अच्छा, और उनमें सबसे ज्यादा स्पेशल आपको क्या लगा?
0: मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ब्रिटिशर्स ने बोलते हैं कि वो मर गए प्लेन क्रैश में, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विलेजेस ये सोचते हैं कि वो तीन प्रकार के सोच सोचते दीदी। एक प्रकार वो प्लेन क्रैश में मर गए, दूसरा वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनके ब्रेन को साइंटिस्ट रिसर्च के लिए ले गए, और तीसरा ब्रिटिशर ने उनको मेंटल टॉर्चर किया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ भी नहीं कहा, और वो सच में होते ना दीदी, कांग्रेस के सारे कुछ भी हो, उनका क्या क्या ट्रूथ, उनके बारे में उनकी सच्चाई बाहर निकल आती।
3: हाँ भुवना, ऐसे मैंने भी एक बार सुना है कि सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर्स ने नजरबंद कर लिया था, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भेष बदल के जहाँ पे थे वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से भाग गए, फिर बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स को नहीं मिले, फिर जब मिले तो उनको काले पानी की सजा दे दी, कई दूर समुद्र में जाके उनको टापू पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा समुद्र खुद तैर के पार करके वापस आ।
0: और दीदी, आपको पता है मैंने तो न्यूज़पेपर में देखा कि दो लोग सुभाष चंद्र बोस को मिल के आए, वो रशियन जेल में है, बोलते है कि अब तक जिंदा है, उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया।
2: सुभाष चंद्र बोस के बारे में वैसे तो कई बातें चर्चित हैं, ये भी कहा जाता है कि वो कई जगह जाके बनारस में एक सेंट बनकर रहे।
0: हाँ,
2: काफी समय तक।
0: हाँ दीदी।
2: लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना है वो सबके सामने है, भले उनके आगे की जिंदगी के बारे में कुछ लोग अलग बात करते हैं, लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना थी और जो उनका इंटेलिजेंस था जो आपने बोला, वो किसी से नहीं छुपा, और ये एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है भुवना।
0: हाँ दीदी, और बताए दीदी, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलेंगे उनके बर्थडे,
2: और इससे आप बहुत खुश है?
0: हाँ दीदी, मैं जब छोटी थी सोच रही थी मैं बड़ी होकर जर्नलिस्ट बनूंगी, सुभाष चंद्र बोस की फाइल करूंगी।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब सुभाष चंद्र बोस से आप इतने इंस्पायर्ड हैं।
0: हाँ दीदी,
2: ये बहुत अच्छी बात है, और उनकी तरह बनने की कोशिश भी करना।
0: हाँ दीदी।

0: और सैंडी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरे तो सबसे पहले मेरे पापा।
0: आपके पापा? और आपके पापा आपको कैसे इंस्पायर करते हैं?
1: मेरे पापा ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते।
0: उनकी ईमानदारी?
1: हाँ, और हमेशा सच बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, या बुरी कंडीशन हो या अच्छी कंडीशन हो, अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते। और मुझे मेरे पापा इस बात पे बहुत इंस्पायर करते हैं।
0: वैसे ये तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सबको अपनानी भी चाहिए, ईमानदारी। और अगर ये आप अपने पापा में देखते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो भी करनी चाहिए।
1: हाँ, पर मैं कोशिश करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सैंडी, इसकी जरूरत आपको आगे भी पड़ेगी। और अगर आप अपने पापा के नक्शे कदमों पे चलेंगे तो सच में आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे।

0: और आप बताओ पंकज, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: दीदी मेरे इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है?
1: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बातें हैं जो मुझे इंस्पायर करती है, जैसे कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जो वो अपनी लाइफ में जो चाहते थे उन्होंने सब हासिल कर लिया।
0: और जितना उन्होंने अचीव किया वो उतना ही डाउन टू अर्थ और सिंपल भी रहे।
1: हाँ दीदी,
0: है ना, अगर उनका जीवन हम अच्छे से देखें तो जिस तरह के वो व्यक्ति थे, वे आम इंसान से भी मिलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे।
2: हाँ दीदी, उनके घर देखो तो हमसे भी बहुत छोटा और कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, और जो भी पैसे आते थे गवर्नमेंट से वो सारे लोग के लिए यूज करते, लेकिन उनकी सुविधाएं के लिए कभी नहीं यूज नहीं करते थे।
3: हाँ दीदी, मैंने भी एक बार एपीजे अब्दुल कलाम का नोबल पढ़ा था। उसके अंदर बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो वो बाहर जाके जो स्ट्रीट लाइट होती है ना उसके नीचे जाके पढ़ते थे रात को।
0: पता है वो यहाँ पे माउंट आबू भी आ चुके हैं पहले?
3: हाँ दीदी,
1: शांतिवन में भी आए।
2: पता नहीं,
0: शांतिवन में भी आए? नहीं पता
1: मुझे।
0: वो शांतिवन भी आए हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल भी आए हैं। वो जितनी लोगों की मदद कर सकते थे उन्होंने हमेशा की है, और चाहे वो किसी ऑफिस के बाहर खड़ा गार्ड हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, कहते वो जाके सबसे पहले उसी से मिलते थे जो सबसे लो ग्रेड के जो इम्प्लॉयज होते हैं, वो जाते थे उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे और फिर जाके वो अपना काम करते थे, वो सबका हाल चाल लेते थे। इसीलिए अचीवमेंट के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी हम सब उन्हें हमेशा याद करते हैं, है ना। और उनकी तरह बनने के लिए हमें ये बात याद रखनी होगी कि चाहे हम कितना ऊपर भी क्यों ना पहुंच जाएं, एक इंसान की तरह हमें दूसरे इंसान को देखना चाहिए, है ना।
4: I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you, it's a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have four unique things, four unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is the hard work with the devotion. And fourth is perseverance.
0: Akash, आपकी inspiration कौन है?
3: मेरे इंस्पिरेशंस मेरी मूवीज हैं।
0: मूवीज आपको कैसे इंस्पायर करती हैं?
3: दीदी, जब मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में था तब मैं मूवीज देखता था, उसके अंदर देशभक्ति मूवीज ज्यादा देखता था। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो गुंडों की जिस तरह से धुलाई करते थे, मुझे लगता था मैं भी बड़ा होके इन्हीं की तरह बनूंगा, ऐसे ही पूरे देश में करप्शन को कम करूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक मूवी देखी थी। एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में अपने माँ बाप से खो गया था, तो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के देने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था और प्रिंसिपल ने बोला था जा पहले अपने माँ बाप को ढूंढ के ला, उसके बाद आना स्कूल में पढ़ने। तो उसको कोई पैसे भी नहीं देता था, बेचारा बहुत उदास उदास रहता था। तब उसने चाइल्ड लेबरिंग करनी स्टार्ट कर दी, और ऐसे करते करते 15 साल बाद वो बॉम्बे गया और बॉम्बे से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के आया। और जो प्रिंसिपल था वो बुढ़ा हो गया था और उसके बेटे बहू सब ने उसको छोड़ दिया था और उसकी स्कूल भी हड़प ली थी। तो उस प्रिंसिपल को जाके बोला, सर जैसे को तैसा आपने मुझे स्कूल से निकाला था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके बेटे बहू ने आपको निकाला है और आज आप मेरी स्थिति पे हो और मैं आज आपकी स्थिति पे हूँ। ऐसा ही मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ।
0: मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सबको हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए आपको इंस्पिरेशन मिली। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत सी चीजें आकाश और भी इंस्पायर करती हैं, हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं लाइफ में और जो चीजें करना चाहते हैं और जिसकी मदद करना चाहते हैं, है ना? तो हमें अपने आसपास और लोगों में भी ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें इंस्पायर कर सके।
2: हाँ दीदी,
0: भले वो किताबें हो, भले वो ऐसे लोग हो। वैसे भी भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ की बहुत ही बड़े और नेक लोगों ने जन्म लिया है।
2: हाँ दीदी।
0: तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस हमारे आसपास ही मिलेंगी।
2: दीदी मैं एक बात बताऊं, इंस्पायर हम कैसे हो सकते हैं? देखो दीदी, जब कोई हमसे कुछ अच्छा करे, वो स्कूल में हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, हमसे बेहतरीन है और अच्छे हैं, जब हम वो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जलसी बन जाएगी।
0: बात तो भुवना आपने बहुत सही कही। जब हम किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे तो वो इंस्पिरेशन बन जाएगा, नहीं करेंगे तो वो जेलसी बन जाएगी। और हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं और ऐसे लोग होते हैं जो हमें जीवन में मिलते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए हमें इंस्पायर करके जाते हैं।
2: हाँ दीदी।
0: तो भुवना, आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा किसी से मिले हो जिसने आपको इंस्पायर किया?
2: हाँ दीदी, मैं अनूप जलोटा से मिली।
0: अच्छा, तो उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया?
2: दीदी, रेडियो पे एक क्वेश्चन पूछा विशाल भैया ने कि जब आपकी स्टेज पे कोई और आके गाए और आपको बुरा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ईगो नहीं है, कुछ भी हो, अच्छा प्रोग्राम हो। वो बोल रहे थे मेरी वर्क कम हो गई, ऐसे अच्छे से बात करते हैं और उनकी ईगो भी नहीं है। उस फीलिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनूप जलोटा ऐसे है और वो मेरी अच्छी इंस्पिरेशन है।
0: वो हमारे देश के बहुत ही जाने माने गायक हैं।
2: हाँ,
0: और उनके कई भजन हम लोग डेली सुनते हैं। और
2: वो एक गजल सिंगर भी है।
0: हाँ बिल्कुल। और इतने अच्छे गायक होने के बावजूद उनमें ईगो नहीं है, इसने आपको इंस्पायर किया। मतलब आप भी जब बड़े होके क्रिमिनल लॉयर बन जाओगे तब ईगो को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे।
2: हाँ दीदी।
0: चाहे क्लास में फर्स्ट आओ, चाहे कुछ भी अजीब कर लो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भुवना। पंकज, आप बताओ, आप अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो या ऐसी सिचुएशन आई है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, वैसे कल की ही बात है। कल हम मैच खेल रहे थे और हमारे विपक्षी जो टीम थी वो हमसे काफी अच्छी बॉलिंग कर रही थी, और जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मैं उनसे इम्प्रेस हो गया कि इतनी अच्छी बॉलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो मुझे लगा कि काश मैं भी इनकी तरह बॉलर बन सकूं, और मैंने सोचा और मैंने कल से ही प्रैक्टिस करनी चालू कर दी कि उनके जैसा बॉलर बनूं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने तुरंत प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। वेरी गुड पंकज। हाँ सैंडी, आप बताओ।
5: दीदी, मैं हमारे पास में एक भैया रहते हैं, अभिषेक भैया, वो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करते क्योंकि उन्होंने अभी जॉब कर रहे दिल्ली में, उनके बीटे की पूरा हो गया, वो इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो हमेशा सिंपल रहते हैं, बच्चों से हमेशा प्यार से बातें करते हैं, इसीलिए मुझे वो सही लगते हैं।
0: अच्छा, तो वो भैया आपको इसलिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं।
5: हाँ।
0: ये तो अच्छी बात है कि हम कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाएं, हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, जो कि सैंडी ने सीखा। तो आकाश, आपने कभी किसी से कोई इंस्पिरेशन ली है?
3: हाँ दीदी, जब सर हमें पढ़ाते थे तब उनका एकदम एक्यूरेट ध्यान पढ़ाई में होता है और कुछ भी उनके दिमाग में उल्टा सीधा नहीं चलता, मतलब सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तब वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सबको अपने साथ ऐसे रखते हैं कि वो सर और हम भाई भाई हैं ऐसे।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई में स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छा है और सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहते हैं, ये बातें आपको इंस्पायर करती है।
1: और दीदी, एक और इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कॉमेडियन शो जो करते हैं वो कपिल शर्मा से। मैं उनका शो देखता हूँ तो हमेशा उनकी तरह कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ और मैं काफी हद तक करता भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स को अच्छे भी लगते हैं।
0: अच्छा, मतलब आप भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ करना चाहते हो पंकज?
1: हाँ दीदी।
0: इसके लिए तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और उन्हीं की तरह मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है।
1: हाँ दीदी, हाँ मैंने अभी से शुरुआत कर दी उनके जैसा बनने की।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक स्पेशल क्वालिटी उनमें पता है और क्या है? उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, कई बार ऐसा भी हुआ जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को छोड़ा भी नहीं और हार भी नहीं मानी। इसीलिए आपकी जो इंस्पिरेशन है, उन्हीं की तरह आपको भी जिंदगी में ऐसा ही करना है। और आप लोग किताबें पढ़ते हो कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
0: तो कभी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा है या कोई ऐसी चीज आपने किसी के बारे में पढ़ा है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, मैंने जैसे नॉवेल्स पढ़ी है, कुछ स्टोरी बुक्स भी पढ़ी है, तो स्टोरी बुक्स ज्यादा इंस्पायर करती है हमें।
0: स्टोरी बुक्स?
1: हाँ दीदी।
0: कोई ऐसी सीख आपको याद है जो आपको किसी स्टोरी से मिली हो?
1: स्टोरी से तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है। किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। तो किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए, हमेशा बुरे के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सीख मिलती है।
0: ये सीख तो बहुत अच्छी है। क्या ये सीख और इंस्पिरेशन आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो बच्चों?
1: हाँ दीदी, मैं तो करता हूँ।
0: करते हो? ठीक है, भुवना आप बताओ।
2: मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती हूँ दीदी। एक नॉवेल पढ़ी मैंने, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दोनों नॉवेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में हमें उस कैरेक्टर का पेशेंस पता चलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे।
0: अच्छा, उनके पेशेंस से आपने बहुत कुछ सीखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश आप बताओ, आपने कभी किसी बुक से, कहानी से, नॉवल से या किसी भी चीज से ऐसा कुछ सीखा है?
3: हाँ दीदी, मैंने बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है उसकी बुक से सीखा है।
0: अच्छा, क्या सीखा आपने?
3: दीदी, उसकी बुक में ऐसा बताया था कि जब वो बच्चा था तब उसकी जो टीचर थे वो पहले पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं था, कम पढ़ता था, तो उसकी टीचर ने बोला था, अरे तू तो पत्थर है पत्थर, तेरे दिमाग में तो भूसा है। तो वही बात उनके माइंड पे प्रिंट हो गई और ना मतलब थोड़ा पागल जैसे रहने लग गए, किसी से भी पूछते ये मैं पत्थर हूँ क्या, ऐसा ऐसा करने लगे। लेकिन उसके बाद ये बात जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने सोचा कि मैं सर को करके दिखाऊंगा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, ना मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो ये उनकी स्ट्रगल थी जो आज वो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी है।
0: अच्छा, मतलब कोई अगर आपको ये कहे भी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तब भी हिम्मत रखनी चाहिए, ये आपने इंस्पिरेशन ली।
3: हाँ दीदी।
0: और ये इंस्पिरेशन हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाती है।
3: हाँ दीदी।
0: हाँ सैंडी, आप बताओ।
5: दीदी, मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी बातें काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि जब वो छोटे थे, कम 7 साल के थे, तो उन्होंने 7 साल तक कुछ नहीं बोला, तो उन्हें उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद हमारा बच्चा कुछ बोलता वोलता नहीं है। फिर एक बार उनके खाना खा रहे थे सब लोग, तो सूप था वो गर्म था, तो उन्होंने पहली बार बोला कि सूप बहुत गर्म है, तो उनकी मम्मी पापा सब चौंक गए, बोले 7 साल तक कुछ बोला नहीं और आज अचानक। तो उनसे पूछा ना उनके मम्मी पापा ने कि तुम इतने से बोल सकते, बोलते क्यों नहीं थे? तो उन्होंने बोला हर मुझे जरूरत की चीज मुझे टाइम पे मिल जाती थी, मुझे जो चीज चाहिए वो मिल जाता था, तो मुझे बोलने की जरूरत ही कहा। तो लाइफ में ऐसी चीजें जहाँ जरूरत है वहीं बोलना चाहिए। और उन्हें स्कूल में कभी उनको जो रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब स्कूल के रूल्स होते थे वो हमेशा फॉलो नहीं करते, तो खुद के रूल बनाते थे। उन्हें कभी स्कूल क्लास से मैम बाहर कर देती थी सब ऐसा। तो उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने बोला सर ठीक है, पर उन्होंने आज वो आइंस्टाइन है, अपने वैज्ञानिक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तो जरूरी नहीं कि रूल्स ज्यादा फॉलो करके कुछ कर सकते हैं, पर हाँ जो नियम है उनको तो मानना चाहिए, तो सबके लिए है, पर अपनी पढ़ाई के बारे में कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
0: देखो, नियम तो हमारे लिए ही बने हैं, उनकी सिचुएशन और उनके सर्कमस्टेंसेस थोड़े से अलग थे।
5: हाँ,
0: और उनकी तरह हमें बनना जरूर चाहिए, लेकिन उन्हीं की तरह मेहनत भी करेंगे तभी हम पर ये चीजें लागू होती हैं, है कि नहीं?
5: हाँ दीदी।
3: हाँ।
0: पर ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने लाइफ की कमी को एक्सेप्ट करने के बाद भी कभी होप लूज नहीं की और बड़े बड़े काम करके दिखाए।
3: हाँ दीदी।
0: ठीक है, तो आज के इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी से शुरू करते हैं और इसी विषय को लेकर आज करियर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कोड से बदली जिंदगी। छोटे से कस्बे में रहने वाला अमित बचपन से ही बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी जो है दुकान चलाया करते थे और घर में कंप्यूटर होना तो दूर, अमित ने पहली बार कंप्यूटर 11वीं कक्षा में स्कूल की लैब में देखा था। स्क्रीन पर चलते अक्षर और कमांड उसे किसी जादू से कम नहीं लगे। कॉलेज में उसने कंप्यूटर साइंस चुना, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं था। अंग्रेजी कमजोर थी, कोई कोड समझ में नहीं आता था और कई बार तो खुद पर शक करने लगता था कि उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वो पीछे छूटता जा रहा था। कई रातें ऐसी थी जब वह सोचता, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, डिग्री सबके पास होती है लेकिन धैर्य और अभ्यास बहुत कम लोगों के पास होता है। यही वाक्य अमित के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने रोज एक घंटा कोडिंग करने की ठानी। गलतियां होती रही, प्रोग्रामिंग क्रैश होते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पाइथन उसकी दोस्त बन गई और कोड उसकी भाषा बन गई। और अंतिम वर्ष में उसने एक छोटा सा ग्रामीण शिक्षा ऐप बनाया जिससे गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सके। वही प्रोजेक्ट उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी भी दिला दी। साथियों, धीरे धीरे फिर नौकरी करते हुए आज अमित एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह अपने गाँव के बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाता और पढ़ाता है। अमित कहता है, कोड सिर्फ कंप्यूटर नहीं बदलता, अगर इरादा मजबूत हो तो जिंदगी भी बदल देता है। साथियों, आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। करियर में आज हम लोग इस विषय को कैसे समझे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के क्या क्या तरीके हैं और कितना पैकेज आपको मिलेगा और कैसे आप कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, पूरी जानकारी खुशी पल में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस ट्रेड के बारे में। आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, इन सब के पीछे जो दिमाग और तकनीक काम कर रही है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज केवल एक नौकरी नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने वाला करियर बन चुका है। भारत सहित पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। युवा वर्ग के लिए ये करियर सम्मान, आय, स्थिरता और नवाचार का प्रतीक है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आइए मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पेशा होता है वो कैसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। यूजर की जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, मेंटेन करता है और अपडेट करता है, समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजता है। सरल शब्दों में कहें जो व्यक्ति कोड के माध्यम से समस्याओं का समाधान करता है वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का महत्व कहाँ पर है वो बताते हैं। आज लगभग हर क्षेत्र में तकनीक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और निर्भर है। शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, LMS, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग, कोर बैंकिंग, UPI, मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, एप्स, उद्योग ऑटोमेशन, ERP, सरकार, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इन सभी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं खास आवश्यक शिक्षा और स्किल्स इसके बारे में। आगे समझते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पर बातें करेंगे। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। साथियों, बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आवश्यक योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं साइंस गणित अनिवार्य है, और फिर आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर आप उससे आगे एमटेक एमसीए भी कर सकते हैं। और आज के समय केवल डिग्री नहीं बल्कि स्किल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिग्री सिर्फ कागजी होती है, स्किल्स आपके कलाकारी और आप प्रैक्टिकल उसे यूज करते हैं। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक स्किल्स जो है वो तकनीकी कौशल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी सी सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट वेब टेक्नोलॉजी में HTML CSS रिएक्ट एंगुलर डाटाबेस में एमएसक्यूएल और MongoDB ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स विंडो और वर्जन कंट्रोल में गीट या फिर गीट हब ये सारी चीजें आती हैं। और दूसरा आता है सॉफ्ट स्किल। ये हो गया टेक्निकल स्किल। अब सॉफ्ट स्किल में बात करें तो ये समस्या समाधान की क्षमता, तार्किक सोच लॉजिकल थिंकिंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, समय प्रबंधन, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रंट एंड डेवलपर यूजर को दिखने वाला हिस्सा बनता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का उपयोग। दूसरा है बैक एंड डेवलपर, इसमें सर्वर डेटाबेस लॉजिक पर काम, जावा पाइथन नोड जीएस। तीसरा आता है फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करने वाला। चौथा आता है मोबाइल ऐप डेवलपर, जहां पर एंड्रॉइड कोटलिन या फिर जावा iOS या स्विफ्ट। तो पांचवी बात आती है डेटा साइंटिस्ट, डेटा का विश्लेषण AI ML बिग डाटा। और छठवां बात आता है जहां पर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, सिस्टम और डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखना। सातवां आता है क्लाउड इंजीनियरिंग, AWS Azure Google Cloud, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। साथ तो देखा आपने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कहां कहां किस किस तरह के टाइप्स होते हैं और उनकी जरूरत कहां कहां पर, ये भी आपने ठीक से समझा। तो चलिए, बहुत सारे विकल्प है इसमें और भी सारी चीजें आएगी धीरे धीरे, लेकिन जितना आपको इनमें से कोई चीज अगर आपको अच्छा लगता है तो वो करने से भी आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की होती है उस पर बात करते हैं। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल। इस कार्यक्रम में साथियों बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होता है। सबसे पहले स्टेप वन की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर की मूल जानकारी, इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम का। स्टेप टू, प्रोग्रामिंग सीखना, एक भाषा से शुरुआत, पाइथन या फिर जावा। तीसरा है स्टेप थ्री, प्रोजेक्ट बनाना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, फिर गीट हब प्रोफाइल बनाना। चौथा स्टेप इंटर्नशिप, रियल वर्ल्ड अनुभव। पांचवा है जॉब या फ्रीलांस, स्टार्टअप, एमएनसी, रिमोट जॉब, ये सारी चीजें आ जाती है। अब आपने समझा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा सीखनी है। अब इन सभी चीजों के बाद आता है आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, स्किल्स भी डेवलप कर लेते हैं, तो शुरुआत में आपको सैलरी कितना मिलेगा, है ना। साथियों भारत में देखा गया औसतन फ्रेशर को 3 से 6 लाख हर साल मिलता है, और अगर अनुभव हो जाता है 3 से 5 साल का तो फिर आपको 8 से 15 लाख का पैकेज मिलता है, और सीनियर लेवल पे जब आप जाते हैं तो 20 से 40 लाख का पैकेज आपको मिल जाता है। साथियों विदेशों में ये अलग है, यूएसए डॉलर 80,000 से 1.5 लाख का पैकेज होता है, और यूरोप में यूरो 50,000 से लेकर 1 लाख का यूरो आपको मिलता है। तो स्किल और अनुभव के साथ सैलरी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, कभी ज्यादा कभी कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज मान के चलिए आपको मंथली पैकेज शुरू हो जाता है 50-60 हजार रुपए हर महीना, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे तो 1 लाख 2 लाख फिर बढ़ते जाएगा हर महीने आपका पेमेंट। तो साथियों यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए करियर अवसर कौन कौन सी जगह पर है, देखिए साथियों आईटी कंपनी सभी जगह आपकी जरूरत होती है। एक तो पहले सबसे पहले टीसीएस, इंफोसिस, गूगल, आईटी कंपनियां जो फेमस है वहां पर आपकी जरूरत तो है ही है। फिर दूसरा है स्टार्टअप्स जो नए बनते हैं वहां पर। तीसरा सरकारी विभाग में भी आपकी जरूरत होती है। चौथा फ्रीलांसिंग में भी आपकी जरूरत होती है, और खुद की टेक कंपनी भी आप बना सकते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपवर्क और फेवर जैसे कंपनीज हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी बातें हैं जिसमें आप अच्छे से अच्छा जो है काम कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं। एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फायदे क्या क्या है। एक तो उच्च आय, वैश्विक अवसर मिलता है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएटिव काम होता है, सम्मान और पहचान भी मिल जाती है। कभी कभी आपको लगता होगा साथियों कि हर क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी हैं? हाँ, लगातार सीखना होता है, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करना होता है, प्रोजेक्ट डेडलाइन का दबाव बना रहता है, तकनीक में तेज बदलाव होता है, तो वो भी आपको हमेशा अलर्ट रहने की बात बताता है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार सीखने की जरूरत पड़ती है, और हर समय आपको अलर्ट होकर कुछ नए क्रिएटिव करने की भी सोच बना के रखना पड़ता है। साथियों यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा, भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आने वाला समय और भी अधिक टेक ड्रिवन होगा, क्योंकि इसके साथ में काफी और नई चीजें जुड़ी हुई है, जैसे कि आज हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल

लेकिन उन सभी चीजों को थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेके नए से शुरू करिए और फिर से समझिए और फिर से करिए। अगर हो सके उतना किसी एक कोचिंग या फिर एक ट्रेनर के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आ सके। आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। साथियों, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे पहुंच गए हैं हम लोग। जैसे ही आज का समय जो है टेक्नोलॉजी का युग है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और रोबोटिक की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ऐसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेहद जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के इच्छुक छात्रों के लिए एक सुझाव ये हो सकता है कि साथियों, आपको रोजाना कोडिंग की आदत डालें, ऑनलाइन कोर्स करें, कोर्सियारा और या उडेमी से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएं, टेक कम्युनिटी से जुड़े और धैर्य और अनुशासन जरूर रखें। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप कई बार मशीन से हमें जो है रेगुलर जुड़ने से बीच बीच में हमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, क्योंकि हम फिर लोगों के साथ कम जुड़ते हैं, क्योंकि आज मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है और आप दिन भर कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं और आने के बाद मोबाइल से, तो फैमिली जो है वो कभी कभी पारिवारिक जो भावना है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें जो है बीच बीच में ब्रेक देना बहुत जरूरी है। तो आइए निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना आज के युवाओं के लिए सबसे प्रभावशाली और सुरक्षित करियर विकल्पों में से एक है। ये करियर न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि व्यक्ति को समस्या समाधान करता, नवाचार करता और भविष्य निर्माता भी बनाता है। साथियों, यदि आप तकनीक में रुचि रखते हैं, सीखने का जुनून रखते हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो साथियों, आज के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जो है नवाचार है और नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती जा रही है, तो ये भविष्य की मांग भी है। तो आप अपने आप को तैयार करके इस फील्ड में आगे बढ़े, अच्छा सोचे, अच्छा करे, अच्छा सीखे, अच्छा पढ़े और अच्छा करियर बनाए और सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ऐसी शुभ आशा के साथ मैं फिर मिलूंगा एक नए ट्रेड को लेकर। तब तक आप बने रहिए, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के इस सफर में। जी हाँ, आज के इस ख्वाबों के सफर को हम लोग बनाएंगे यादगार और बहुत ही मीठी प्यारी बातें आपसे करेंगे और बहुत ही खूबसूरत गाने 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज भी आपको सुनाएंगे। अक्षर है एस। जी हाँ, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से एस अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने आपको आज सुनाने की हमारी कोशिश रहेगी और इस कोशिश को पूरा करने आ गई है विभा जी। जी विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में।
2: नमस्कार सनी, आपको भी और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी प्यार से प्यार भरा नमस्कार। जी, और जी, मैं आ गई हूँ और बहुत ही खूबसूरत गाने लेके अक्षर एस से।
1: क्या बात,
2: और मैं सबसे पहली आपको गजल देना चाहूंगी, बहुत ही प्यारी पंकज उदास की गजल है। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, अच्छा, सिर्फ अच्छा। एक बार नजरों से नजर मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं।
1: ओह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद किया है। आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। जी
2: जी, बड़ी नशीली गजल है, इसको पूरे सुर में इसको सुने तो और भी मजा आएगा। और इसके बोल जैसे मोहब्बत का भी इजहार कर रहे हैं और पूरे नशे का भी। मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, वो समझ ना पाए तो मैं क्या करूं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आइए सीधे इस गजल की तरफ ले चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद किया है, बड़ी मीठी गजल है, तो हम लोग इस गजल का आनंद उठाएंगे। पंकज उदास साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत गजल है। कहते हैं, मीठी वाणी बोलना काम नहीं आसान, जिसको आती ये कला, जिसको आती ये कला, होता वही सुजान, होता वही सुजान। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुना पंकज झा का, और विभा जी थैंक यू ये बहुत ही खूबसूरत गजल की शुरुआत करने के लिए खाबों के सफर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, जीवन में यदि चाहिए सबसे अपना मान, जीवन में यदि चाहिए सबसे अपना मान, वाणी मीठी बोलना सबको अपना जान, वाणी मीठी बोलना सबको अपना जान। जी हाँ साथियों, कभी कभी हम लोग अपना काम निकलवाना चाहते हैं, मीठा भी बोलते हैं, लेकिन उस मीठे में काम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम दूसरों को परार समझते हैं या टेम्पररी समझते हैं। लेकिन जब हम सबको अपना समझ के मीठी वाणी बोलेंगे तो उसका असर जो है बहुत अच्छी तरह से होगा और आपका काम यूं ही हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत लेकर विभा जी हमारे बीच में है। विभा जी, अगला कौन सी गीत या गजल सुनाएंगे आप?
2: अगला जैसे अगली भी गजल ही है मेरे पास, ये चित्रा सिंह जी की है।
1: अच्छा।
2: सफर में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, गजल में न्योता भी है और जिंदगी के उतार चढ़ाव भी, एक दूसरे पर पांव रख आगे बढ़ते जाने का भी इसमें इशारा है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम अगर संभल सको तो चलो।
1: क्या बात,
2: बहुत ही बहुत आनंद आएगा इसको आप मजे से सुन पाएंगे।
1: जी जी, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत गजल चित्रा सेन का आपने याद कराया है। तो आइए सीधे गजल की तरफ चलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनाया चित्रा सेन का, और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और कहते हैं, मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ कर बोल। जी हाँ साथियों, कभी कभी हम लोग जो भी शब्द निकालते हैं बिना सोचे समझे या कुछ भी बक देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मुसीबत का काम कर देता है, और कभी कभी हम लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते। इसलिए हमें जो है इन सारी चीजों को, हमारे शब्दों का तोल हमें खुद को करना है, उसका मोल भी हमें करना है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही बोल बोलने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सनी, आपने मुझे पूरी उम्मीद है आप इस गजल को भी खूब एंजॉय किया होगा। चित्रा सिंह जी की गजलें काफी जैसे जगजीत सिंह जी के साथ होती हैं, क्योंकि उनकी वाइफ है ये, तो इनकी गजलें बहुत ही अच्छी हैं। अगर श्रोताओं को और भी को आगे चल के भी कोशिश करेंगे कि ऐसी गजलें आगे भी लिख के आए, इनकी 60s में गाई गई भी काफी गजलें हैं। अगला गाना है मेरे पास, सैया छोड़ दे भैया मोरी पतली कलैया, ये लव सॉन्ग है। इसमें छेड़ा खानी हो रही है, प्यार की मस्ती हो रही है, गाना बहुत ही लाइवली है और म्यूजिक इसका तो बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें आपके पैर छलकने वाले हैं, इसका म्यूजिक ऐसा है, दो प्रेमियों की शरारत है। और इसमें है वो, तेरा हाथ ना छोड़ू तेरा साथ ना छोड़ू कहाँ जाएगी।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपने इशारा किया है। आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये गीत भी पसंद आएगा। और ये राखी इस एल्बम का है जो 1962 में रिलीज हुई थी। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। ये गीत राखी इस एल्बम का था जो अभी आपने सुना। और इस गीत को राजेंद्र कृष्णा साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर ने गाया था मुकेश जी के साथ। रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना मेरे पास है, सैया दिल में आना रे, आके फिर न जाना रे। ये वैजयंती माला अपने साजन की फोटो को हाथ में पकड़े हुए हैं और अपने सपने, सुंदर सपने सजा रही हैं अपनी पिया के मिलन के। और इस गाने में खुशी है, प्यार है और इंतजार भी है। तुम मेरे पास होगे, गम बड़ी दूर होगा, कहता है जिया मेरा, होगा जरूर होगा। लाना रे लाना, तशरीफ लाना रे। बहुत ही बहुत खूबसूरत
0: बहुत ही सुंदर गाना आपने याद कराया, बहार इस एल्बम का जो 1951 में रिलीज हुई थी। और ये एक फिल्म है एंग्री एंग मैन की, यानी यहाँ पर बहुत ही अलग कहानी बताई गई है। वैजयंती माला प्राण, ओम प्रकाश, करण दीवान और तबस्सुम पर पिक्चराइज किया गया था। तो यहाँ पर वसंत नाम का एक व्यक्ति है जो प्यार करता है हीरोइन से, लेकिन हीरोइन किसी और से प्यार करती है। तो यहाँ पर ये क्लाइमेक्स बताया गया है, तो इसी पर ये फिल्म बनी हुई है। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशियाँ बात।

0: अपने आप से ही बातें करते हुए, आई थिंक संध्या है इसमें, ये गाना गा रही है और कह रही है, कुछ दिनों से पिया हमसे न बोलता, न हमारा घूंघट का पट खोलता, उसकी गुपचुप का भेद आज निकला, सैया झूठों का सरताज निकला।
1: जी, अब बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और ये दो आंखें 12 हाथ 1957 की फिल्म की बात है, और ये फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है, और लोग इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही जैसे उमड़ पड़ते थे। और इस कहानी जो है थोड़ी सी अलग है, जहाँ पर कुछ डाकुओं को जेल से एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश एक जेलर की यहाँ पर बताई गई है। वी शांताराम ने इसमें काम किया है, संध्या शांताराम धर्मपत्नी ही है, और इसके साथ में कुछ विशेष कलाकार है, बाबूराव पोद्दार, वी एम व्यास जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में काम किया है। और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही उस जमाने की। शायद मुझे अपने कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ बात करते हुए दो आंखें 12 हाथ इस फिल्म के बारे में वो भी चर्चा करते थे। तो यहाँ पर एक जेल वार्डन की कहानी को बताया गया, किस तरह से वो कैदियों को सुधारने के पीछे अपना पूरा जो है जीवन लगा देता है, इवन उसकी आंखें भी चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर इस फिल्म में बताई गई थी। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने विभा जी याद कराया, तो सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। जैसे मैं कह रहा था कि मीठी वाणी का कितना मोल है, वो हम लोग अगर धीरे धीरे समझ लेते हैं तो जीवन का एक नया आयाम खुल जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान, मीठी वाणी कर सके हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। और विभा जी, कैसे हैं आप?
2: जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके कहे गए लफ्जों को उसका रस ले रही हूँ। और ये जिंदगी की कितनी अच्छी आप लफ्ज लेके आए हैं, ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हर कोई इस पे चले तो जिंदगी हमारी भी आसान हो जाए और हमारे भाई बंधुओं की भी आसान हो जाए, बात हम सब इस पे चल सके। बहुत बहुत ही अच्छे आप बीच बीच में शायरी और लफ्ज जो बता रहे हैं उसको मैं खूब अच्छी तरह से इंजॉय कर रही हूँ। और इसके साथ ही राज कपूर का भी ऐसी मिलता जुलता गाना है, जैसी बातें आप इतनी प्यारी प्यारी कर रहे हैं।
1: जी, जी,
2: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया गाना है।
1: जी, जी, जी।
2: बहुत खूबसूरत गाना है और बड़ी सादगी से गाया गया है और जिंदगी की सच्चाई को बयान करते हुए सादा लिबास में वो गा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारी।
1: जी जी जी, विभा जी बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपने इशारा किया है, तो आइए सीधे गीत की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना। कहीं ना कहीं हम सभी को मैसेज देता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। जिस तरह से हम भाव प्रकट करते हैं गीत के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन गीत के साथ सिर्फ बह जाना नहीं है, गीत के साथ जुड़ना नहीं है, उसे प्रैक्टिकल में लाइफ में लाने की बात है। और जब प्रैक्टिकल में, व्यवहार में या फिर बोल में हम इनसे उतारने की कोशिश करते हैं, वहां बड़ी मुश्किलें आती हैं। उस मुश्किल को आसान करने के लिए मीठी वाणी बोलना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे विभा जी के पास अगला कौन सा गीत है?
1: अगला गाना भी ऐसे ही संदेश देता हुआ गाना है। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, घाघना बांटे को। ये बहुत ही सच्चाई वाला गाना है। राज कपूर ज्यादातर फिल्मों में, इनके फिल्मों में संदेश होते हैं, और
0: जी,
1: मुकेश जी की आवाज तो उसमें चार चांद लगा देती है।
0: सही बात है, सही बात।
1: तो इस गाने के बोल बड़े बहुत ही खूबसूरत है। डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 साल। बहुत ही मजेदार गाना, आपको बहुत आनंद आएगा।
0: जी। अब बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, तीसरी कसम। इसके पहले भी जो हमने गीत सुना था, सजन रे झूठ मत बोलो, वो भी तीसरी कसम इस एल्बम का ही था। शैलेंद्र साहब का लिखा, मुकेश जी का गाया, शंकर जय किशन का संगीत पर। अब ये जो गाना है, सजनवा बैरी हो गई हमार, तो यहाँ पर भी एक जो है बहुत ही खूबसूरत भाव है इसके गीत के साथ में। शैलेंद्र साहब के कलम से लिखा हुआ, मुकेश जी का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध, ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आशा करता हूँ आप बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पे भी पहुंच गए हैं। और जैसे मैंने शुरू किया था, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल। तो इस तरह से जीवन में जो है कई बार हम लोग जो है कुछ कुटिल वचन यूज करते हैं, लेकिन संत महात्माओं का कहना है कि अपशब्द या कुटिल वचन सबसे बुरे हैं और ये व्यक्ति को दुश्मन बना देता है। इवन व्यक्ति नहीं, आपको पूरी दुनिया में दुश्मन बना देती है। इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करें, मीठी वाणी बोलकर फैला दो मुस्कान सब जगह। मीठी वाणी बोलकर फैला दो मुस्कान सारे जहां में, और सारे जहां के आप बन जाओ एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे दोस्त। आइए, आखिरी जो गीत है, मुझे लगता है कि हम लोग शुरू किया था गजल से। अगर आपके पास कोई गजल हो एस अक्षर वाले, तो मुझे लगता है कि आखिरी में भी हम लोग गजल सुनाते सुनाते हमारे श्रोताओं से विदा लेना चाहेंगे।
2: जी सनी, मैं अगली यही ध्यान में रखते हुए कि शुरू जैसे गजल से किया था, गजल से ही इस एपिसोड का आखिरी गजल ही देंगे। सजाए पाई है कुछ ऐसी दिल लगाने की, ना अब है रोने की ताकत ना मुस्कुराने की। इसमें जगजीत सिंह की आवाज है और दिल को छूने वाली गजल है, और उदासी है और महबूब की याद है इसमें, तेरे बगैर किसी तरह जीना कोई।
1: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनाया है, याद किया है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आज के इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी बातें और अच्छे गीत सुनने को मिला है, और आपने बहुत ही अच्छी तरह से कलेक्शन हम सभी को सुनाया। तो थैंक यू विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी प्यारे से श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। और मुझे पूरी उम्मीद है उनको बहुत मजा आया होगा इस मिक्सचर का, इसमें जो गजलें भी थी और जो गाने भी थे वो भी मोटिवेशनल थे और जिंदगी की सच्चाई को रखने वाले गाने थे। और इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड भी आपको बहुत आनंदित करेंगे और अच्छे अच्छे गीत और गजलें चुन के लेके आएंगे, इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहते हैं।
1: जी जी जी, शुक्रिया।
2: बहुत प्यार के साथ प्यारा सा नमस्कार।
1: चलिए विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। और कहते हैं मधुर शहद से बोल हो, मधुर शहद से बोल हो, उत्तम हो व्यवहार। वो प्राणी बिना युद्ध ही, वो प्राणी बिना युद्ध ही जीते ये संसार, जीते ये संसार। तो इसी के साथ साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले मोड़ पे, यानी अगले एपिसोड पे, इसी तरह ख्वाबों के सफर में। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कोशिश मुझे लगती थी कि कर सकती हूँ, और एक थॉट ही तो बदलना है। हर चीज को अगर पॉजिटिवली ले लें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और पॉजिटिव थिंकिंग में कर पाऊंगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया कि नहीं, उसके पहले जरूरी ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जा रही है, हर रोज की जो जानकारी मेरे पास आती है, मेरे जो आसपास का माहौल है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और उसमें कैसे फिल्टर करना है वो मेरे हाथ में है। सिचुएशंस, इन्फ्लुएंसेस, लोगों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जानकारी मैं लेना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन से स्टेप्स होंगे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट कर पाऊं या अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर पाऊं। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। मैडम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी में अगर हम देखें तो एक होमवर्क हमारे साथ था कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो मुझे गवर्न कर रही होती है। और हमने ये समझा था कि हर थॉट, मेरी सोच जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो जाती है जिस तरह की जानकारी जा रही है।
1: अभी क्या होता है, सुबह उठे नहीं कि यू नो माय फर्स्ट अब्सॉर्प्शन जो होती है, जो ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन है उस पे फर्स्ट चीज जो अब्सॉर्ब करते हैं दैट इज द फर्स्ट पेज। मतलब मेजॉरिटी के तो हम देखते बेड में ही न्यूज़पेपर आता है, तो फर्स्ट पेज एक क्लीन माइंड के ऊपर क्या छाप दिया सुबह सुबह। फिर अब उसके बाद बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, देन वी आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डिफिकल्ट। फिर आपको मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम, क्योंकि आपने फाउंडेशन तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का क्रिएट किया है, लेकिन अब आप सारा दिन मेहनत ये करने वाले हैं कि पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कुछ स्टेप नहीं लिया जाएगा, लेट अस नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल। और इसीलिए हो रहा है कि इतना सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उस पे जो थोड़ा सा परिवर्तन। और हमने बहुत भाई बहनों से मिले हैं जिन्होंने सिर्फ ये किया है अभी, और ज्यादा तो किया ही नहीं है कुछ, उसके बाद कुछ नहीं किया है मेहनत, उसके बाद सिर्फ इतना किया कि सुबह सुबह अखबार पढ़ना बंद कर दिया, दे आर फाइंडिंग अ चेंज।
0: इनफैक्ट नो, आई विल टेल यू, बिकॉज़ मैंने भी जब शुरू में किया, आप बहुत लाइट रहते हैं।
1: अगर हर एक अपने आप को सिर्फ अपने जीवन को रिवाइंड करे थोड़ा सा, लास्ट कब बैठ कर एफर्ट करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी थी अपने अंदर, व्हेन वाज दैट द लास्ट टाइम, तो हमें याद नहीं आएगा। तो जो चीज भरी नहीं वो क्रिएट कहाँ से होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे घर पे कोई लेट आए शाम को, तो एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये जो नेगेटिव नेचुरल हम कहेंगे नेचुरल आ जाता है, ये नेचुरल इसलिए आता है क्योंकि सुबह मैंने वही भरा था। आप थोड़े दो महीने के लिए सुबह वो भरना बंद करें और सुबह सुबह ये भरें जो परमात्मा के महावाक्य हैं कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा, आप कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, आपके साथ क्या गलत होगा। अब रात को देखो अगर कोई लेट आता है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट दैट टाइम। अभी तो पॉजिटिव उस टाइम बोलेंगे, उस टाइम तो याद नहीं रहेगा कि पॉजिटिव सोचना है, उस टाइम तो वो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, यू नो ड्रेनिंग योर सेल्फ आउट। तो ये उस टाइम नहीं एफर्ट हो सकता कि हाँ नाउ समवन हैज कम लेट नाउ और हैज नॉट रीच्ड नाउ आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। ये तो ऐसा तो होने नहीं वाला है, बिकॉज अगेन थिंकिंग हैज बिकम वेरी ऑटोमेटिक। लेकिन हमें इसलिए सिक्योर रहेंगे क्योंकि हमें पता है भरा ही क्या था, और ये प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। सेकेंड चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी, वो है साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। अगेन डिटैच्ड वर्ड सुनते ही इट विल सी योर फेस ओनली हाउ इट हैज बिकम,
0: बिकॉज़ इट बिकम्स लाइक यू नो इट इज अ फीलिंग लॉट ऑफ पीपल से कि डिटैचमेंट कहते हो तो ऐसा लगता है कि कोल्ड, देयर इज अ कोल्डनेस व्हिच सेट्स इन, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हर चीज से हम परे हो गए। तो वो उससे डर लगता है लोगों को, लोगों को लगता है कि हम दूर हो जाएंगे अपनों से, हम अपनों से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, और कोई मुझसे डिटैच हो गया तो वो मुझसे दूर चला गया।
1: डिटैचमेंट को तो हम समझेंगे ही वो क्या है, लेकिन फर्स्ट वे सेइंग डिटैचमेंट मीन्स डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि एक परिस्थिति को एक साक्षी दृष्टा होकर देखने से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। व्हाई डू आई नीड टू सी इट, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द वन थिंग ओवर लास्ट फ्यू डेज कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, नाउ आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, तो उस पर तो हम आ गए। लेकिन सेल्फ को मैनेज करने के लिए मुझे उससे एक स्टेप पीछे होकर उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा, ताकि परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से दूर हो जाती हूँ. डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, किसी को बीमार होना है हो या किसी को दर्द हो रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स नॉट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस लाइक यू से. इट्स नॉट हार्डनेस ऑल्सो. कई लोग समझते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कड़क हो गए हैं, दैट इज इनसेंसिटिव. वो इनसेंसिटिव है. उल्टा जो डिटैच्ड होगा, सही मायने में डिटैच्ड होगा, वो तो और भी कंसर्न्ड होगा. क्योंकि डिटैच्ड अगर हम होंगे तो मैं दर्द में नहीं गई, और अगर मैं दर्द में नहीं गई तो मैं आपके लिए तो और भी कर सकूंगी. आपके लिए जो कंसर्न है, आपको अगर मदद करनी है तो मैं और भी ज्यादा कर सकूंगी. बट माई सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट. दैट इज इनसेंसिटिव. दैट इज अनकंसर्न्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल. दैट्स नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर रिलेशनशिप्स. डिटैचमेंट मतलब एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पॉज एंड स्टेप बैक, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो, जिसको कहते हैं ना सोच समझ कर फिर बोलना या सोच समझ कर करना, दैट इज डिटैचमेंट. कि टेक दैट वन मोमेंट टू पॉज, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा. मतलब एक
0: नपातुला होगा,
1: मेजर नपातुला. यस राइट. मतलब एक आई नो व्हाट आई एम रिस्पॉन्डिंग. बट अगर डिटैच नहीं होते तो इट इज अ रिएक्शन,
0: और वो फैलता है फिर.
1: दैट इज मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हैबिचुअल रिएक्शन हो गया ना, वो मेरा रिएक्शन हो जाता है. डिटैचमेंट मतलब रिस्पॉन्ड करना. और पहले हम क्या करते थे, हम दूसरे के, जैसे सपोज अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं अपने बारे में, आपकी लाइफ में ये हुआ या ये है ये है, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट, आई वुड गेट सक्ड इनटू इट. एंड तो क्या होता था कि अगर आप दर्द में हैं तो आप रो रहे हैं अंदर से या बाहर से जो भी, एंड वेरी सून यू विल फाइंड कि मैं भी आपके साथ रो रही हूँ.
0: क्योंकि आप उसके साथ ही मर्ज हो गए ना, मैं उसमें.
1: यू गेट सक्ड इनटू द इमोशंस ऑफ समबडी एल्स. तो डिटैचमेंट इज जस्ट दैट वन मोमेंट, एक मोमेंट उस तरफ से. जैसे कि सपोज अगर हम स्टेज पर हैं तो हम पूरे प्ले को उतनी ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑडियंस है वो ऑडियंस उस प्ले को बहुत अच्छी तरह से देख सकती है. तो जब मैं परिस्थिति में हूँ तो मुझे परिस्थिति राइट पर्सपेक्टिव में नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं परिस्थिति को सिर्फ अपनी साइड से देख रही हूँ. मैं आपकी साइड से या किसी और साइड से तो उसको देख ही नहीं पाती, बिकॉज आई एम स्टक टू माई पोजिशन. पोजिशन कुड बी माई आइडिया. सपोज मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग है. दिस इज अटैचमेंट टू माई आइडिया ऑफ बींग राइट. तो मैं अपने राइट के आइडिया से इतनी अटैच्ड हूँ कि आपका आइडिया तो दिखने का मेरे पास कोई मार्जिन ही नहीं है. सो अनलेस आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई अटैचमेंट ऑफ अ राइट आइडिया, हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड यू. एंड जब तक मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो जो परिस्थिति है वो राइट पर्सपेक्टिव में मुझे कहाँ दिखाई देगी. इट्स नॉट पॉसिबल. तो डिटैचमेंट मतलब स्टेज से हटकर एक मिनट ऑडियंस की तरफ से देखें.
0: लोगों का एक और इस पे आता है कि हम कब तक करते रहे.
1: वो तो जब तक आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं. सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम कुछ भी किसी और के लिए नहीं कर रहे. हम ये समझते हैं कि आपने गुस्सा किया और मैं चुप रही, ये आपके लिए किया, आपके लिए नहीं किया. हम ये प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है, मैंने सहन किया आपके लिए किया. ना ना, किसी और के लिए तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. इट इज ओनली टू बी डन फॉर माई सेल्फ. हाँ, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली औरों को होता जाएगा, लेकिन हम जो भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं. एंड ये हर एक कर रहा है, विद द ज्ञान और विदाउट द ज्ञान. दैट इज डेफिनेटली, भले हमें ऊपर ऊपर से पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज हैपनिंग सो फास्ट, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं. आज अगर मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ. हमें लगता है वो मैं आपके फायदे के लिए कर रही हूँ, आपको सुधारने के लिए कर रही हूँ. नहीं नहीं, उसके लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. गुस्सा मैं इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो मेरे attached ideas of right mein nahi fit hota hai, and that is why I am reacting. It is because I am hurt, so I have reacted. It's nothing to do with you.
0: लेकिन मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा हूँ. अपने जॉब में मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि मेरा परिवार कैसे चलेगा, या मैं एक रिश्ते में जिसमें हूँ तो उसमें बच्चा. बहुत सी आज
1: कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो रहा है, स्टेबल रहकर. कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज बाहर तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर. अंदर. तो वी आर टॉकिंग कि सिचुएशन कोई भी होगी, क्या हम अपने आप को उस सिचुएशन में स्टेबल रख सकते हैं और उसके लिए मुझे क्या करना है. एंड उसमें ये जो अगर हम प्रैक्टिस करें, दिस विल अगेन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. कि सिचुएशन है आपके सामने, अभी आज आप अपनी सारी 1-2-3 सिचुएशंस लिख लीजिए, जो जो आपकी परिस्थितियां हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, चाहे वो जॉब की जो प्रॉब्लम है. अब इसको अपनी जगह से हटकर इस पोजीशन को देखने की कोशिश करें, और कोशिश करें दूसरे के दृष्टिकोण से देखने के लिए. बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज आल्सो राइट, बट इट्स ओनली राइट फ्रॉम द अदर साइड.
0: इट्स सो डिफिकल्ट.
1: इट्स नॉट राइट फ्रॉम माय साइड.
0: लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट. अनदर थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार हम ये कह तो रहे हैं कि अंदर से करें, लेकिन सिस्टर शिवानी आज ऊपर से ही मेंटेन कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब रिश्तों की बात घर में.
1: ऊपर से मेंटेन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम ऊपर से मेंटेन कर रहे हैं,
0: अंदर से कर ही नहीं रहे.
1: दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन, अंदर तो फाउंडेशन पूरा गड़बड़ हो गया, ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो हर थोड़े दिन के बाद वो आपकी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है. और हम कहते हैं हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आवर रिलेशनशिप्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स, व्हाट्स द फाउंडेशन. तो फाउंडेशन पर क्योंकि टाइम नहीं है, या इंक्लिनेशन नहीं है, या पता ही नहीं है कैसे करना है फाउंडेशन पर, तो सारी मेहनत हो रही है उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में. आई वॉन्ट टू बिल्ड माई रिलेशनशिप एंड एवरी फ्यू डेज दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स.
0: ऑफ कोर्स
1: दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स, देन अगेन आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बट आई एम जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन, जस्ट नॉट वर्किंग. इज इट पॉसिबल फॉर वन डे? और उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है थॉट प्रोसेस को. कि जैसे ही कोई परिस्थिति में हम आते हैं, और ये तब हो पाएगा अगर हमने मॉर्निंग के टाइम पर वो थोड़ा सा साइलेंस एक्सपेरिमेंट किया.
0: सिचुएशन ऐसी ले कि हस्बैंड आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बहुत घरों में ये होता है कि, और सेम सिचुएशन ही हो जाती है, उसी सिचुएशन पे बार बार लड़ाई होती जाती है, और दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि वो गलत है. वैसे ही बॉस और सबॉर्डिनेट का भी सिचुएशंस अगर देखें तो मैक्सिमम टाइम वही होती है. उसकी आदत हमारे, हमें सबकॉन्शियस में जो भी है वो ऐसी हो चुकी होती है कि जैसे ही वो सिचुएशन आई मेरा रिएक्शन वही हो रहा होता है.
1: आपने अभी कहा कि हम वो कोशिश कर रहे होते हैं ढूंढने की कि वो गलत है या वो गलत है, बट एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. कौन गलत है दोनों में से? Which one of the two is ever wrong? Have you been able to find out? अगर आप logically decide करने की कोशिश करेंगे तो आपका answer हमेशा एक ही होगा कि मैं right हूँ, आप गलत है. इसीलिए तो हम, मैं जो कह रही हूँ वो तो right ही, मैं wrong थोड़ी बोलूंगी. That is the same way I will have to understand कि सोच समझ कर अपने दृष्टिकोण से मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो मेरे हिसाब से उस समय वो right है. And same goes for you. I may look at it and say it's wrong, but for you, it's right.
0: लेकिन मैं तो सोच समझ के बोल रही हूँ, वो तो सोच समझ के बोल ही नहीं रहे.
1: ये किसने बताया?
0: यही तो हम कहते हैं.
1: आपने कभी खुद ये गलत है ये सोचकर ऐसा किया? This is wrong. Now come, let me do it. ऐसा आपने कभी? Even if let's say I'm going to tell a lie, yeah, I am going to give a bribe, or I'm going to take a bribe, or whatever, anything.
0: But this is a need of the hour.
1: Whatever. तो सारी logic है ना उसके पीछे कि ये नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, फिर वो government office में मेरा काम रुक जाएगा. तो logic तो दे देंगे ना उसको अपने आप को. और जैसे ही logic दिया, मतलब क्या कहने की कोशिश की?
0: It's justified. It's okay.
1: तो it's right. मेरे लिए वो right है, भले even the law of the country says that it's wrong, but मेरे लिए उस समय वो राइट है. हमें कई अपने कर्म थोड़ी देर के बाद लग सकता है कि ये गलत थे, लेकिन जिस क्षण हम वो कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, उस क्षण हमें वो राइट ही लगते हैं. कभी भी सोच समझ के कोई गलत नहीं करेगा. उसके पीछे उसके पास लॉजिक होगा कुछ ना कुछ करने के लिए. लेकिन बट द सेम अप्लाइज टू एवरीवन एल्स. एंड जिस समय, लेकिन आपका राइट देखने के लिए मुझे इस कुर्सी से उठकर उस कुर्सी पर आना पड़ता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन वो देखने के लिए मुझे अपनी सिचुएशन से, अपनी साइड से, अपने आइडिया से डिटैच होना पड़ेगा. तो डिटैचमेंट डजंट मीन यू नो कट ऑफ या बीइंग इनसेंसिटिव. इट मींस बीइंग एब्सोल्युटली देयर, लेकिन डिटैच्ड मतलब उस सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड.
0: जो हमने कहा
1: सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड, सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड. कुछ लोग क्या होते हैं, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएंगे, चलो ये मेरे से नहीं हो रहा फेस, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड, और डिटैच्ड मतलब स्टेबल. सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, जो वो हमने कहा नदी फिर, तो फिर कभी दर्द भी होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड मतलब पेनलेस एग्जिस्टेंस. ना इफ आई वॉन्ट टू लिव अ पेन फ्री लाइफ, दैट्स माई चॉइस, इट्स नॉट कोल्डनेस. और जितना पेन फ्री मैं हूँ, दर्द के बिना हूँ, उतना मेरा औरों के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा. तो कई लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब फिर ये तो परिवार में डजंट वर्क, बट एक्चुअली वो रिश्ते और भी स्ट्रांग होते जाएंगे. से समथिंग टू मी राइट नाउ विच इज लाइक वेरी इंसल्टिंग, इफ आई एम वेरी अटैच्ड, मेरे को कह दिया ऐसा, आई विल गो इनटू सो मच पेन, उसके बाद मैं 4 दिन आपसे चाहे बात ही ना करूं या जो भी करूं. लेकिन you are right whatever you're saying, but I still have to take care of myself. to main thodi der mein aapse fir se baat karna shuru kar dungi. lekin dard mein gayi, fir us process se guzri, fir apne aap ko theek kiya, kitna time bita?
0: lekin wo itni jaldi main aapse baat karna shuru kar paungi,
1: wo to kitna time leke aata hai, kitna time hum lagate hain to get over that whatever
0: pain.
1: because create bhi humne kiya, ab usko get over bhi humne hi karna hai. how much time, that depends on again me, not on you. Not on you. So, jitna jaldi I will be able to get detached from my idea of what is, this is mine, this is what I think is right, I'll be able to see your perspective. और इस तरह अगर हम सारा दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड है ना हल्का रहता है. नहीं तो सबकी बहुत सारी क्लटर जो है वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, एक इंटरनल चैटर जो है ना वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, और फिर साइलेंस प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा दिन अगर बहुत सीन्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो अगर मॉर्निंग में साइलेंस में बैठने की भी कोशिश करेंगे अपने आप को देखने की, लेकिन वो सारा दिन जो नॉइज क्रिएट की थी वो ही वापस रिप्ले होने लगती है. तो साइलेंस सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, वॉचिंग योर थॉट्स सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, लेकिन सारा दिन की इस परिस्थिति को साक्षी होकर जिसको देखना, एंड साक्षी मीन स्टेबल स्थिति में. तो लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, सो वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड कि लेट मी फर्स्ट लुक एट द सिचुएशन. अब उस समय ये नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि जैसे ही सिचुएशन आए, अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम कर नहीं सकते. हम ये कर सकते हैं जो सिचुएशन गुजर गई है, लेट से
0: उसको एनालाइज कर ले
1: ताकि वो मेरा लर्निंग, नॉट उसके दर्द में चले जाए. दैट इज अगेन वेरी
0: इंपॉर्टेंट. वो तो हम जाते ही हैं, वो तो चलते ही रहते हैं हमारे साथ. कुछ हमारे साथ हो गया, किसी ने कल कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हो गया, वो दर्द तो कंटिन्यूस प्रोसेस हम अपने साथ रखते हैं.
1: फिर वो डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब दर्द नहीं. लेकिन अगर हमें पास्ट के सिचुएशन से कुछ सीखना है तो हम एक पल के लिए उस सिचुएशन को वैसे का वैसे सामने लाएं, लेकिन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, अगेन ऑडियंस में बैठकर, कि वो सिचुएशन मुझे कैसे दिखाई देती है, ताकि उसमें आप सिर्फ, मैं अपना रोल नहीं लेकिन आपका रोल भी उतना ही इक्वली बैठकर देखूं, तो शायद मुझे उस सिचुएशन में क्लैरिटी और आती जाएगी. लेकिन सिर्फ अपने रोल पर देख रहे हो और आपके रोल को तो बिल्कुल दूसरी साइड से देख रहे हो कि ये तो है ही गलत सारा कुछ, देन आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ that pain, and then my mind is filled with so much of bitterness, so much of pain the whole day. For clarity or stability, ये possible.
0: और self को लेके जो self pity वाला aspect है,
1: victimization.
0: मेरे साथ गलत हुआ. But जब भी मैं analyze करने लगती हूँ अपने साथ जो situation हुई होती है, चलिए खुद अंदर भी analyze कर रहे हैं, तो हर बार मुझे नजर आता है कि मेरे साथ गलत हुआ. Maximum लोग यही सोच पाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ. तो एक साक्षी भाव, यानी कि मैं अपने आप से भी परे हूँ,
1: yes.
0: और उससे भी परे हूँ,
1: yes. और उसमें जो हम आगे देखेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो है डिटैचमेंट, कि मैं कौन हूँ, ये सब तो मेरे रोल्स हैं, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब मेरे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ. वो मैं जब इस पूरे ड्रामा को देखेगा तो वो ड्रामा को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएगा, नहीं तो इट गेट्स सक्ड इनटू द ड्रामा. You know, it just gets consumed by the whole scene, and then it can't see the scene in its right perspective. इसको अगर हम सारा दिन में, मुझे अगर रोज की अपनी तैयारी करनी है, तो इसकी प्रोग्रामिंग मुझे सुबह से शुरू करनी पड़ती है। तो इसको हम आज तो 2 मिनट के लिए अभ्यास भी करेंगे, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल एक दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे 24 आवर्स। आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कल जब आप फिर प्रोग्राम देखेंगे आप तब तक अपनी चेकिंग करेंगे कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक प्रैक्टिस करनी है, कि वो हर सीन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, हर डायलॉग इंटेंगलमेंट जैसे जैसे होती जा रही है, एक दिन के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको देखने की कोशिश करें, रादर देन गेटिंग कंज्यूम्ड इनटू द ड्रामा। इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे इन अ वेरी इजी मैनर, बिकॉज हमें आदत पड़ी हुई है उस सीन के अंदर जाने के। तो डिटैच्ड होने के लिए शुरू में, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हमें उसी सीन के अंदर 2 मिनट साइलेंस कर लेना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, एवरीवन इज गोइंग इनटू केओस, क्या होगा, कैसा होगा, जस्ट 2 मिनट स्टेप बैक एंड ट्राई एंड लुक एट दिस सीन। आपको वो सीन बहुत बड़ा पता चलेगा कि इतना बड़ा है नहीं। जैसे ना कभी कंपनी में होता है प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ओ यू विल फाइंड दैट इट जस्ट गोज इनटू केओस, क्या किया तुमने, नहीं किया, ऐसा नहीं हो, स्टेप स्टॉप बैक 1 मिनट। तो जैसे ही आप ये स्टेप बैक अगर कल प्रैक्टिस करेंगे, यू विल रियलाइज वेरी सून एक बहुत वंडरफुल चीज, और वो ये कि मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में,
0: क्योंकि मैं कर पाई। इवन स्टेप बैक में तो मैंने अपने आप
1: डिसाइड किया, मैंने तो किया अपने आप, सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे करना है, एंड भले थोड़े दिन अटेंशन से करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम वेरी इजी टू डू, कि देन वी विल रियलाइज कि परिस्थिति नहीं क्रिएट कर रही है, ये सारा जो हम क्रियोस क्रिएट कर रहे थे, ये जो मैं अभी तक शोर मचा रही थी इस तरह से, ये मैं खुद ही बना रही थी, परिस्थिति तो वैसे की वैसे है। एंड धीरे धीरे वो रियलाइजेशन, जो ज्ञान समझ में आ गया है कि परिस्थिति नहीं स्थिति क्रिएट करती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, वो परिस्थिति में हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। विल यू ट्राई टुमारो?
0: वेरी ट्रू।
1: यस, लेट्स डू 2 मिनट्स मेडिटेशन। इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आज सारा दिन जैसे जैसे मैं अपना रोल प्ले करते जाऊं, तो मुझे सिर्फ एक स्मृति रखनी है, मैं एक्टर हूं, ये मेरा रोल है, और मुझ एक्टर को इस रोल को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, और मुझ एक्टर की विशेषता है, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूं, और इस शक्ति के साथ मैं हर रोल प्ले करने वाली हूं आज, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मेरे चारों तरफ कुछ भी हो जाए आज सारा दिन, आई एम अ पावरफुल बींग, आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन। जैसे ही मैं ये परिस्थिति में ये स्मृति रखती हूं, तो परिस्थिति छोटी होती जाती है। जस्ट वन थॉट टू टेक विद मी टुडे द होल डे, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, एंड आई एम मास्टर ऑफ एवरी सिचुएशन, परिस्थिति मेरी रचना है। अगर आप सुबह कुछ देर, ये तो हमने बहुत, but this is a conversation, this is a mental programming that I am doing. Now I will do this again tomorrow morning. And कल की अपने दिन को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि नॉर्मली पता होता है आज सारा दिन में क्या क्या सीन्स आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड अपने आप को उन सब सीन्स में देख लीजिए ऑलरेडी, कि यू आर गोइंग टू रिमेन स्टेबल। सो दिस इज अ सीन, यू नो दिस इज अ सजेशन व्हिच आई एम ऑलरेडी टेलिंग माई सेल्फ, कि दिस इज योर कैपेसिटी, तुम ये कर सकते हो, क्यों, बिकॉज यू आर अ पावरफुल बींग। लेकिन अगर मैंने अपने आप को थॉट दिया मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, that will be the result. The thought is creating destiny, right? So just the thought, I am a powerful being. Paristhiti is here, I am here. Paristhiti mere upar nahi, main apni sthiti se परिस्थिति को परिवर्तन करते हो. स्टार्ट द डे उन थॉट्स के साथ, और फिर जैसा हम हर बार करते हैं हर एक घंटे के बाद एक मिनट बीच में, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि थॉट्स फिर कई बार कहाँ कहाँ चली जाती है और फिर पता ही नहीं चलता. तो इसलिए बीच में रुककर कल एक ही थॉट लेते हैं सिर्फ, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ. और हर एक घंटे के बाद उसे एक ही थॉट को ही लेना है. लेट्स नॉट डू टू मच हार्ड वर्क. एक थॉट, आई एम अ पावरफुल बींग, वो एक थॉट मुझे सारी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाता है बिल्कुल. सो लेट्स ट्राई दैट आउट
0: टुमारो, एंड वी शुड ऑल ट्राई एक्चुअली. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच आज जो हमने बात की, और यहीं से पॉजिटिव थिंकिंग क्या पॉजिटिव लाइफ शुरू हो सकती है, यू नो, क्योंकि यहीं से थॉट जो है वो मेरी पॉजिटिव डेस्टिनी बनता जाएगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: कोई सवाल कोई बात आपके पास है, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन जिस पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस पर हम चल रहे हैं वो हमारा अपना अनुभव हो सकता है. हर रोज का अनुभव, हर रोज का होमवर्क हमें मिल रहा है जो कि हमें एम्पावर करेगा, हमें वो खुशी देगा जिसे हम शायद सिचुएशंस में भूलते जा रहे थे, उसके अंदर सक्ड इन होते जा रहे थे. तो अब हम सिचुएशन से ऊपर हो जाएंगे, ये हमें एक एश्योरेंस मिल रही है. आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे. इजाजत दीजिए. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नकली तोड़ा मारा था, असली तोड़ा हमसे सुनो।
1: सही काम तो सही तो सही काम तो सही तो सही काम तो सही तो

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। जिंदगी साथ तय करते करते ऐसे लगता है कि हमारा और आपका एक परिवार बन गया है। ऐसे में कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आती है या कभी ऐसा लगता है कि कोई अड़चन है, तो फिर हमारे लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाती है और साथ मिलकर इस ज्ञान को जिसे हमने जान लिया है उसके आधार पर उसका सोल्यूशन, उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इस जीवन में हमारी बहुत सी ऐसी आदतें हैं, कई आदतें अच्छी होती हैं और कई आदतें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि हमारी मजबूरी बन सकती हैं। अगर वो आदत हमें ना भी हो तो हमारे किसी अपने की वो आदत हो सकती है जिसे हम दूर करना चाहते हैं ताकि वो मजबूरी ना बन जाए। आने वाली कुछ कड़ियों में हम इन्हीं आदतों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये आदत जब हमारी मजबूरी बन जाती है तो उसे क्या हम दूर कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञान हमारी मदद कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारी हमसफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत का कि जब हम आम जिंदगी जी रहे हैं, कई चीजों की हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि हर रोज करते करते दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है, तो लेकिन देखा गया है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उन आदतों को हमारी मजबूरी हम मान लेते हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चल पा रहा होता, तो तब हमें परेशानी लगती है। अगर हम इन आदतों के बारे में सचमुच में जानने की कोशिश करें तो कौन सी हैं वो आदतें जो हमारी मजबूरी में बदल सकती हैं?
1: मूल रूप से जो आप बात कर रहे हैं उसमें जब आमतौर पर हम सोचते हैं, मनोविज्ञान के विषय में जब सोचते हैं, तो अधिकतर एडिक्शन है, व्यसन है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़े दिन भी शराब पीने लगता है और फिर एक दिन शराब न पिए तो उसे जो तकलीफ होती है ना, उसको हम आमतौर पर एडिक्शन कहेंगे। जैसे ड्रग्स भी है, बहुत सारे ड्रग्स है कि जिसकी भी एक मजबूरी हो जाती है, परंतु छोटी छोटी बातें भी,
0: इवन स्मोकिंग, निकोटीन का जो है उसे भी व्यसन माने। ये मोटे मोटे तौर पर है, अगर हम सूक्ष्म
1: सूक्ष्म बातों पर अगर हम सोचे तो चॉकलेट्स खाने की आदत हो सकती है, आज कहीं है नहीं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि भी भोजन के बाद मैं मीठा नहीं खाऊं तो मुझे नहीं चलता है, भी रोज रात्रि के भोजन के बाद कोई मीठी डिश खाने की इच्छा होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वह भी एक प्रकार से देखो तो एडिक्शन। ऐसे और बातें भी हो सकती है, जैसे कि किसी को गुस्सा करने की आदत हो जाती है, छोटी सी बात को लेकर के भी वो गुस्से में आ जाते हैं, या तो दे वुड नो स्टार्ट फाइटिंग। आज यूथ में देखो, बच्चों में देखो, तो छोटा सा कारण देख करके भी दे विल इनिशिएट फाइटिंग। व्हेन आई हैड सिमिलर थिंग व्हेन आई वाज स्मॉल, तो अभी जब बड़ा हुआ सोचने लगा, मनोविज्ञान को पढ़ा, फिर इसके बारे में सोचने लगा, तो पता चला कि सचमुच देयर वाज समथिंग रॉन्ग। और बच्चों की गलती नहीं होती थी, स्टिल आई विल इनिशिएट फाइट एंड एंजॉय इट।
0: अच्छा, एंगर को एंजॉय करने लगते हैं। एक्चुअली वही है एडिक्शन, जब हम एंजॉय करने लग जाए तो, या कोई भी आदत हम एंजॉय करने लग जाए जो नेगेटिव है, वो एडिक्शन बन जाती है।
1: हाँ, वो मतलब एडिक्शन की शुरुआत हुई है। और भी अगर आगे बढ़े और वो बात न हो और फिर अगर आपको तकलीफ होती है, हाँ, अंदर में आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, सर भारी हो गया और कई बातें भी, तो सचमुच कहेंगे कि एडिक्शन हो।
0: बिल्कुल डॉक्टर पटेल, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, कई ऐसी आदतें हैं जो हमारी एडिक्शन बन सकती हैं। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, सिस्टर शिवानी, जिंदगी जीते हुए आज हम जिस अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, एक्चुअली ये आदत जब व्यसन की तरफ या मजबूरी की तरफ बढ़ रही होती है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड अस?
2: आई थिंक थिंकिंग, क्योंकि हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं, हम एक थॉट क्रिएट करते हैं जो एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, हमने एक संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि उसको परखती है, निर्णय देती है और फिर वो एक्शन में आता है, और जो एक्शन में आ गया वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, और बार बार जब अब वो हमने कर्म किया तो वो एक संस्कार बन जाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि हम इतनी बार वो कर्म को रिपीट करते हैं, वो हमारे संस्कार इतना डीप रूटेड हो जाता है कि इंटेलेक्ट उस पर अपनी जजमेंट देना बंद कर देती है, तो इट्स लाइक अ गेट जिसको हम बाईपास कर जाते हैं कि थॉट आया, इंटेलेक्ट ने उस पर अपना डिसीशन नहीं दिया कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कई बार डिसीशन दिया था लेकिन हमने उसको बाईपास कर दिया, तो अब वो जिसको हम कहते हैं कि वो आवाज जो अंदर से आती थी वो आनी बंद हो गई, बट इट्स बेसिकली वो विवेक, वो अब काम नहीं कर रहा, तो थॉट क्रिएट हुआ और सीधा कर्म में आ गया। एंड फिर वापस उसका इम्प्रेशन पड़ गया, तो ये एक बहुत डीप रूटेड साइकिल चलता जाता है,
0: जिसे हम कहते हैं जहां कहीं ना कहीं हमारी विल पावर जो है, विल
1: पावर से माने बन कर ना, शी माइट आल्सो एग्री कि संस्कार बुद्धि को सप्रेस भी करते, या तो कहेंगे कि उसको मोटिवेट करते कि यही करो, जैसे चॉकलेट खाने की आदत की बात कही, तो अगर संस्कार हो गए तो वो संस्कार उसे अफेक्ट करेंगे, कहेंगे पुल करेंगे या पुश करेंगे,
0: चॉकलेट अगर दिख भी नहीं रही
1: तब भी याद आएगी, और थोड़ा भी क्लूज भी मिल जाए, कहीं रैपर भी दिख गया चॉकलेट्स का, तो उसे याद आ जाएगा कि मुझे चॉकलेट्स खानी है,
0: एंड देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर
1: इट। इवन बुद्धि भी, एक बार अगर ये हुआ आपने किया तो बुद्धि को भी उसी प्रकार का जजमेंट लेने की, बुद्धि है ना वेइंग स्केल जैसी है कि जिससे हम माप करते हैं भी कितना वजन है, तो बुद्धि फिर जो वे करती है ना वो भी नेगेटिवली करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आदत हो गई कैडबरीज खाने की, तो बोले मेरा वेट बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से तो बुद्धि में कि भी वेट बढ़ रहा है, मैं कैडबरीज खाऊंगा वेट और बढ़ेगा, परंतु तब अगर ये आदत हो गई है तो बुद्धि कहते नहीं नहीं खा लो, और चीजें सोचेगी कि अरे इससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा कुमारी में भी जब मैंने इनिशिएशन लिया तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जो सारा खेल है वह है मन बुद्धि और संस्कार का खेल है, अगर तीनों को ठीक से आपने मैनेज नहीं किया तो इसे बहुत सारी चीजें जो मजबूरी में परिवर्तन हो जाएगी।
0: डॉक्टर पटेल, अगर हमने अभी मोटे मोटे तौर पर हमने बात की है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यसन का या मजबूरी का या एडिक्शन का रूप ले सकती हैं, अगर और डीप में जाएं तो क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? चॉकलेट की कैसी बात, क्योंकि अभी तक हम जनरली ये सोचते थे कि स्मोकिंग, निकोटीन का जो इंटेक है, स्निफिंग करना या ड्रग्स, ड्रिंक्स या इवन गुटखा, यही है जो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यू नो फिजिकली कर रही हैं, तो वही है जो एडिक्शन है। आगे इसके डीप और हमारी जिंदगी में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एडिक्शन का रूप ले सकते हैं।
1: और जैसे सिंपल सी चीजें जिसे हम आमतौर पर एडिक्शन नहीं मानते हैं, वह है चाय कॉफी। आज कॉफी को तो मेडिकल साइंस में भी बोलने कि उसके फायदे हैं, टीस के बेनिफिट्स भी डिस्कस करने लगे, बट मैं सोचता हूँ कि भी थोड़ा सा तो ठीक है, परंतु ये कंपनीज ज्यादा मोटिवेट करती है, जो रिसर्च आ रही है ना अधिकतर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ये माइंड सेट होता है कि मैम ये प्रूव करना है कि भी कैफीन अच्छा है,
0: रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमें जा रही है। बिल्कुल,
1: क्योंकि जो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करनी है इसके लिए अधिकतर वो रिसर्च देते हैं, अदरवाइज इट्स अ प्रूवन फैक्ट उसकी आदत होती है।
0: इनफैक्ट ये बिना सोचे ही हम वो कॉफी का कप उठा लेते हैं, चाय का कप उठा लेते हैं और पीने लगते हैं,
1: और अगर नहीं मिला
0: तो सर में दर्द,
1: एक घंटा भी नहीं हुआ सर दर्द, पाल्पिटेशन होने लगेगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और हार्मफुल इफेक्ट्स आर नोन टू एन एक्सटेंड एटलीस्ट, कि भी वो एसिडिटी क्रिएट करेगी, एक स्पिंक्टर होता है इसोफेगस और पेट के बीच में एक द्वार है जिसको लूज कर देती है, तो एसिड आएगा और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होगा जिसको आमतौर पर हम एसिडिटी कहते हैं। आज बच्चों में भी गुटखा सिंपल चीज नहीं है, आज आमतौर पर यही सोचते हैं कि भी सरल सी चीज है, उससे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, परंतु कॉलेज के विद्यार्थियों में ऑलमोस्ट 70% है उनको इसका व्यसन होगा।
0: डॉक्टर पटेल, एक और एस्पेक्ट हम बात करना चाहते हैं कि ये तो हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे, कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी आदतें पड़ चुकी हैं, आजकल ये देखा गया है टेलीविजन की एडिक्शन है, कंप्यूटर्स की एडिक्शन है, और वो भी अब वो एडिक्शन है या क्योंकि वो कंटिन्यूस बैठे रहते, अगर कंप्यूटर नहीं कर पा रहे तब मुश्किल है, टेलीविजन के वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे तब भी, मैंने देखा है कि विमेन जो सीरियल देखती हैं अगर एक एपिसोड छूट जाता है तो देयर इज अ हेडेक, तो ये भी सारे क्या एडिक्शन में है?
1: बिल्कुल, दो दिन पहले ही एक नौजवान था जो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ तब तक मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे और कोई काम दे दे कि ऑल ऑफिस वर्क करो तो मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो दिस इज एडिक्शन। इनफैक्ट सिर्फ इंटरनेट का ही नहीं, इंटरनेट का एडिक्शन तो बहुत कॉमन है कि सारा दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहेंगे, अगर थोड़ा भी उन्हें मौका नहीं मिला तो सर दर्द हो जाएगा, इरिटेशन होगी, नींद नहीं आएगी।
0: सिस्टर शिवानी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, जब हम बात कर रहे हैं जागरण की आज, तो अब ये सारी बातें अगर हम बात देखें तो चॉकलेट खाना तो मैं मान ही लेती हूँ कि ये आदत है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझ सकती हूँ, कैसे मैं ये जानूँ कि मेरी जो आदत है ये मेरी मजबूरी बनती जा रही है? हाउ कैन आई डू इट विद अवेयरनेस?
2: जिस क्षण हमें ये लगने लगे कि इसके बिना अब हम रह नहीं सकते,
3: सर में दर्द हो रहा है या कोई फिजिकल
2: नहीं, इवन इंटरनली यू नो वो खींचती है वो चीज मुझे, फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका सर दर्द या बॉडी में जो भी परिवर्तन आए वो तो फिर दूर की बात, लेकिन संकल्प मेरा जिस तरफ जाता है, अगर जैसे कंप्यूटर का एडिक्शन है, अब दूसरा काम करने बैठे हैं लेकिन थॉट इज गोइंग बैक टू द कंप्यूटर, तो एडिक्शन पहले तो संकल्प लेवल पर आएगी ना, तो हम कर एक चीज रहे हैं लेकिन माइंड उस पर ना कॉन्सेंट्रेट होकर दूसरी चीज की तरफ वापस खींचता हुआ जा रहा है जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती, सपोज चाय या जो भी चीज इस तरह से जो लैकिंग है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा माइंड उस तरफ ही खींचता जाएगा, तो आई कम टू नो यू नो आई एम अडिक्टेड टू समथिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड मेरे को लगता है सबसे डीपेस्ट लेवल ऑफ एडिक्शन होगा थॉट लेवल पर, इवन हम अडिक्टेड है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंकिंग के, इसी तरह से सोचना है, जैसे हमने देखा नेगेटिव सोचना, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव यू नो रिस्पॉन्स क्रिएट करना, तो वो भी तो एक अडिक्शन है, तो इसीलिए लोग कहते हैं हम सोचना चाहते हैं पॉजिटिव फिर भी पॉजिटिव संकल्प आता ही नहीं है, या एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करना, जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लूं
3: मुझे लगता है नहीं कि,
2: या सपोज मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए तो मुझे उन्हीं के साथ शेयर करना, दैट मीन समवेयर आई एम अडिक्टेड इवन टू रिलेशनशिप्स, यू नो कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये यू नो इनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, आई कैन नॉट मैनेज विद द रिलेशनशिप बट देन आई कैन नॉट मैनेज विदाउट द रिलेशनशिप ऑल्सो, सो दैट समवेयर दैट इज एन अडिक्शन के साथ भी नहीं चल पा रहे, यू नो संबंध बना के भी नहीं चल पा रहे, लेकिन
1: इसमें बहुत एक बार अच्छी दो बातें मेरे ध्यान में आई, एक तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम आमतौर पर कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट में कहा गया, सारी एक पूरी किताब इस पर लिखी गई है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम पहले करो, तो जब हमें एडिक्शन होने लगा है तो वह प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकेंगे, नहीं, आपको पता है कि भी अभी मुझे ये फोन करने की जरूरत है लेकिन तब भी आप इंटरनेट को खोल के बैठे हैं, या तो और कोई भी ऐसी ही बात कि जो शो करते हैं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम नहीं कर रहे। शिवानी बेन ने साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत अच्छा बताया कि अगर हमें किसी की क्रिटिसाइज करने की भी आदत होगी तो नहीं, जब तक आप उस व्यक्ति की टीका नहीं करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढ निकाल, हाँ कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि आप मन में तो टीका नहीं करेंगे, आप व्यक्ति को ढूंढेंगे कि ऐसा कोई मिल जाए तो जो उसको आपके जाके बात करे, उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव कुछ चर्चा करने लगे, तो यह भी एक व्यसन हो जाता है। तो बड़ी सूक्ष्म बात है,
0: बहुत डीप लेवल पे चली जाती है डॉक्टर पटेल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैं चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चाय पीना, ठीक है आदत है मेरे को, नहीं पीती तो सर में दर्द हो जाता तो कोई बात नहीं मैं पी लूंगी, चॉकलेट खाना अच्छा लगता है या कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, वो आदत है मेरी, हैबिट होना कोई मैं मानती हूँ या बहुत से हम में से लोग ये मान के ही चलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, गलत हो गया, कितना हैजार्डस है। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड,
1: पहले भी तो अगर सपोज आदत भी है, चलो मान ले कि वे एडिक्शन नहीं है, आप कहते हो अच्छी आदत है, परंतु फिर भी आपकी एफिशिएंसी तो कम हो रही है कि जब कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो उस समय जरूरत है कि भी और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और कुछ क्रिएटिव थिंकिंग आपको करना चाहिए और फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए, और अगर आप उस समय आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो गई, तो उस रीति से तो देखो हैजार्डस है ही है,
3: फोन पे बात करने के
1: एडिक्शन हो जाती है, कितना टाइम वेस्ट हुआ,
2: एसएमएस सारा दिन करने की
1: तो कितना टाइम, यहाँ पर ये देख, क्योंकि ना टाइम ऐसा रिसोर्स है कि जो कोई भगवान भी नहीं दे सकता, आम तौर पर भी कि हम सोचते मैं सारा समय बिजी हूं, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं, परंतु हमने सही समय पर सही काम नहीं किया, राइट थिंग एट अ राइट टाइम,
2: आई थिंक, एंड इट्स आल्सो दैट हम अपने ऊपर अब मास्टरी नहीं है, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जब कोई एक बाहर की चीज हमें अपनी तरफ इतना खींच सकती है कि हम रोकना चाहे फिर भी नहीं रोक पाते, दैट मीन्स मेरा अपनी कर्म इंद्रियों पर अब सेल्फ कंट्रोल जो हम कहते हैं, राजयोग हम इसीलिए कहते हैं ना, स्वयं पर राज्य करने की शक्ति, तो वो राज्य करने की शक्ति खत्म हो गई है, एक चॉकलेट ही मेरा स्वराज्य खत्म कर देती है,
0: आई विल डू व्हाट आई वांट बट देन वांटिंग शुड बी अगेन यू नो नॉट डिपेंडेंट ऑन माय संस्कार,
2: एब्सोल्युटली, मतलब हाँ चॉकलेट खाना वो गलत नहीं है या कॉफी पीना वो गलत नहीं है, लेकिन जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊं उसको करने से, या कुछ और कर रही हूँ फिर भी मन उस तरफ खींच रहा है, तो मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मुख मेरे कंट्रोल में नहीं है कि पता है नहीं खाना फिर भी मुंह में डालना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स आई एम टोटली अ स्लेव टू whatever that habit.
1: और एक बात है और भी सूक्ष्म है, जैसे आपने कहा कि भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है कि भी मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं चाय पी रही हूँ और ये हार्मफुल भी नहीं है, परंतु आप आपकी ये जो आदत पड़ रही है और चीजों में भी होगी, जो कहेंगे कि माइंड पावर आपका कम हो रहा है, आज तो चाय की बात,
0: आज आपने एक को दे दिया, हाँ, एक
1: कल और कोई नेगेटिव विचार आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि एक डिप्रेसिव थॉट आ गया, तो अभी आपने तो मन को तो कंट्रोल किया ही नहीं है, तो डिप्रेसिव थॉट आपका चलता रहेगा, वो सारा दिन उसमें बर्बाद कर देगा, इवन फिजिकल डिजीजेस कर देगा अल्टीमेटली. सुनो, इट्स स्मॉल थिंग इज ऑल्सो डेंजरस, इसीलिए कहा गया है कि भी हमें सब कुछ अवेयरनेस के साथ करना.
0: बिल्कुल, कई बार ये देखा गया है पेन के भी ऑब्सेसिव हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं. आई नो समबडी, एक थॉट को लेके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 3 दिन उनके निकल जाते हैं, क्योंकि आई थिंक वो कोई नहीं भी हो चीज तभी उन्हें आदत पड़ जाती है कि विक्टिम बनने की जो आदत होती है. दिस इज ऑल्सो आई थिंक पार्ट ऑफ
1: नो एंड देन दे एंजॉय. आगे चल के तो ये होता है कि भी अगर उन्हें कोई दर्द ना हो, किसी ने उनको दुख नहीं दिया है, तो फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं,
0: सेल्फ इन्फ्लिक्शन हो जाता है,
2: खुद को देना शुरू करेंगे ना शायद,
1: या तो ढूंढेंगे फिर क्यों नहीं हो रहा है. जैसे एडिक्शन वाले को चीज न मिले तो कैसे वह तकलीफ महसूस करता है, सर दर्द होगा, पाल्पिटेशन होगा, तो ऐसे जिनको ये भी आदत हो गई है कि भी कुछ ना कुछ दुख होना ही चाहिए, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, संबंधों की पीड़ा हो, और वो उनको अगर ऐसा मौका नहीं मिला सोचने का, बातें करने का, तो दिक्कत होने लगी,
0: तो किसी और की पीड़ा को लेके वो जीने लग जाते हैं, फिर साथ साथ किसी और का साथ
2: टेंशन करने की आदत पड़ जाती है.
0: टेंशन अच्छी होती है, मैं टेंशन में हूँ तो मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा, तो इसलिए हर बार टेंशन क्रिएट करूंगा.
2: कुछ लोग कहते हैं इस बात की टेंशन है कि आज कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन भी मतलब वो होनी चाहिए कंटिन्यूअसली माइंड.
1: दिस इज अ डीप साइकोलॉजी इनफैक्ट, कि अगर ऐसी आदत हो गई किसी को तो फिर वह समस्या क्रिएट करेगा. जैसे ना आपने कोई काम दिया तो ठीक से नहीं करेंगे, ताकि आप उसको डांटो, जब उसे डांट पड़ेगी तब उनके लिए अच्छा है, या दे आर विक्टिम.
0: एक्चुअली यू नो, अगर हम डीप में जाते हैं डॉक्टर पटेल, तो मतलब हमारे दिमाग के भी ऐसे पर्दे खुलते जाते हैं कि कितना हम किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. बात ये हम जानना चाहेंगे कि देखिए, जो बड़े बड़े व्यसन है, चाहे हम स्मोकिंग की बात करते हैं या जो फिजिकल लेवल पे सामने दिखते हैं, उनके लिए तो डीएडिक्शन के बहुत सारे कैंप्स और बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं. डीप रूटेड लेवल पर एक्चुअली सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करता है?
1: इसका डीप लेवल का सबसे पहला तो स्टेप जरूरी है, वह है सजगता, कहेंगे अवेयरनेस. शिवानी बेन ने भी जो कहा ना कि वो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आप उसको वहां जब शुरू हो रहा है, छोटा सा पौधा आगे बढ़ रहा है, पहचान ही नहीं पाएंगे. तो मैं समझता हूँ सबसे पहले यह जरूरी कदम है कि मेरे शरीर में क्या फीलिंग्स हो रही है, मुझे विचार क्या आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम सजग हो जाए. सजग हो और साथ में उसको हम वॉच भी करें,
0: देख पा रहे हो, साक्षी बन जाएं.
1: वॉच करना पड़ेगा कि भाई क्या है वो,
0: ये आया, ये
1: अच्छा है या नहीं है. नहीं, जैसे आगे भी मैंने कई बार कहा है, वॉच और मैच भी करना है. नहीं, वो दोनों स्टेप्स आवश्यक है. वह प्राइमरी स्टेप्स लेंगे तो इसको ढूंढना सहज होगा.
0: ये तो बात हुई कि हम अवेयर हो गए, क्रिएट हो गए. उसके बाद, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब भी कोई बात कर रहे हैं, जब भी किसी समस्या की बात कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना जरूरी है. कैन द एडिक्शंस बी कंट्रोल्ड, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी? क्योंकि यही एडिक्शंस ही कहीं ऑब्सेसिव कंपल्शन भी बन जाती हैं, जो बड़ी बीमारी मानी जाती है, साइकेट्रिक या एक छोटी चाय पीने से लेकर शुरू करके. ये पूरा जो एक प्लेटफॉर्म, पूरा जो एक हम देखते ग्राफ बनता है, क्या छोटी से छोटी ऑब्सेशन से लेकर बड़ी से बड़ी ऑब्सेशन सॉल्व की जा सकती?
1: नो, डेफिनेटली आंसर इज यस. और जितना जल्दी आप स्टेप्स लेंगे वह सहज होगा. शुरू में कितना ना बड़ा एडिक्शन हो, शुरू में अगर आपने समझ लिया तो उसे कंट्रोल करना इजी है. जब वह जैसे ही फर्म बनता जाएगा, फिर हो सकता, फिर भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है. कितना ना बड़ा एडिक्शन हो, हीरोइन का एडिक्शन है, ब्राउन शुगर का एडिक्शन है, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर प्रॉपरली हम सिस्टमेटिकली उनके साथ वर्क करते हैं, डॉक्टर भी करे, व्यक्ति खुद एफर्ट्स करे, फैमिली मेंबर्स भी उसमें सपोर्ट देते हैं, कुछ हद तक आध्यात्मिकता को भी अपनाया जाए, तो सब कुछ मिला करके बड़े से बड़े एडिक्शन से भी व्यक्ति 100% बाहर निकल सकता है. और वही लक्ष्य होना चाहिए.
0: सिस्टर शिवानी, स्पिरिचुअली अगर हम देखें कि आज जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, इट हैज रियली हेल्प्ड इन लॉट मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. अवेयरनेस जहां तक बात हुई है, एक कनेक्शन से जुड़ते गए हैं. ये जो ऑब्सेशंस हैं, पहला पहचानना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सजगता, तो क्या मेडिटेशन विल क्रिएट दैट अवेयरनेस इन मी? एंड सेकेंड इज क्या सॉल्यूशंस की तरफ जाने की जो मेरी विल पावर है, जो जो संकल्प शक्ति है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है.
2: मेडिटेशन करने से क्या होता है, हम अपने संकल्पों के लिए अवेयर है. पहले क्या हो रहा था, क्या चल रहा है सारा दिन, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था चल रहा है. और हमें ये भी पता है कि दिन में 25-30-40,000 थॉट्स क्रिएट हो रहे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है. अब जितना जितना हम कॉन्शियस होने लगे हैं कि ये अंदर का प्रोसेस क्या है, तो हम अवेयर है, हाँ ये मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है, ये राइट है या ये गलत है, ये भी अवेयरनेस आ गई है. इसलिए कई बार अब लोग कहते हैं मेडिटेशन हमने करना शुरू किया तो लगता है गलत थॉट्स ज्यादा आ रही है, बट एक्चुअली गलत थॉट्स ज्यादा नहीं आ रही होती है. इट्स जस्ट दैट पहले हम देख नहीं रहे थे, अब क्योंकि उसकी तरफ देखना शुरू किया तो लगता है ये तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, बट विच इज अ गुड साइन, क्योंकि जहां हम उसको देखना शुरू करेंगे तो वो फिनिश भी होने लगेगा. तो अगर ऑलरेडी कोई एडिक्शन नहीं है तो अब आगे तो नहीं होगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि नाउ यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स. तो जहां थोड़ा भी आपको पता चलेगा कि आपका माइंड किसी चीज के साथ जुड़ता जा रहा है, आप तुरंत से अपने आप को उसके से विड्रॉ कर लेंगे. और अगर ऑलरेडी कोई है एडिक्शन, ऑलरेडी हमें किसी चीज की बहुत स्ट्रांग आदत पड़ गई है, अब अगर हम डिसाइड करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज इफ आई चूज कि मुझे उसको फिनिश करना है, तो मेडिटेशन से विल पावर बहुत बढ़ जाती है. जो चीजें इम्पॉसिबल पहले लगती थी वो बिल्कुल सहज पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि विल पावर है. और आत्मा को जब स्मृति आ गई कि मैं मालिक हूँ एंड दीज आर ऑल अंडर माई कंट्रोल, वो एक कॉन्शियसनेस ही बहुत सारी चीजों को सहज कर देती है. और फिर जैसे सारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल हेल्प, अगर बहुत सिवियर एडिक्शन है, बट मेडिटेशन से विल पावर बहुत बढ़ती है, करना बहुत ईजी हो जाता है.
1: मेडिटेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम वो निर्णय करें, वह निर्णय में भी मेडिटेशन बहुत मदद करता है, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने आप को क्लियरली देख पाते हैं. यानी पानी भी जब नहीं हिल रहा है तो आप अपना इमेज क्लियरली देख पाते हैं. तो जब मेडिटेशन में आपका मन शांत होने लगता है तो वो शांत मन अपने आप को स्पष्ट रूप से देख पाता है कि मेरे में कौन सी कमियां हैं, छोटी सी भी कमी, कि भी छोटी सी भी कमी को मैंने देख लिया कि भी नेगेटिव सोचने की आदत होगी. आज मेरे एक मित्र है कि जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना तो उसे तकलीफ होती है. ही इज वेरी गुड इन फैक्ट अदरवाइज, क्वाइट सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं कहा एक बार कि भी मैं देख लेता हूँ कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो मुझे जलन होती है. और वो मेडिटेशन में पता चला, आमतौर पर हमें पता ही नहीं चलता है,
0: क्योंकि हम तो हमेशा परफेक्ट होते हैं, हमेशा विक्टिम है, हमेशा ये है कि दूसरा ही गलती पे है. डॉक्टर पटेल, हमने ये भी देखा है अक्सर कि जब हैबिट हो जाती है या व्यसन, जो फिजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, तो उसमें अगर वो नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस बहुत हो रहे होते हैं. सो क्या वो मेडिटेशन के द्वारा उन केमिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी कंट्रोल किए जा सकते हैं?
1: वो भी अल्टीमेटली होंगे. अल्टीमेटली अगर आप अच्छे से मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो केमिकल्स, इवन नर्व्स पर जो इफेक्ट हुई है, वह नर्व्स पर हुई नेगेटिव इफेक्ट को भी आप कम कर पाएंगे. क्योंकि मेडिटेशन में जो बहुत अच्छी चीज है वह है एक्स्ट्रा सेंसरी ब्लिस, अति इंद्रिय आनंद जिसको कहे. जब अति इंद्रिय आनंद का हम अनुभव करते हैं तो वही स्थिति है
0: जो हम, जिसके लिए हम व्यसन कर रहे हैं एक्चुअली, जिसे हम मान रहे हैं कि हमें इनसे वो मिल रहा है.
1: हाँ, तो वह अति इंद्रिय आनंद में भी वही एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स आदि निर्माण होते हैं और उसके लिए एक पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट बन सकता है.
0: ओह दैट्स वंडरफुल एक्चुअली, कि वही केमिकल्स जो हमें कहीं ना कहीं उस आदत से मिल रहे हैं वो हमें मेडिटेशन से मिल पाएंगे.
1: और नेचुरल है.
0: हाँ, बिल्कुल, विद पॉजिटिव
1: और सही मात्रा में मिल रहे हैं. एडिक्शन से मिल रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं. और मेडिटेशन में जितना आवश्यक है उसी मात्रा में वो अपने ब्रेन के केमिकल्स, इसलिए सबसे अच्छा है.
0: बहुत सुंदर आपने बात, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमें मिल सकता है। सिस्टर शिवानी, कोई ऐसी बात एडिक्शन से जुड़ी हुई या व्यसनों से जुड़ी हुई जो कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस को और इंक्रीज कर सकती है, कहना चाहिए?
2: बस ये कि सारा दिन चलते फिरते, अब तो पहले थोड़े समय के लिए जस्ट ट्राई एंड इवैल्यूएट कि किन किन बातों से हमें एडिक्शन है, क्योंकि जहां हम एक प्रोसेस, एक जर्नी पर चल रहे हैं इन आदतों से मुक्त होने के लिए, तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किन बातों की आदत है। जैसे भाई साहब ने भी कहा, जेलसी, नॉट लाइकिंग somebody's सक्सेस, बहुत सूक्ष्म है। तो ये अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो हमें अपनी आदतें पता नहीं चलेंगी, इसके लिए थोड़ी सी सूक्ष्म चेकिंग, और उसके लिए अगर हम एक दो दिन भी अपने आप को ध्यान से चेक करें, मुझे लगता है हमें अपनी सारी आदतें पता चलती जाएंगी, एंड देन वी कैन बिगिन ऑन दिस जर्नी।
0: बिल्कुल, और हमने भी ये सफर शुरू किया ही है, अब सारी अपनी आदतों को जानकर उनको किस किस तरह से एक एक आदत को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शिवानी एंड डॉक्टर किरीश पटेल, थैंक यू सो मच, आगे बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। ओम शांति। सचमुच जब अपनी आदतों को देखने की कोशिश की तो नजर आया कि वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम सिर्फ आदत मान लेते थे या लगता था कि नहीं हमारे कंट्रोल में है, जब हमें नहीं मिलती है तो पता चलता है कि नहीं, कंट्रोल हमने किसी और के हाथ में दे दिया है, और वो कंट्रोल हमारी आदत के हाथ में हो सकता है। चाहे वो बड़े से बड़ा व्यसन हो या फिर सिर्फ चॉकलेट खाने की या फिर किसी से नाराज होने की या जलसी की आदत हो, ये सारी आदतें कहीं ना कहीं हमें डिप्लीट करती हैं उस खुशी से जिसे हम तलाश रहे हैं। तो आने वाली कड़ियों में जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन सभी आदतों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर कराते आते हैं, हर बार की तरह खुला निमंत्रण है आपके पास, स्वागत करते हैं। आप हमें खत लिखिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
4: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में ये मुलाकात यूं ही चलती रहेगी। आने वाले कुछ कड़ियों में इन सभी हैबिट्स, इन सभी एडिक्शंस या आदतों को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके जानेंगे। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: आजादी के संघर्ष के पन्नों पर अंकित इतिहास के आख्यानों में रानी अवंतीबाई का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

नेतृत्व में एक विशाल सेना को अवंतीबाई से युद्ध करने के लिए भेज दिया। अंग्रेजी सेना को एक बार फिर महारानी की तलवार की ताकत का अंदाजा हो गया। अपनी हार के कलंक को माथे से मिटाने के लिए अंग्रेज सेना ने महारानी पर कई हमले किए, मगर हर बार उन्हें शिकस्त ही मिली। रानी का अंग्रेजों के साथ आखिरी मुकाबला अप्रैल 1858 में देवागढ़ की पहाड़ियों में हुआ, जहां अंग्रेज सेना ने उन्हें तीन तरफ से घेर लिया। बहादुरी पूर्वक जूझते हुए रानी अंग्रेजों का मुकाबला कर ही रही थी कि पीछे से अंग्रेज समर्थक रीवा राज्य की सेना ने भी रानी पर हमला बोल दिया। चारों ओर से दुश्मनों से घिरी वीरांगना को जब जीत की कोई उम्मीद न दिखाई दी तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना रक्ताभिषेक करके प्राण त्याग दिए। रानी के शहीद होने के बाद अंग्रेजों ने सुहागपुर रीवा महाराज को इनाम में दे दिया और इस तरह इस देश के उच्च कोटि के राष्ट्रभक्तों में एक नाम और जुड़ गया।

0: राम राम काका।
1: हाँ राम राम राम राम। आओ बेटा आओ आओ।
0: जिंदाबाद काका।
1: अरे हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद।
2: छोटू बेटा जरा यहाँ संभाल तो, और चाय लगा भैया लोगों के लिए, मैं उनके पास ही बैठता हूँ, जरा बात भी करनी है, खास लोग हैं मेरे।
3: हो काका हो, मैं देखता हूँ।
2: चल दिनेश चल, तू भी चल, तुझसे मिलवाता हूँ, अच्छे लड़के हैं, नाटक करते हैं, आजकल स्वतंत्रता संग्राम पर बड़े अच्छे नाटक कर रहे हैं।
4: अच्छा काका, तो तुम मिलना ही पड़ेगा, मैं तो समझता था कि इस नई नस्ल का मैं ही अकेला अगुवा हूँ।
0: आइए काका बैठिए।
2: अरे बैठो भाई, तुम लोग बैठो, खड़े क्यों होते हो, और सुनाओ कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो?
0: ठीक है काका, बस कॉलेज से छूटकर चले आ रहे हैं।
2: तो खूब पढ़ाई चल रही है आजकल?
0: खूब कहाँ काका, बस चल रही है, अपना मन तो आजकल नाटक की तरफ ही ज्यादा लगता है। वैसे काका उस दिन का नाटक अच्छा लगा?
2: बहुत मजा आया। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, इससे मिलो, ये दिनेश है मेरा भतीजा, कॉलेज में पढ़ता है, दो कदम आगे है अपन से।
0: अच्छा वो कैसे?
2: अरे हम तुम तो स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखते हैं, पर इसका तो काम ही ये है, पूरा ग्रंथ लिख रहा है उन पर, तो क्या कहते हैं उसे, हाँ पीएचडी कर रहा है।
0: पीएचडी? अरे वाह दिनेश भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो अभी किसके ऊपर काम कर रहे हो दिनेश?
4: रानी अवंती बाई का चैप्टर चल रहा है।
0: नाम तो काफी सुना है, शायद रायपुर विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है ना?
4: हाँ ठीक कहा आपने
0: भाई, तो आज तो कुछ सुने बिना नहीं छोड़ेंगे हम तुमको।
4: अरे मैं क्या सुना पाऊंगा?
0: अरे अवंती बाई के बारे में ही सुनाओ ना यार। अरे नहीं नहीं दिनेश भैया, कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा, ऐसे मामले में किसी को छोड़ते नहीं हम।
4: ठीक, पर मेरी भी एक छोटी सी शर्त है, आप लोग स्वतंत्रता संग्राम पर होने वाले नाटकों की खबर मुझे जरूर करेंगे।
0: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, काका का शौक देख के ये तो हमारे परमानेंट दर्शक बन ही गए, तुम्हें भी काका ही बता दिया करेंगे। क्यों काका?
2: अरे भाई हमेशा ही कहता हूँ कि मैं तो ऐसे काम के लिए डेढ़ पांव से आगे रहता हूँ।
4: असल में रानी अवंती बाई मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी, ये वो वीरांगना थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अवंती बाई मनकेड़ी गांव में पैदा हुई थी, यहीं अपने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। वो झुझार सिंह और कृष्णाबाई की बेटी थी, ये लोग लोधी जाति के बहुत संपन्न परिवार से थे।
0: वो रामगढ़ क्या शादी के बाद आई थी?
4: हाँ बिल्कुल ठीक, खरमेर नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है रामगढ़, यही अपने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। इसी गांव का राजा था विक्रमाजी, जिससे रानी अवंती बाई का विवाह हुआ था। दुर्भाग्य से बहुत कम समय में ही राजा की मानसिक हालत कुछ खराब हो गई थी, उस वक्त उनके दोनों बेटे बहुत छोटे थे, इस हालत में रानी को ही राज्य का कामकाज संभालना पड़ा। उधर अंग्रेज ताक में ही थे, वो रामगढ़ पर अपनी मोहर लगाना चाहते थे।
5: सर, the ball is in our court.

0: This is a golden opportunity to snatch away Ramgarh.
1: Yes, yes, it is. We must take away the charge of Ramgarh as soon as possible.
0: But how, sir?
1: Declare the God of Woods. Cheers!
2: रामगढ़ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित करके अंग्रेजों ने वहां अपना राज्य जमाने की कोशिश की। उन्होंने वहां अपना एक मैनेजर नियुक्त किया और उसकी मदद के लिए कुछ सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए। पर रानी को यह सब रास नहीं आया। पहले भी गवर्नर जनरल डलहौजी और उसकी हलप नीतियों के चलते बुंदेलखंड के जैतपुर और नागपुर पर कब्जा किया गया था। अब रानी ने मैनेजर को अपने राज्य से निकालने का पक्का फैसला कर लिया था।
3: हम अपने राज्य में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चलने देंगे, इसलिए अच्छा होगा जो आप हमारा राज्य छोड़ दें।
1: पर सरकारी फरमान के हिसाब से यह राज्य अब
3: राज्य हमारा था और मरते तब तक हमारा ही रहेगा।
2: रानी ने एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। रानी ने बिना देरी किए हरकारों को अपना संदेश देकर आसपास के राज्यों में भेज दिया।

0: महाराज की जय हो। रामगढ़ से हरकार आया है संदेश लेकर।
1: भेजो उसे।
2: महाराज को प्रणाम। मैं रामगढ़ से बाईजू रानी का पत्र लाया हूँ और साथ में ये
1: क्या है? पत्र लाओ यहाँ। यदि बंदिनी भारत माता के प्रति आप अपना कुछ कर्तव्य
3: समझते हैं, तो अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाकर युद्ध में कूद पड़िए, अन्यथा ये चूड़ियां पहनकर अपने घरों में छिपे रहिए।
4: अरे वाह, फिर
5: क्या था? चूड़ी वाले हाथों ने तलवारों को ललकारा था। जिन जिन राजाओं को रानी की चूड़ियां पहुंची, उनके हाथों में तलवारों की मुट्ठें आ गईं। रानी अवंतीबाई के आह्वान पर मध्य प्रांत में क्रांति की लहर दौड़ गई।

0: शाहपुर के शासक जगत सिंह ने नारायणगंज पर आक्रमण कर दिया। बहादुर सिंह लोधी ने शहरपुरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया और सलीमनाबाद में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इधर नर्मदा नदी के पूरे उत्तरी प्रदेश विद्रोह के लिए इकट्ठा हो गए और इनकी अगुवाई खुद रानी अवंतीबाई और विजय राघवगढ़ के शासक सूरज प्रसाद कर रहे थे। रानी ने मंडला पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेज सेनापति वॉर्डिंगटन खुद ही रानी से लड़ने आ पहुंचा।
1: ये तुम्हारा काम नहीं है रानी, तुम नहीं बचेगा हमसे।
2: बचेगा तो आज तू नहीं।
3: तो मर गया ना सेनापति वॉर्डिंगटन।
0: अरे किस्मत अच्छी थी उसकी, जैसे ही रानी ने तलवार चलाई उसका घोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया और तलवार घोड़े को लगी। वार इतना जबरदस्त था कि घोड़े की गर्दन जमीन पर आ गई। उसे देखकर वॉर्डिंगटन डर के मारे पीठ दिखाकर सैनिकों की भीड़ में गायब हो गया।
3: वाह, क्या ताकत रही होगी रानी में।
1: फिर तो पलट कर नहीं आया होगा वो।
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। रानी का वो हमला उसे बहुत खटक रहा था और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था।
1: इस बार रानी का घर पर हमला करेगा हम लोग। रामगढ़ को घेर लो पूरा।
3: बाईजू महाराज, एक बुरी खबर है।
4: क्या हुआ गुप्तचर, बोलो।
3: वॉर्डिंगटन अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ रामगढ़ की ओर बढ़ रहा है बाईजू महाराज।
5: रानी बहन, हम लोगों को जल्दी ही यहाँ से कहीं और निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लड़ने की तैयारी और वक्त दोनों ही नहीं है और लड़ाई अभी बहुत बाकी है।
4: ठीक कहते हो उमराव सिंह, हम यहाँ से निकल के देवहारगढ़ की पहाड़ियों में छिप सकते हैं। चलो।
1: कहाँ है रानी?
6: हुजूर, लगता है उन्हें पहले ही हमारे आने की खबर लग गई थी। वो अपने महल में नहीं है।
1: ओह डैम इट, पूरा रामगढ़ में आग लगा दो। डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। मूव मूव ऑल ऑफ यू।

0: रानी के नहीं मिलने पर फॉर्डिंगटन पूरी तरह बौखला गया था। उसने आसपास के रियासतों पर हमला कर उन पर अपना कब्जा कर लिया।
1: May I come in, sir?
2: Oh yes, Mr. Waddington. What's the news?
1: Sir, we have captured Patton, Sangrampur, Salimnabad, and Gugri.
2: But what? We must celebrate the success.
1: Sorry, sir. But my fight is not over till Rani Avantibai is alive.

0: और बस वार्डिंगटन अपनी सेना लेकर रानी की तलाश में निकल पड़ा।
1: रानी बहन, वो अंग्रेज हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया है। लगता है हम गिर जाएंगे।
2: कोई बात नहीं भैया, हम लड़ेंगे, तुम तैयारी करो।
1: लेकिन बहन, उनकी विशाल सेना और हम।
2: इसीलिए तो पहले हम ही हमला करेंगे। रात में हम छापामार युद्ध करेंगे, हमला करके गुम हो जाएंगे। और पहला हमला हम कल रात ही पहाड़ी के उस पार अंग्रेजों के शिविर पर करेंगे।

0: कुछ करो यहां से।
1: सर, रानी हैज डिस्ट्रॉयड अ लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड फार्मिंग देम। उसको पकड़ना ही होगा। दिस टाइम वी नीड अ ह्यूज ब्रिगेड।
2: ओके।

0: इस बार एक विशाल सेना के साथ अंग्रेजों ने रानी को देहारगढ़ की पहाड़ी पर घेर लिया।
1: रानी बहन,
2: हम घेर लिए गए हैं। यही ना, तो क्या हुआ? हम फिर भी लड़ेंगे, मरते दम तक, अपनी आन के लिए, देश की शान के लिए। आगे बढ़ो।
1: रानी बहन, हमारे सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
2: नहीं नहीं भैया, एक तो हम पूरी तरह से घिर गए, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, और शत्रु मुझे शायद जीवित पकड़ना चाहते हैं। उचित यही होगा कि मैं शत्रु के अपवित्र हाथों में पड़ने के बजाय स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं।
1: नहीं बहन नहीं, रुक जाओ, पहले अपने इस भाई को तलवार के जौहर तो दिखा लेने दो, मेरे बाद आप जो उचित समझे वो करें।
3: हुआ दिनेश भाई,
0: सचमुच ही उमराव ने प्रलय रूप धारण कर लिया। शत्रु की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया, लेकिन लड़ते लड़ते वो काफी आगे निकल गए और दूसरी तरफ रानी अकेली पड़ गई।
1: रानी बहन रुकिए, सुनिए, आप फिरने वाली है। नहीं, मैं क्या करूं, मैं आता हूँ।
4: अब तुम किधर छुपेगा रानी, अब तुम हमसे नहीं बच सकता। डोंट वरी, तुमको जिंदा पकड़ेगा।
2: तेरे अपवित्र हाथों से मरूंगी, तूने सोचा भी कैसे वॉर्डिंगटन?
4: Waddington ka salam kubool, Rani. I salute you. Apna saathiyo ka naam batao, Rani. Please, tell me the name. Bolo, Rani, bolo.
2: Is yuddh ke liye, akeli main hi zimmedar hoon, Waddington.

0: 20 मार्च 1858 का दिन था वो। एक और वीरांगना ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया।
1: सच में क्या जज्बा था, मजा आ गया दिनेश भाई। धन्यवाद नारी शक्ति की ऐसी मिसाल बताने के लिए।
2: बस अब जल्दी ही रानी अवंतीबाई के ऊपर नाटक करना पड़ेगा यार।
1: अरे अब निकलना पड़ेगा, घर पे मम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर भी हो गई है।
2: अरे चल चल यार, जल्दी उठ, जल्दी चल। ओके दिनेश भाई। अच्छा काका चलते हैं।
3: हाँ बेटा जल्दी निकल लो, वरना नारी शक्ति की एक मिसाल तुमको घर जाकर भी मिल जाएगी।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, ना कर तुम, तेरे कर तुम, ना कर तुम, हम तुम, लताफत, जीपाता, लताफत, पतापत, मेरा कस करामत,
1: पापे चिता, पापे चिता, पापे चिता, पापे चिता,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा, कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी ये
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
5: साधी भोळी माझी आई, सुखा जग कोसावली,
2: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांती।
1: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
2: थैंक यू।
1: आज मैं बहुत ब्लिस फील कर रहा
2: हूँ।
1: चार बजे सुबह उठा और मैंने कुछ भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया कि मैं ऐसी बुरी बात सोचता हूँ, मैं पुरानी बातें सोचता हूँ, भगवान मुझे मदद कर, मैं कितना बुरा हूँ, ये सब छोड़ दिया। मैंने कहा बस कि मैं आज पूरा दिन शांत रहूंगा, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैंने ये कहा बीइंग ब्लिस तो छोड़ दीजिए, आई सेड आई एम ब्लिस,
2: दैट इज ओनली बीइंग ब्लिस।
1: अच्छा,
2: बीइंग ब्लिस वी कैन लुक एट इट इन टू वेज। बीइंग ब्लिस मतलब बी ब्लिस, यू नो, बनो ऐसा बीइंग ब्लिस। लेकिन एक्चुअल जो उसका मीनिंग है, बीइंग हम आत्मा को कहते हैं, द स्पिरिचुअल बीइंग। जब कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, आज क्या हुआ, हम हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मींस बॉडी, ह्यूमन। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड ह्यूमस, मिट्टी। तो ह्यूमन एंड बीइंग, शरीर प्लस आत्मा, तो आत्मा को बीइंग कहते हैं। इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग हैं। आज हम ह्यूमन बीइंग के बजाय ह्यूमन डूइंग बन चुके हैं, डूइंग दिस, डूइंग दिस, डूइंग दिस। बीइंग क्या होना है, हाउ इज द बीइंग गोइंग टू बी, दैट वी डोंट नो। तो बीइंग ब्लिस मीन्स आत्मा ब्लिसफुल है, द बीइंग इज ब्लिस, दैट इज इट्स नेचर। आत्मा पीसफुल है, आत्मा ब्लिसफुल है, आत्मा प्योर है, दैट इज दिस बीइंग। तो अगर हम रोज सिर्फ ये एक थॉट भी सुबह क्रिएट करें, बीइंग ब्लिस, बीइंग पीस।
1: तो मैं हुई हूँ, अगर
2: मैं हुई हूँ
1: तो फिर मैं ऐसा हूँ क्यों नहीं,
2: क्या मैं एक्चुअली दिखता क्यों नहीं, वहाँ बात पर्सनालिटी में क्यों नहीं निकल कर आता।
1: मैं अगर हूँ जो आप कह रही हैं कि मैं ब्लिस हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरी क्वालिटीज हैं, तो फिर मैं दूसरा क्यों हूँ।
2: देखें, जैसे आपने ये जो व्हाइट कुर्ता पहना है, ये है ही व्हाइट ना, ये है ही व्हाइट। लेकिन सुबह जब तैयार होंगे तो ये है ही व्हाइट। लेकिन अगर रात तक मिट्टी में खेला, कोयले की खान में गए, कहीं कचरे के कूड़े के पास चले गए, फिर खाना खाते हुए ध्यान नहीं रखा अपने ऊपर, तो ये शाम को इतना व्हाइट नहीं दिखेगा। तब अगर आप कहें ये है ही व्हाइट, तो ये व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर रेड, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सब कहां से आ गया है। जर्नी, इट वॉज ऑन अ जर्नी फॉर द होल डे। लेकिन ये है ही व्हाइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एम क्लियर होना चाहिए कि इसका कलर व्हाइट है। अब भले इस पे कितने भी दाग लगे हो, जब मुझे ये क्लियर होता है कि ओरिजिनल कलर व्हाइट है, क्योंकि मैंने मालूम है ये व्हाइट है, अब दाग दाग दाग है, तो मैं जब दाग को हटा भी रहा हूं, मेरे अंदर लक्ष्य बहुत क्लियर है कि ओरिजिनल कलर क्या है। अगर मुझे ओरिजिनल कलर नहीं पता होगा, सी व्हाट विल हैपन, अगर हमें ये कुर्ता दिखे जिसपे बहुत दाग है लेकिन हमें इसका ओरिजिनल कलर नहीं पता हो, तो हमें साफ करते समय भी ये नहीं पता होगा कि हमें किसकी तरफ जाना है, कौन सा कलर चाहिए हमें इसके नीचे। मुझे क्या मालूम इस ड्रेस का ओरिजिनल कलर येलो था, क्रीम था, ऑफ व्हाइट था, लाइट ब्राउन था, कैसे पता चलेगा कि मेरा ओरिजिनल कलर क्या है। जो चीजें मैं आज ढूंढ रही हूँ, मांग रही हूँ, मुझे चाहिए, I'm not feeling that. Those are my original color.
1: मुझे पीस क्यों मांगना अच्छा लगता है, आई वॉन्ट पीस। मैं पीस के लिए मंदिर जाता हूँ, मैं पीस के लिए गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं पीस के लिए गुरुओं के पास जाता हूँ, मैं पीस के लिए योगा सीखता हूँ, तो आई रियली वॉन्ट पीस मेरे में आजकल।
2: What else do you want? Peace and?
1: शांति चाहिए बस।
2: शांति और? और जीवन में क्या चाहिए?
1: खुशी
2: चाहिए। ब्यूटिफुल, और क्या चाहिए?
1: पीसफुल एंड हैप्पीनेस बस, और
2: एनीथिंग एल्स?
1: उसी के लिए तो सारी जिंदगी ये सब किया मैंने।
2: सपोज आपको दुनिया से दूर एक जंगल में भेज दें, अकेले वहाँ बैठो,
1: वैसा वाला पीस नहीं,
2: वैसा वाला पीस
1: घर पे रहते हुए,
2: घर पे। और क्या फिर, लोगों से क्या चाहिए?
1: प्यार,
2: प्यार। सी, दिस इज द थर्ड इंग्रेडिएंट। सो पीस, हैप्पीनेस, लव, और कुछ चाहिए?
1: गुड रिलेशनशिप।
2: हाँ, गुड रिलेशनशिप में क्या चाहिए?
1: बस हम भी आपसे प्यार करें, आप हमसे करें, झगड़ा नहीं चाहिए।
2: नहीं चाहिए। हार्मनी,
1: हार्मनी,
2: राइट। कहीं भी कोई सफाई दिखती है, सब साफ स्वच्छ दिखता है, आकर्षित करता है, हमें ये जगह क्यों अच्छी लगती है? क्लीन,
1: ब्यूटीफुल,
2: दिस प्लेस हैज प्योरिटी। प्योरिटी मतलब एक एक अट्रैक्शन, जैसे एक बच्चे के अंदर होती है, वो प्योरिटी, ये हर ये जो चीजें हमने लिस्ट पर बोली हमें चाहिए, ये वो चीजें चाहिए विच वी आर, विच वी आर।
1: फिर वापस फिर मैं ये पूछूंगा कि अगर मैं ये हूं
2: हाँ,
1: तो ऐसा क्यों नहीं हूं।
2: जैसे हर एक को पानी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होगा ना जो कहेगा मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए। हर एक को हवा चाहिए, ये क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक का शरीर इसी चीज का बना है। एवरी बॉडी इज मेड आउट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, पांच तत्व। जो पांच तत्व का शरीर बना है, वो तत्व में अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस आएगा तो हम कहेंगे पानी चाहिए, हवा चाहिए। व्हाई? द बॉडी इज मेड ऑफ दोज फाइव एलिमेंट्स, इट वॉन्ट्स दोज फाइव एलिमेंट्स, क्योंकि उसको वो पांच तत्व चाहिए, इज अ प्रूफ कि वो उस पांच तत्वों का बना है। आत्मा सात गुणों की बनी है, इसीलिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा है। तो क्योंकि आत्मा सात गुणों की बनी है, मतलब सात गुण उसके ओरिजिनल नेचर है।
1: सात गुण बताएंगे आप?
2: प्योरिटी, एवरी सोल इज अ प्योर सोल,
1: पवित्रता,
2: पीस,
1: शांति।
2: आपने कहा शांति चाहिए, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं कि शांति चाहिए। पावर, शक्ति।
1: अच्छा, शक्ति।
2: जब हम पावरलेस फील करते हैं, जैसे हम अपने मन पे ही नहीं कंट्रोल कर पाते तो पावरलेस फील करते हैं, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग, इसीलिए हम पावर को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर पावर ऑफ पोजिशन, पावर ऑफ मनी, पावर ओवर पीपल। सर्च तो पावर की है ना,
1: तो मतलब मैं कमजोर नहीं हूँ,
2: वेरी पावरफुल।
1: मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के ऑपोजिट में बोलता हूँ कि मैं कितना कमजोर हूँ, ये नहीं कर सकता।
2: तो ऐसे ही शांति भी तो ओरिजिनल पर्सनैलिटी, हम उसके कॉन्ट्रडिक्टरी तो बोलते हैं, मेरे बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ, शांति मुझे चाहिए, पावर मुझे चाहिए। टुडे दैट हैज बिकम द वोकैबुलरी। तो प्योरिटी, पावर, पीस, नॉलेज,
1: ज्ञान।
2: जो ज्ञान हम आज सब बाहर ढूंढ रहे हैं, विजडम जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हर आत्मा के अंदर भरी हुई है, भरपूर है। इसीलिए आप देखो चलते चलते अचानक आएगी, ऐसे अचानक से हम कहेंगे ये कहां से बात आई, मुझे ये कहां से आया ये, एंड देन वी से भगवान ने मुझे टच किया, इट वॉज द डिवाइन इनसाइड मी, एंड इसीलिए ये हुआ कि परमात्मा मेरे अंदर है और वो अचानक से मुझे ऐसी बात आई। ट्रूथ, यस, दिस सत्य क्या है, द इनेट विजडम ऑफ द सोल।
1: तो ये सत्यता जब ट्रूथ हमको टच करता है तो लगता है कि भगवान ने टच किया,
2: क्योंकि वो कभी कभी होता है ना आजकल।
1: नहीं तो भगवान भी तो सत्यता है ना, ट्रूथ है तो
2: yes, पर आत्मा, आत्मा परमात्मा का ही तो बच्चा है ना।
1: अच्छा।
2: तो आत्मा भी, हर आत्मा ट्रूथ है ना, वाइज
1: हाँ।
2: है, विजडम है, लेकिन विजडम के ऊपर भी बहुत सारी जब लेयर्स आ गई हाँ। हम आज विजडम को बाहर ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं, जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है किसी और से पूछने जाते हैं अपनी विजडम। ये इंट्यूशन क्या है, अगर हम ऊपर की लेयर को साइलेंट करें, हमारी अपनी विजडम आंसर देगी कि क्या करना है, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा, ऊपर के दाग को हटाना पड़ेगा।
1: गांव में बावड़ी में, वेल में
2: हाँ?
1: जब पानी के ऊपर उल्ली लग जाती, ग्रीन ग्रीन ग्रीन मॉस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो बाल्टी फेंकते, मॉस हटाते नीचे से,
2: दिस इज इट, यही तो करना है।
1: ऊपर से लगता है कि पानी है ही
2: है नहीं, ही नहीं पानी। हाँ, सो ब्यूटीफुल सी लगेगा। अब ऊपर से दिख नहीं रहा ना, आज हमें फील नहीं हो रहा कि आई एम पीसफुल, मुझे फील नहीं हो रहा कि पावर है, लेकिन चाहिए फिर भी। जब है ही नहीं मेरे पास तो मैं औरों के पास मांगने चली गई। तो प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज या विजडम जिसको हम कहें, लव, प्यार, हर आत्मा को प्यार चाहिए, हैप्पीनेस, सुख।
1: आपकी भाषा में हर आत्मा है ही प्यार,
2: है ही ना, लवफुल बीइंग है, लेकिन फील नहीं कर पा रहे, लेकिन प्यार अनुभव करना चाहते हैं तो औरों से मांग रहे हैं। फिर हैप्पीनेस, सुख, फील नहीं कर पा रहे तो साधनों में ढूंढ रहे हैं, अचीवमेंट्स में ढूंढ रहे हैं, कहां मुझे सुख मिले, एंड देन ब्लिस, आनंद, जो हमारी सीरीज का नाम है, बीइंग ब्लिस, आनंद स्वरूप आत्मा, सत्य चित आनंद स्वरूप, सत्य है, चित आनंद स्वरूप है, उसके इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस। स्वरूप मींस वो उसका स्वरूप है, इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस। अभी हमने क्या किया, सिर्फ सुना, सत चित आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप मीन्स स्व का जो रूप है,
1: नाम भी रख लेते हैं
2: प्रेम स्वरूप,
1: ज्ञान स्वरूप,
2: यस, सो
1: आनंद स्वरूप, ये नेम्स भी रख लेते हैं।
2: तो व्हाट इज स्वरूप?
1: स्व जो मैं हूँ,
2: स्व मेरा रूप, स्व का रूप प्रेम, स्व का रूप ज्ञान,
1: स्व का रूप आनंद,
2: यस, आनंद स्वरूप। तो आनंद स्व का रूप है, बीइंग, आई द बीइंग इज ब्लिस, आनंद स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ये याद रखना है सारा दिन कि मैं आत्मा जो मेरा रूप है, स्वरूप है, वो ब्लिस है, वो पीस है, वो शांति है, वो खुशी है, ये मेरा ओरिजिनल कलर है। उसके ऊपर फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो अक्वायर्ड लेयर्स आ गई वो दाग है। अब मुझे क्या करना है? मैं एक एक दाग को नहीं हटा सकती, अभी उतना टाइम नहीं मेरे पास, गुस्से को हटाओ, ये करो, बहुत सारे दाग है। मैं सिर्फ अपने ओरिजिनल कलर को वापस अपने को याद दिलाना शुरू करती हूँ।
1: वॉशिंग मशीन में कपड़े,
2: दैट्स ऑल। अभी ये गंध, ये जो दाग है, ये सारे कैसे मिटेंगे? अगर आप सुबह उठकर ये चिंतन करेंगे कि गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा प्लीज नहीं आए, आज नहीं गुस्सा करूंगा, हट जाए। नहीं,
1: आपने सुंदर एग्जांपल दिया कि जैसे ही मेरा कुर्ता सफेद है, मैं उसको बोलता जाऊं तो मैला क्यों है, मैला क्यों, मैं साबुन लेके साफ करूं?
2: करो। अब इसमें साफ करने का तरीका क्या होगा? हर रोज अपने को सिर्फ याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ, आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ ब्लिसफुल बींग, ये मेरा स्वरूप है। यू नो, जैसे फिजिकल रूप को भी तो सारा दिन देख रहे हैं कि मेरा रूप कैसा है, कहाँ ठीक करो उसको। ये इनहेरेंट नेचर है हर आत्मा की, ब्यूटी, एक्यूरेसी, परफेक्शन। लेकिन सिर्फ हुआ क्या, हम सिर्फ उसको शरीर के लेवल पर ही देखने लगे। अब यही चलते चलते अगर हम सारा दिन में ज्ञान के दर्पण में देख लें, सब ठीक है ना, कोई गलत थॉट तो नहीं आई ना, साफ। ऐसे कैसे करते हैं चलते चलते, अच्छा ठीक करो, साफ। अरे बाल थोड़ा इधर से उधर हो गया, साफ। थोड़ा सा इधर दाग लग गया, साफ। चलते चलते चेक कर ले तो दाग ही नहीं पड़ना।
1: सारी उम्र हम यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे।
2: आओ, ब्यूटीफुल।
1: मिट्टी यहाँ लगी और मैं आईने को साफ करता जा रहा, मिरर को।
2: तो दाग कहाँ था? मेरे संस्कारों में, मेरी नेचर में। हम साफ कहाँ कर रहे थे? आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, परिस्थिति ठीक हो जाए,
1: मेरा
2: लोग चेंज हो जाए,
1: मेरी बीवी ऐसी है।
2: करना क्या था? सिर्फ मेरा संस्कार एक ऐसे, मेरे ये थॉट एक इधर।
1: बट हम रोज करते हैं सिस्टर, मैं सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ सीधा वाइपर के ऊपर पानी मारता हूँ और अपने आप साफ हो जाता है, शीशा
2: right.
1: तो मुझे दिखने लग जाता है yes. इसी तरह मैं अपने अंदर वाइपर, अपनी मिट्टी कैसे साफ।
2: अब ये कितना ब्यूटीफुल है, हम वाइपर से पानी मारते हैं, कांच साफ हो जाता है। एक दिन अपना वो वाइपर नहीं मारे और गाड़ी चलाकर यात्रा पर चलते हैं,
1: धुंधला धुंधला,
2: वो ही गाड़ी, वो ही रास्ता, वो ही बाकी लोग उस रास्ते पर, सिर्फ मेरा कांच साफ नहीं है ना, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दिखेगा ही नहीं सामने कुछ। अब हम सामने वाले को फिर उतर के कहें आप ठीक से नहीं चला रहे थे। ये सब फिजिकल है, इवन फिजिकल ब्यूटी भी तो दिखती है ना। अगर मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ जाए तो वेइंग मशीन दिखाती है ना, अच्छा वेट बढ़ गया है, तो इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएंगे ना कि आज
1: यहाँ
2: से...
1: भी दिखता है मुझे जब मैं ज्यादा सोचता हूँ तो मेरे ऊपर इतना बोझ आ जाता है, जैसे कि सारी धरती का बोझ, सारी दुनिया, ये जो धरती घूम रही मैं चला रहा हूँ। कभी कभी थक जाता हूँ क्योंकि ब्रेन इतना यार ये नहीं सुन रहा है मेरी बात, वो काम नहीं कर रहा है, इसको बोला था वहां नहीं जाना चला गया, ये रॉन्ग हो रहा है, ये राइट नहीं हो रहा है,
2: ये वजन बढ़ गया,
1: मेरे को उतना बोझ हो जाता है।
2: तो अब डाइटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि वेट तो कम करना ही पड़ेगा। लाइट कैसे रहेंगे? देखो फिजिकली बॉडी अगर बहुत वेट पुट ऑन कर ले तो वो ही शरीर है, लेकिन वेट पुट ऑन कर लिया तो उठना, बैठना, चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो नेचुरल चीजें हैं वो डिफिकल्ट हो गई ना। पहले भाग लेते थे, कुछ भी सामान उठा लेते थे, लेकिन अब वजन बढ़ गया, अब वजन बढ़ गया है तो उठना, बैठना, फिर घुटनों में दर्द होने लग गया ना, क्योंकि वजन बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट हो रहा है, वजन बढ़ गया है। एक वजन बढ़ने से कितनी सारी चीजों पर असर पड़ गया। अब वो सारी चीजों को ठीक करें कि घुटने को भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, या वजन ही घटा लें?
1: फिर आपके बाद डाइट पे आ गई वापस।
2: तो वजन, अपने वजन को यहाँ रोज घटाएं, नहीं तो हर चीज पर असर पड़ेगा उसका। अगर मेरी थॉट्स हैवी होती जा रही है, दिस इज हैवी थिंकिंग, किसी के बारे में क्रिटिकल हो गए सोचते जा रहे हैं, फिर नेचर बन गई हर एक के बारे में क्रिटिकल।
1: उसने रात को मुझे ऐसे कैसे बोला, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। उसने मुझे 7 दिन पहले ये बोला, मैं 3 दिन से नहीं सोया।
2: उसने मुझे 10 साल पहले ऐसे बोला, तो हैवी हो गए ना, तब से पकड़ के रखा है यहाँ अक्यूमुलेट, एंड फिर हैवी थिंकिंग है। सो वी हैव टू चेक, इज माय थॉट हैवी और लाइट, कैसा फील हो रहा है वो थॉट क्रिएट करने के बाद।
1: मालूम है हैवी सिस्टर, मैं पूछ रहा हूँ उसको लाइट कैसे करूँ।
2: वजन बढ़ गया है तो कैसे लाइट करेंगे, घटाना पड़ेगा ना।
1: वो तो मुझे मालूम है,
2: घटाना है। ये थॉट मेरा नुकसान कर रही है, दूसरे ने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे मैं सही हूँ और दूसरा गलत है, ये थॉट मेरा नुकसान कर रही है।
1: बट ये बात इतनी क्लियरली क्यों नहीं समझ में आती है जितनी क्लियरली मुझे वेइंग मशीन दिखती है।
2: फिजिकल वेट बढ़ता है, उसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस फिजिकल अपियरेंस में दिख जाता है। यू नो आई एम नॉट लुकिंग एज नाइस एज दैट आई यूज्ड टू लुक, मेरा वेट बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो फिजिकल ब्यूटी पे इफेक्ट हो गया, सेकेंड फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट हो गया, पैरामीटर्स पे इफेक्ट होने लग गया, थर्ड जो मैं सारा दिन काम आराम से कर लेते थे उस पे स्लो डाउन होने लग गया, कहीं प्रॉब्लम आने लग गई। तो 3 चीजों पे इफेक्ट हो गया, ब्यूटी, फिर हेल्थ और फिर एक्टिविटी, तीनों पर हो गया। इसी तरह थॉट्स जब हैवी हो जाएंगे तो पहले मेरी इनर ब्यूटी अफेक्ट हो जाएगी, जो आत्मा आनंद स्वरूप है। मीन्स उसका रूप कैसा है, आनंद, ब्यूटिफुल है ना, आनंद स्वरूप है। लेकिन अब वो गुस्से वाला स्वरूप बन जाएगा, अब वो चिड़चिड़ा स्वरूप बन जाएगा। तो सुंदरता अंदर की गई, अंदर की सुंदरता का फेस पर भी दिखाई देने लगा। फिर हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होने लग गई, और मेरी हर एक्टिविटी, चाहे वो मेरे रिश्ते हैं, चाहे वो मेरा करियर है, छोटे छोटे काम भी, उस पर उसका इफेक्ट आने लग गया, क्योंकि मेरी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मैंने वो थॉट पकड़ कर रखी। और जैसे ही मेरी इमोशनल हेल्थ अब डिक्लाइन होने लगी, मेरा वजन और बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी कि बात आई लेट गो, बात आई फिनिश्ड। जितनी इमोशनल हेल्थ कमजोर होगी, मैं बातों को ज्यादा पकड़ के रखूंगी,
1: ज्यादा लाई खा पी लिया, बात आई दवाई खा ली, बात आई अल्कोहल ले लिया, बात आई सिगरेट पी ली, बात आई च्यूइंग टोबैको कर लिया, बात आई खूब खाना मिठाई खा ली।
2: अब यही इमोशनल हेल्थ जब डिक्लाइन होगी, उससे फिर फिजिकल हेल्थ भी डिक्लाइन होगी। कितने सारे, अगर वो अवेयरनेस रहेगी, ये अवेयरनेस चाहिए कि जो मैं कर

0: आई वॉन्ट गेट इट बिकॉज आई हेल्ड ऑन समथिंग एल्स. कुछ और पकड़ के रखा, अगर मैंने इस हाथ में कुछ और पकड़ के रखा है और फिर मैं कहूं लेकिन मुझे ये पकड़ना है, पहले ये छोड़ना पड़ेगा. एक हाथ में एक ही चीज पकड़ी जाएगी, या तो ये पकड़े या वो पकड़े. पकड़ा हुआ है एक, कहेंगे मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन
1: बंदर ने चने की बोतल में हाथ डाल दिया, सारे चने जो अटका हुआ है बाहर नहीं निकल रहा है,
0: छोड़ना पड़ेगा.
1: चना कुछ कम करे या छोड़े तभी बाहर बाहर.
0: अब उस बंदर को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए ना. फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए. अगर मुझे भी फ्रीडम चाहिए, दुख से, अशांति से, चिंता से फ्रीडम चाहिए, आई वॉन्ट टू फील लाइट, फ्री, इंडिपेंडेंट, छोड़ना पड़ेगा. बातों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो लेट गो इन द सेंस सोच के पकड़ के मेरा नुकसान.
1: बंदर ने चने छोड़े तब बाहर आया ना, बॉटल में बाहर फंस गया, अभी कैसे निकलेगा?
0: Yes. मैं सोचू पकड़ के भी बाहर निकाल लू किसी तरह, वो होना नहीं पड़े तो आई हैव टू डिसाइड क्विकली क्या चाहिए. इसी तरह मैंने किसी के प्रति नफरत पकड़ के रखी और फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, संतों के पास गई, शांति चाहिए, होगा नहीं.
1: ब्यूटीफुल.
0: होगा नहीं. इसको छोड़ दो तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा.
1: ये हम सबका प्रॉब्लम है,
0: सबका है, लेकिन जाना नहीं पड़ेगा. एक छोड़ दो थॉट, शांत स्वरूप आत्मा है, ढूंढ रहे हैं वो जो यहाँ पर है. और ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो किसी के पास गए, मिले, कुछ अच्छी बात सुनी, लेकिन वो बात भी इम्प्लीमेंट करनी है ना. फिर इम्प्लीमेंट करनी है. लेट्स से कोई अभी ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कहेंगे हाँ नाउ नाइस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, बट करेगा कौन? फाइनली करना पड़ेगा. इट विल नॉट गो अवे लाइक दिस, बट एवरी टाइम आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप फास्टर. जितना फुल स्टॉप फास्टर करेंगे, धीरे धीरे वो बात कमजोर हो जाएगी. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस. अगर एक बीज डला भी हुआ है लेकिन बीज को आप पानी ना दें, आप उसको नरिश ना करें, वो बीज मर जाएगा फाइनली.
1: वेयर अटेंशन गोज
0: एनर्जी फ्लोस.
1: जैसे मैं जिम में बाइसेप की एक्सरसाइज करता हूँ, डंबल की, अटेंशन नहीं आ देता हूँ, इसीलिए टीचर कहता है मुझे आप पिक्चर देख रहे, इधर देख रहे, इधर अटेंशन दो.
0: वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. एनर्जी मीन्स आपकी एनर्जी उस चीज को मिलेगी. एंड वेयर यस, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. आपने एक्सरसाइज किया, अटेंशन दिया, एनर्जी फ्लो की चीजें हो गई जो आप करना चाह रहे हैं. थ्री थिंग्स, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, थिंग्स ग्रो. ये गार्डन है, ऐसे ही नहीं बन गया. अटेंशन गई, एनर्जी मिली, थिंग्स ग्रो. आज यहां से अटेंशन हटा लो. अटेंशन हटी, एनर्जी मिलनी बंद हो गई, थोड़े दिन के अंदर ये गार्डन ऐसे हो जाएगा,
1: सूख जाएगा.
0: सूख जाएगा. वैसे ही जो वो पुरानी बातें पड़ी हुई है, जस्ट अटेंशन विड्रॉ कर दो उससे. पड़ी है ना, नहीं निकल रही, कोई बात नहीं. ध्यान, जिसको कहते हैं ना, ध्यान हटा लो अपना उस बात से. मीन्स विड्रॉ योर अटेंशन, मतलब एनर्जी नहीं मिलने दो उस बात को. और कोई बात किसी की दिखी, अभी भी प्रेजेंट पे कोई बात दिखी, गलत लगी, ध्यान नहीं देना. अटेंशन मतलब सोचना नहीं उस पर. दिखेगी, सुनाई भी देगी, मन और चित उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आसपास और चारों तरफ सब कुछ दिखने वाला है. न्यूज सुनेंगे वो भी दिखेगा, लोग आसपास दिखेंगे, लेकिन दिखना और सुनना, लेकिन वो हमारे चित पर बैठ जाना, वो अलग चीज है. जैसे ही वो चीज मेरे चित पर बैठ गई, मींस अटेंशन मैंने उसको अब अपनी देनी शुरू कर दी, एनर्जी अपनी देनी शुरू कर दी, वो चीज मेरे मन में अब ग्रो करनी शुरू हो जाएगी. तो ये सारा दिन अटेंशन गोस, एनर्जी फ्लोस, थिंग्स ग्रो. जो चीजें टॉक्सिक हैं, डैमेजिंग है, अटेंशन हटा लें. अब जो नया संस्कार क्रिएट करना है, लेट अटेंशन गो. आई एम अ पीसफुल सोल, ये कभी अटेंशन ही नहीं दिया था. मैं गुस्से वाला हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, ये थॉट क्रिएट करते थे. अटेंशन गई,
1: एनर्जी क्यों आता है?
0: क्यों आता है? पर थॉट तो एंगर की
1: बुरा क्यों सोचता हूँ?
0: मेरे से नहीं होता.
1: मैं कितना बुरा आदमी हूँ?
0: आदमी हूँ मैं, हूँ बुरा. तो अटेंशन कहाँ गई? एनर्जी कहाँ फ्लो हुई?
1: और कितना प्यारा प्यारा आपने आपको श्राप दिया है ना.
0: एनर्जी फ्लो हुई, वही चीज बनती गई. अब सिर्फ एक थॉट, आई एम अ ब्लिसफुल बींग. बींग ब्लिस

0: ये हमारा मंत्र बन सकता है, दिस इज मी। सिर्फ ऐसे ओम शांति बोलने से नहीं होता है, शब्द लेना पड़ेगा एक, जो मेरे को बन जाना है। मंत्र मीन्स जो बन जाऊ मैं, मन उसके साथ एकदम लीन हो जाए उस चीज के अंदर, शब्द में ना लीन हो जाए, स्वरूप हमारा वो बन जाए। तो दिस शुड बी माई मंत्र, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज आई, बन जाएगा। वेयर अटेंशन गोज इट विल हैपन। कौन सी बातों पर कितना अटेंशन देना है, आई हैव टू चूज। जितना हम ये करेंगे, हम अपनी पुरानी बातों को धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। ये जो ओरिजिनल संस्कार है, सी ओरिजिनल संस्कार को फिर से इमर्ज करना है तो पहले तो ओरिजिनल संस्कारों को याद रखना पड़ेगा। ये ना हो कि जो आपने पिछली बार कहा, पर वो मेरी नेचर है।
1: हाँ,
0: मेरी नेचर है,
1: मैं सैजिटेरियन हूँ। हाँ, मेरे बारे में ये ट्रेट्स हैं, मेरी ये नेचर है।
0: नॉट ओनली दैट, जो मुझे दिखता भी है अपने अंदर आज सारा दिन, मैं कैसे बोलता हूँ, क्या करता हूँ, कैसा सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मैं, ये मेरी नेचर है। ये मेरी नेचर नहीं है। अगर सपोज इस कुर्ते पे काला दाग लग जाए, आप ये तो नहीं कहेंगे ये कुर्ता काले रंग का है, आप कहेंगे व्हाइट है, अभी ये थोड़ा सा काला दाग लगा। तो ओरिजिनल कलर वो ओरिजिनल नेचर है। तो मेरी नेचर, मेरी नेचर, मेरी मतलब मैं, मेरी नेचर क्या है, मेरी नेचर ये सात क्वालिटीज है, ये अटेंशन रखना है सारा दिन। ये मेरी नेचर है, बाकी सब दाग है, बाकी सब दाग है जो ऊपर लगा है। ओरिजिनल नेचर, इसीलिए उसकी खोज है। अब खोजना भी नहीं है, ढूंढना भी नहीं है, ये याद रखना है ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। पीस, प्योरिटी, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस,
1: बीइंग ब्लिस,
0: सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद। मैं आत्मा, इनका स्वरूप हूं, ये मेरा रूप है। ये शब्द जो सुने हैं, अब इसको सारा दिन स्मृति में रखते हुए, अब ये इंफॉर्मेशन जब होगी तो थॉट्स कैसे अराइज होंगे अब इसमें से, ऑटोमेटिकली। पहले अगर हम कहते मैं गुस्से वाला हूं, अब हम कहेंगे आई एम पीसफुल सोल। जब थॉट ही आई एम अ पीसफुल सोल होगी तो फीलिंग कैसी आएगी। जैसे आपने अभी शुरू में क्या कहा, आई एम फीलिंग ब्लिस टुडे, बार बार सोचेंगे बीइंग ब्लिस, बीइंग पीस, तो फीलिंग चेंज हो गई, बिकॉज थॉट इज टू फीलिंग। फिर फीलिंग्स चेंज हो गई, धीरे धीरे एटीट्यूड अपने प्रति, अभी एटीट्यूड क्या था, नहीं मैं बुरा हूँ, सब मुझसे दुखी हो जाते हैं, मैं हूँ, अब नहीं, आई एम अ प्योर सोल।
1: एटीट्यूड, आज सुबह मैं जब शावर ले रहा था तो ज्यादा गर्म हो गया था पानी, तो मैंने सिर्फ बटन को इस तरफ कर दिया, पानी ठंडा आ गया। तो इतना इजी है कि जो आप ये कह रहे हैं बीइंग ब्लिस,
0: सिर्फ क्या करना है, जो चाहिए वो सोचना है। वी सो,
1: मुझे चाहिए था इतना गर्म पानी, नहीं चाहिए,
0: नहीं चाहिए था,
1: कम करना था, ठंडा मैंने इजीली इधर कर लिया उसको।
0: ब्यूटीफुल। अब
1: ये ही बताइए यहाँ कैसे,
0: अब ये ही चाहिए ठंडा, खड़े हैं गर्म के नीचे और बोले ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए,
1: कोस रहे हैं।
0: हाँ, कितना गर्म है, पर मेरे को तो ठंडा पानी चाहिए। चाहिए पीस, तो क्रिएट क्या करना होगा, सोचनी कैसी थॉट होगी, बोलने का तरीका कैसा चाहिए, यस, कर्म कैसा होना चाहिए। तो वो बटन को, गुस्सा आया किसी पर, फिर अपने को याद दिलाना, बट पीस, आई वॉन्ट पीस, सो वॉट आई हैव टू डू, स्विच इमिजिएटली फ्रॉम बींग क्रिटिकल, जजमेंटल, टू बिकमिंग एक्सेप्टिंग। ठीक है, बस मेरा मन शांत हो जाएगा उसी टाइम। ये क्यों ऐसे, ये कैसे ऐसे ऐसे ऐसे है ना, हाँ ठीक है, वो उनका संस्कार है। चेंज हो गया, थॉट चेंज हो गई, फीलिंग चेंज हो गई, कामनेस आ गई, पीस। ये कहीं नहीं मिल सकती है, ये आई नॉट बी एबल टू गेट दिस पीस एनी वेयर, इट्स नॉट देयर, इट्स अ चॉइस इन माई एवरी थॉट। And that's why what you have been sharing with us for so many days, like you choose your clothes that you wear, choose your every thought that you create, what suits you, what's comfortable. कपड़े भी वो पहनेंगे ना जो comfortable भी तो होने चाहिए, thought भी वो choose करने हैं. Very soon it's going to shift its nature and go back to its original nature.
1: आज हम मन बच्चे से बात करते हैं, प्यार करते हैं और उसे सातों गुण समझाते हैं.
0: Sure.
1: Thank you so much.
0: Om Shanti.
1: नमस्कार।
2: The human being means body and soul. Being is the energy, the soul. Today, we focus more on doing rather than being. The original qualities of every soul are purity, peace, love, happiness, power, knowledge, and bliss. We don't have to look for peace, ask for love, achieve or buy happiness. We are an embodiment of these qualities. I am a peaceful, loveful, and blissful soul. Give attention to the sanskars which we want to be. Sanskars of peace, love, and happiness. Where attention goes, energy flows. Where energy flows, things grow.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

फाँक और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर में एक बात से हमने शुरू किया था कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वही हमारा भाग्य या हमारी डेस्टिनी लिख देते हैं। और आज अगर हम देखें इस पूरी बातचीत को जो हमने किया, पूरी सीरीज में हमने ये बात जान ली है कि हमारा पहले थॉट ये रहता था कि मैं ये शरीर हूं और उसीलिए सारी जो चीजें जुड़ी हुई होती थी वो इस शरीर से जुड़ी रहती थी और हमारा भाग्य हमारी डेस्टिनी लिख देता था ये थॉट। आज हमने उस थॉट को थोड़ा सा बदला, हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा जो प्रेम से भरी है, जो शांति स्वरूप है, और हमारा भाग्य एक नए रूप में हमारी डेस्टिनी सामने आई। एक और बात जो इस पूरे सफर में हमारे सामने आई है कि जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। इस जन्म में या फिर कार्मिक फिलॉसफी को अगर हम देख रहे हैं तो पिछले कई जन्मों से जो होता आ रहा है, मैं क्यों जिम्मेदार हूं और क्या जो आज मेरे साथ हो रहा है उसे मैं बदल सकती हूं, क्योंकि बदलना भी मेरे ही हाथ में होगा। कैसे हो पाएगा ये सब कुछ, इसी को जानने के लिए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और हर बार की तरह इस सफर में हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने सफर तय किया, जो आज मैंने कहा भी है अभी, वो सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे सोए हुए को एक जागरण हुआ है, एक अवेकनिंग हुई है और रियलाइजेशन हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक जर्नी की हमने बात की थी, जो पूरा कि कर्म का जो एक पूरा एस्पेक्ट था, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने मान लिया, एक्सेप्ट है कि जिसकी मैं, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ उसके जिम्मेदार मैं खुद हूं। क्या जो मैं आगे चाहती हूँ उसको बदल सकती हूँ?
1: जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेवार मैं हूँ, इसलिए उसको बदलना भी
0: मेरे अपने
1: हाथ में है। अभी तक क्या था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे वजह से नहीं है, वो औरों की वजह से है, वो परिस्थिति की वजह से है, वो कोई मेरे गलत समय मेरा चल रहा है या बैड लक है,
0: ये मेरा मानना चल रहा है,
1: ये सब जो बातें थी, तो इट वाज एवरीथिंग व्हिच वाज नॉट इन माय कंट्रोल। मेरे जो सितारे हैं इस टाइम वो ठीक नहीं है, या परमात्मा मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स थे, तो इनकी वजह से मेरी थिंकिंग थी कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए मेरे अलावा बाकी सब जिम्मेवार है।
0: मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये सवाल अब कहीं तंग नहीं कर।
1: आप अगर मेरे से ठीक तरह से बात नहीं कर रहे, इसके जिम्मेवार आप है, तो इसलिए मैं ट्राई करती रही आपको चेंज करना, और आपको मैं चेंज नहीं कर सकती, तो आई केप्ट ऑन सफरिंग, मेरी भोगना बढ़ती रही, क्यों हो रहा है, आप मुझे तंग करते रहे, मैं परेशान होती रही, एंड दैट प्रोसेस वेंट ऑन। अब समझ में आया, आप मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके जिम्मेवार मैं हूं कि मैंने उस तरह की एनर्जी कभी ना कभी आपको ट्रांसमिट की है, वो मेरे पास वापस आ रही है। नाउ आई कैन चेंज। व्हाई? बिकॉज मुझे समझ में आया कि जो मुझे सबसे मिल रहा है, इट इज ओनली अ रिटर्न ऑफ व्हाट आई हैव सेंट आउट, सो इफ आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम गेटिंग, आई जस्ट हैव टू चेंज व्हाट आई एम गोइंग टू सेंड आउट। जो अगर मैं कहती हूँ मुझे लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मुझे लोगों से प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे लेना नहीं है, मुझे उनको वो देना है। तो अगर वो हम देंगे तो वो जाकर हिट करके वो ही वापस आएगा।
0: इनफैक्ट ये भी एक लॉ है, अगर हम देखें तो व्हाटएवर गोज आउट एक्चुअली वी गेट
1: दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज ओनली कार्मिक फिलॉसफी, दैट जो आप व्हाटएवर एनर्जी गोज आउट द सेम एनर्जी कम्स बैक। तो जो एनर्जी वापस आ रही है उसको देख के ग्रम्बल करने का तो कोई फायदा
0: नहीं। एक्चुअली उसको देख के एक बार रियलाइजेशन एकदम से हो जाना चाहिए। मुझे लगता है नाउ इट्स सो क्लियर कि जो एनर्जी हमारे पास वापस आ रही है वो कहीं ना कहीं मैंने ही दी है।
1: तो अब अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम और उस तरह की एनर्जी भेजते जाएंगे बाहर, तो फिर वो और ज्यादा आती जाएगी हमारे पास। तो इफ आई एम नॉट लाइकिंग द एंगर दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, गिव यू लॉट ऑफ लव, तो समवेयर दैट लव विल गो हिट यू एंड इट विल कम बैक टू मी।
0: Even if there is a karmic account,
1: yeah, you think this so? is all if it is a karmic account, because everything is a karmic account. कुछ भी तो बिना कार्मिक अकाउंट के हो नहीं रहा है। फर्क क्या है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कई जैसे भाई बहने फोन करके कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन वो मुझे क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं. यू नो बहुएं कहेंगी इन लॉज क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, कोई हस्बैंड कहते हैं वाइफ क्रिटिसाइज और वाइस वर्सा, या बॉस क्रिटिसाइज करता रहता है. नाउ वॉट टू डू एट दैट टाइम, कि वो क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हैं एंड ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनसे हम छूट नहीं सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू लिव विद देम. तो वी शुड बी लिव विद द क्रिटिसिज्म, कैन बी चेंज द क्रिटिसिज्म, कैन बी एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, वॉट कैन आई डू. द एनर्जी जो है वो हमारी तरफ ट्रेवल कर रही है, आपसे मेरी तरफ एनर्जी आ रही है, मेरे पास तीन चॉइसेस है, या तो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लो, तो आपने नेगेटिविटी भेजी, मैंने अब्सॉर्ब कर ली, क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अंदर ही अंदर घुलते रहे, पिसते रहे अंदर. दूसरा है एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो आपने एनर्जी नेगेटिव भेजी, मुझे हिट की और भी ज्यादा फास्ट से आपकी तरफ गई, ये ऐसे है वैसे है व्हाटएवर, सो आपने भेजी मैंने रिफ्लेक्ट की. तीसरा होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो आपने नेगेटिव भेजी, नाउ इफ आई एम पावरफुल आई शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इट टू पॉजिटिव.
0: आई वर्क ऑन इट,
1: यस
0: डू आई वर्क ऑन
1: आई वर्क ऑन इट हाउ, कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक मुझे अब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है इट्स बिकॉज ऑफ मी, तो मेरा कुछ पिछला इम्प्रेशन अंदर बना हुआ है, जो जैसे ही मैं आत्मा आपके सामने आते हूँ तो आपके अंदर से वो एनर्जी मेरी तरफ आने शुरू हो जाती है. अब अगर मुझे अपने ऊपर रहम करना है, अपनी भोगना को खत्म करना है, व्हाट लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप औरों को यू नो लेट गो करते हैं, या ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचते हैं, या उनकी बात पर बहुत ज्यादा परचिंतन नहीं करते हैं, आप उनको नहीं क्षमा कर रहे हैं,
0: खुद को कर रहे
1: आप
0: हैं,
1: अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी भोगना को कम कर रहे हैं. अभी हम क्या करते हैं, क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, तो एवरी दैट थॉट अगेन आई एम क्रिएटिंग दैट इम्प्रेशन, अगेन इट विल गो आउट अगेन. तो वो संस्कार री इन्फोर्स होता जा रहा है, वो कार्मिक अकाउंट और भी डीप होता जा रहा है. The other option is, वो उन्होंने जो बोला वो उनका ओपिनियन है, मैं अपने आप को चेक कर लूं कि मैं वो कर रही हूं या नहीं, अगर मेरी गलती है तो चेंज, अगर नहीं है तो लेट देम गो, जस्ट लेट देम से व्हाट दे आर सेइंग एंड टेल योर सेल्फ इफ आई वॉन्ट आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, आई हैव द पावर, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, आई एम डिस्टर्बिंग माई सेल्फ बाय वॉट दे आर सेइंग टू मी. So if I can disturb myself, I can also stabilize myself. I am doing it.
0: By not ignoring them. You know what?
1: I mean, not ignore start, them. No.
0: Hota ye hai, dekha ye gaya hai, ki jab mujhe avoid
1: withdraw kar dete.
0: Haan. तो मैं विड्रॉल में चले जाती हूँ कि मुझे रिएक्ट ही नहीं करना right. है yeah. मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है
1: True.
0: ये भी एक तरीका yeah. है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज अगेन वो कुछ ना कुछ अकाउंट क्रिएट हो रहा है.
1: एब्सोल्युटली, हम जैसे दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ना, हम पॉजिटिव उनके लिए सोचे कि वो जो बोल रहे हैं वो अपनी पोजिशन में बैठ कर किसी एंगल से सही बोल रहे हैं, अगर वो मुझे अभी नहीं पहचान पा रहे हैं या मुझे नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी कर लेंगे, और नहीं भी अगर करते हैं देन दैट्स ऑल्सो ओके, आई नो हु आई एम, दैट्स व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट,
0: आई नो अबाउट माय सेल्फ,
1: आई नो अबाउट माय सेल्फ.
0: अगेन यहाँ ये अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, कई बार मुझे या मुझे कुछ लोग मिलते हैं जिनके जिनको लेके मैं अननेसेसरली इरिटेट होती
1: हूँ,
0: यू नो ये तो ये थे कि जो मुझे
1: इरिटेट करते हैं,
0: हम भी तो कितनी बार
1: बहुत ज्यादा
0: कहीं ना कहीं हमारा भी वो कार्मिक अकाउंट होगा, उसको भी हैंडल करना,
1: राइट,
0: अननेसेसरली गुस्सा आ जाता है, अननेसेसरली इरिटेशन होती है, उसको भी हैंडल करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, कि एक तो एहसास ही नहीं हो पाता, बट नाउ व्हेन वी स्टार्ट लिविंग विद अवेयरनेस ये एहसास होने लगता है कि ये जबरदस्ती की कुछ एंगर है, तो उसको
1: मतलब
0: भी कैसे करें?
1: हर स्टेप पे अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं जितनी बार हो रही हूँ मैं अपनी भोगना को बढ़ा रही हूँ, सो स्टॉप, क्या मैं और कर्जा लेना चाहती हूँ या जो पहले लिया हुआ कर्जा है उसको चुकता करना चाहती हूँ, यू नो अदरवाइज दिस इज जस्ट गोइंग टू गो ऑन एंड भोगना बढ़ती जाएगी. तो आप मेरे सामने आ रहे हैं, अगर 10 बार पहले आए थे और मैं इरिटेट हो रही थी, टुडे मॉर्निंग आई विल सिट इन मेडिटेशन एंड आई विल से व्हाट इज इट, व्हाट इज इट दैट इज इरिटेटिंग मी, कैन आई डू विदाउट इट, डू आई हैव एन ऑप्शन, एंड विजुअलाइज माई सेल्फ कि यू विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, I will remain in the awareness. I'm a pure soul, and so is she. We have had some energy exchange. जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन यहाँ है, वो अभी भी ट्रिगर हो रहा है, बट फुल स्टॉप, नॉट फ्रॉम टुडे. इट्स जस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू द माइंड. अभी तक वो इंस्ट्रक्शन दिया नहीं था, तो वो माइंड अपने जो प्रीवियस थॉट्स है उसके हिसाब से चल रहा है. अब हम एक नया थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो थॉट को हम एक्शन में लाएंगे. तो मैं मॉर्निंग में एक थॉट क्रिएट करती हूँ कि आज जब आप मिलेंगे, आप चाहे कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे. इट्स अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ. एंड फिर आप आते हैं, आई एम एबल टू रिमेम्बर दैट इंस्ट्रक्शन. तो वो थॉट एक्शन में आया कि मैं इरिटेट नहीं हुई, इम्प्रेशन बन गया. आई डिड नॉट गेट इरिटेटेड. फर्स्ट न्यू इम्प्रेशन. पहले बहुत सारे इम्प्रेशन थे कि आई गेट इरिटेटेड, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. बहुत अच्छा लगा, लेस पेन. टुमारो अगेन, अगेन अनदर इम्प्रेशन, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. दो और चार बार, उसके बाद आदत. उसके बाद आप कितनी बार भी आए दिन में, आई विल नॉट गेट इरिटेटेड.
0: ये इम्प्रेशन जो हैबिट बन जाएगा.
1: आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ फॉर दैट. इफ आई से नहीं वो ही इरिटेट कर रहे हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट.
0: नहीं, इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं अपने बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, इतने कॉल्स, इतने फोन, इतने ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं कि जो मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट. दिस इज वन कॉन्सेप्ट जिसे हम लेकर चले थे कि कैसे मेडिटेट करेंगे. आई थिंक आई वांट टू शेयर इट नाउ टुडे इज लाइक आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम.
1: राइट,
0: इट्स नो मोर अ मेडिटेशन. मतलब मैं सचमुच इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, कर रही होती हूँ हर रोज सुबह शाम या दिन में कभी भी, कि जब मैं अपने आप से रूबरू हो लेती हूँ, अपने आप से और परमात्मा के साथ, जो एक शिव बाबा के साथ एक रिलेशनशिप है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. और हर बार ये कर पाना, अब हर काम करना आसान लगने लग गया है. जो भी आप हमें बताती हैं कि किस तरह से करना है, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये बात समझेंगे शायद, कि वो आसान हो जाता है.
1: जब अपने साथ और परमात्मा के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, तो औरों के साथ ऑटोमेटिकली बन जाता है.
0: ब्यूटीफुल, दैट्स रियली ट्रू. सिस्टर शिवानी, हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि लॉ ऑफ कर्मा जो है, जो कानून ऐसा है, जो जैसा बोया है वैसा हमें मिलता ही है. कुछ और भी ऐसे स्पिरिचुअल लॉज हैं जो काम करते हैं?
1: फंडामेंटल तो सारा कुछ कार्मिक फिलोसफी पे ही कनेक्टेड है, लेकिन इसको हम अलग अलग तरह से भी देख सकते हैं. जैसे कहेंगे कि लॉ ऑफ अटेंशन, ओके, व्हेरेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज.
0: अच्छा, हमारा ध्यान जहां जाता है
1: एनर्जी फ्लोज, एंड व्हेरेवर माय एनर्जी फ्लोज दैट थिंग विल ग्रो.
0: ओके,
1: तो नाउ आई नीड टू कीप दिस इन माइंड कि जहां भी मेरा अटेंशन जाएगा, मेरी सारी एनर्जी उस तरफ चली जाएगी, और जिस तरफ मेरी एनर्जी जाएगी वो चीज ऑटोमेटिकली शक्तिशाली ग्रो होती जाएगी. स्थूल रूप से सिंपल देखें, गार्डन है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपकी सारा ध्यान, आपकी एनर्जी उसमें लगेगी, तो वो गार्डन बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा. आप एक कारोबार शुरू करते हैं, आप अपना ध्यान उस पर देंगे, वो कारोबार फलीभूत हो जाएगा. ये हुआ स्थूल रूप से. अब अगर थॉट लेवल पे भी, जिस थॉट की तरफ मेरी अटेंशन जाएगी, वो थॉट ऑटोमेटिकली और भी पावरफुल होती जाएगी. सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किन थॉट्स पर अटेंशन देना है. जो हमने सोल कॉन्शियसनेस के दिन देखा कि बहुत सारी थॉट्स आती जाती है, जस्ट टेक वन एंड पुट ऑल योर अटेंशन ऑन दैट, जस्ट सी इट कि आई एम अ प्योर सोल. तो जब आप वो एक थॉट को लेकर उस पर अटेंशन देंगे, तो सारी एनर्जी उसमें जाएगी एंड सोल कॉन्शियसनेस ग्रोज. गिव योर अटेंशन टू गॉड, energy will flow into that relationship will grow. कोई भी relationship को भी अच्छा बनाने के लिए attention देना पड़ता है ना. आजकल husband, wife, parents, child क्या बोलते हैं, attention नहीं दे रहे हैं हमारे तरफ, तो attention नहीं दे रहे हैं तो रिश्ता
0: टूट रहा है.
1: सेम विद माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ एंड माई रिलेशनशिप विद गॉड. जितना हम उसको अटेंशन देंगे, हम कहें टाइम ही नहीं है, सारा दिन में टाइम नहीं है याद करने के लिए या सोल कॉन्शियस का ध्यान रखने के लिए, देन इट विल नॉट ग्रो. हम अगर हमारा ध्यान सारा उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नाउ ऑल आर अटेंशन गोज टू दीज थॉट्स, एनर्जी फ्लोज, दोज थिंग्स ग्रो, दैट प्रॉब्लम बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर. तो इनफैक्ट जो इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं, वहां से अटेंशन को हटा लीजिए.
0: अगेन
1: यू विल बी विड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम दैट
0: डेस्टिनी में खुद लिख सकती हूँ अपनी यू नो बात वही आ गई कि लॉ ऑफ
1: यस
0: अगर अटेंशन की बात करते हैं तो जो ध्यान प्रायोरिटाइज करके जिस बात पे मैं ध्यान दे रही हूँ वाह दैट्स नाइस
1: जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं उस पर ध्यान नहीं दो आपकी एनर्जी वहां से विड्रॉ हो जाएगी और उस चीज पर ध्यान दे दीजिए जो आपके कंट्रोल में है दैट थिंग विल ग्रो वो चीज अपने आप सेट हो जाएगी सो लॉ ऑफ अटेंशन पे भी अगर हम ध्यान रखें तो विल बी वेरी केयरफुल कि किन एस्पेक्ट्स पे किन बातों पे किन थॉट्स पे अटेंशन देना चाहिए और किन पर नहीं देना चाहिए बिकॉज क्योंकि लोग कई बार कहते हैं हम सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं सो दे हैव टू रिमेम्बर कि जितना वो सोच रहे हैं दे आर पुटिंग एनर्जी इन टू दैट थॉट एंड दैट थॉट विल ग्रो एंड फिर जो हम कहते हैं कि राई से
0: पहाड़
1: बना लिया एंड शिव बाबा आकर हमको सिखाते हैं पहाड़ को
0: राई राई बना लो बहुत सुंदर
1: और राई को भी कहते हैं रुई बना लो क्योंकि राई भी बाबा कहता है हार्ड है रुई सॉफ्ट होती है ब्लो एंड इट विल फ्लो
0: फ्लो हो जाएगी वाह दैट्स रियली नाइस इनफैक्ट ये पूरा थॉट ही एक इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि आपका एक भार उतर गया
1: Absolutely.
0: एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल जो है आकर्षण का जो एक कानून है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो yes. जी जान से वो आप तक पहुंचाने की बात करती है ये कितना काम करता है
1: ये 110% इट वर्क्स कि आप कोई एक थॉट ले लीजिए इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव तो इसीलिए वो बहुत क्रिटिकल है लेकिन हम पॉजिटिव करें कि अगर आप एक पॉजिटिव थॉट ले लीजिए एंड यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट एब्सोल्युटली यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट सारे लोग सारी सिचुएशंस सारी परिस्थितियां चेंज होती जाएंगी एंड दे विल यू नो ऑल राइट वंस विल गेट अट्रैक्टेड टू यू दैट्स वेयर डेस्टिनी गेट्स क्रिएटेड ना एज माई थॉट सो विल बी माई डेस्टिनी क्योंकि जैसे मेरी थॉट सारे लोग सारी परिस्थिति सब बदलती जाएगी उसके अनुसार तो इसलिए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सिचुएशंस पॉजिटिव पीपल विल गेट अट्रैक्टेड ऑपोजिट तो ऑपोजिट अब क्या हो रहा है हम वो थॉट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सो वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट एंड वी होल्ड ऑन टू इट
0: इन फैक्ट वी कीप ऑन डाउटिंग
1: दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई ऑलवेज शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल कि व्हाई डू यू डाउट क्योंकि आपके डाउट करने से सामने वाली आत्मा के अंदर वो थॉट क्रिएट होता जा रहा आप ट्रस्ट नहीं कर रहे एंड यही अगर आप ट्रस्ट कर ले तो सामने वाली आत्मा के अंदर ट्रस्ट बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू फ्लो टूवर्ड्स यू तो जैसे लोग कहते हैं ना हमारा विजन हमारा गोल तो एक विजन क्रिएट कीजिए एंड होल्ड ऑन टू इट लेकिन उसके अंदर फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए यू नो कई बार कहते हैं हाँ मुझे ये बनना है लेकिन बहुत मुश्किल है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं देन इट विल नॉट हैपन
0: अच्छा एक और जो बात कही जा रही है कि आप कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस कीजिए
1: हाँ
0: यू नो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में करते हैं देन बी श्योर कि वो आएगा
1: दैट इज व्हाट दिस इज दैट इज व्हाट इट इज तो कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस करें मतलब व्हाट
0: थॉट क्रिएट किया
1: वो कहते हैं ना सारा कुछ चेंज हो जाएगा आपकी वो थॉट को रियलिटी बनाने में बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ द माइंड बट वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट तो सारा कुछ चेंज हो जाता है उसको रियलिटी बनाने में
0: अच्छा इनफैक्ट हम उसे टाइम फैक्टर में भी कभी बांध देते हैं यहाँ तक हो जाना चाहिए
1: राइट
0: सो वो हमें एक इंडिपेंडेंट
1: तो वो भी डाउट हो जाता है ना कि एक महीने से मैंने ये सोचा था नहीं हुआ तो वो भी तो नहीं आप एक थॉट क्रिएट कीजिए एंड इफ यू वॉन्ट टू सेट अ टाइम फैक्टर टू इट तो वो टाइम फैक्टर में भी आप फर्मली बिलीव करते हो
0: कि मेरे को महीने में ही हो जाएगा
1: हो जाएगा एब्सोल्युटली तो वो हो जाएगा एंड इम्पॉसिबल थिंग्स हैपन माइंड इतनी पावरफुल शक्ति है कि उसी से तो सारी शक्तियां चल रही हैं इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की थॉट क्रिएट
0: और किस तरह की डिमांड कर रहे हैं क्या मांग रहे हैं एक्चुअली ये बहुत
1: क्योंकि वो रियलिटी बनता जाएगा तो वो नेगेटिव थॉट्स को जितना हो सके
0: और कहीं अनजाने में हम कुछ ऐसा मांग लें जो कहीं बाकी सारी चीजों के लिए गलत हो जाए
1: हाँ एब्सोल्युटली तो दैट्स व्हाई एवरी थॉट इज वेरी क्रिटिकल बहुत ध्यान से अपने संकल्पों को क्रिएट करना चाहिए और उसमें मेडिटेशन हेल्प करता यू नो राइट एंड रॉन्ग थॉट्स एंड कहीं अगर वो गलत अनकंफर्टेबल थॉट्स आ भी रहे हैं स्टॉप एक मिनट स्टॉप अपने माइंड को बताएं Not needed out. That's all. एक बार आएगा दो बार आएगा चार बार आएगा It will get over. लेकिन अगर उसको रुकने के लिए नहीं बोलेंगे
0: तो वो आता जाएगा, तो वो आता और वो फिर बिल्डअप हो जाएगा। आई एक्चुअली मेरे
1: साथ
0: भी हुआ,
1: अटेंशन गोज,
0: यू नो व्हेन यू सेड कि आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक इमेज आती है,
1: हाँ.
0: तो जब तक वो इमेज ना आए तब तक आप इंतजार कीजिए। एक्चुअली इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन आई वाज स्टार्टेड मेडिटेशन लाइक दिस थिंग हैपेंड कि वो अगर आप वो लाइट को देख रहे हैं वो इमेज नहीं आती है, कोई ना कोई इमेज आती है, आप उसके पीछे भागते हैं, देन यू ब्रिंग इट बैक
1: सो दैट्स द डिसिप्लिनिंग ना, और ये कॉन्सेंट्रेशन है। एक और जो लॉ बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है और जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, दैट्स लॉ ऑफ बिलीफ। ओके, व्हाटएवर यू बिलीव विद फीलिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन। व्हाटएवर यू बिलीव विद फीलिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन। जो आप फीलिंग क्रिएट करते हैं वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। और इसमें भी हमारे अलग अलग प्रकार के बिलीफ्स होते हैं। कई होते हैं बहुत फेटल, खतरनाक बिलीफ्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकती हूँ, मैं इनके सामने ये नहीं कर सकती हूँ, गर्ल्स शुड नॉट क्लाइंब ट्रीज, यू नो दीज ओल्ड बिलीफ्स। सो व्हाट हैपेंड, गर्ल्स डिडंट क्लाइंब ट्रीज फॉर सो लॉन्ग। तो ये जो फेटल बिलीफ्स है ना, ये हमें ग्रो नहीं होने देते। तो जो हम बिलीव करेंगे वो ही होता जाएगा हमारे साथ। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने बारे में कैसे बिलीव्स बनाते हैं। हमें बाइंड नहीं करना चाहिए अपने आप को इस तरह की चीजों में कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। दूसरा है सर्वाइवल बिलीव्स,
0: मैं सर्वाइव, आई विल सर्वाइव,
1: जितना है अभी कर लो, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये जो बिलीफ एक बन गया है, उसकी वजह से हम जो सारी ये भाग दौड़ एक दूसरे को नीचे खींचते ना, बिकॉज हमने समझा कि उनको अगर मिल गया तो मेरे को नहीं मिल सकता, यू नो, एंड इतना ही अमाउंट अवेलेबल है सिर्फ, तो इधर दे गेट इट और आई गेट इट। तो हम सब एक जैसे एक दूसरे को गिरा के नीचे खींच के वो प्राप्त करने में लग गए। तो ये बिलीफ सिस्टम ने भी हमारी पूरी यू नो वे ऑफ वर्किंग को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया।
0: और इतने कॉन्फिडेंस से कहा जाता है आजकल कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं। पर ये भी हम एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं कि ये है,
1: दिस इज अ बिलीफ, दिस इज अ बिलीफ कि ये कॉम्पिटिशन है, ये कोऑपरेशन नहीं है, हम कट्ठे मिलकर काम नहीं कर सकते, या तो वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा।
0: एक लड़ाई है, कंटिन्यूस लड़ाई है,
1: कंटिन्यूस वो है। कट्ठे मिलकर काम करेंगे और ज्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे, नो, इट्स ईदर हिम और मी। तो इसलिए वो कंपटीशन वो चलता रहता
0: है। तो कई सारे लॉज जो है
1: नहीं, और ये बिलीफ्स में भी एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ब्लॉक करने वाला बिलीफ, जो मैं दूसरों के प्रति क्रिएट कर देती हूँ, ये ऐसे ही है,
0: फिनिश्ड,
1: देन आई विल नॉट चेंज माई एटीट्यूड towards you. तो उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी जो आपकी तरफ जाती है। तो कभी भी किसी को लेबल्स नहीं दे हम, ये तो है ही गुस्से वाले, ये तो है ही ऐसे, यू नो एवरीवन इज चेंजिंग,
0: मार्जिन नहीं छोड़ते, यू नो कि वो चेंज हो सकता है।
1: हमने एक उनको टाइटल दे दिया कि ये है ही ऐसे, तो जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे वी विल फील लाइक दैट अबाउट देम, सो दैट एनर्जी which should be of a better quality, it will not go because my that belief will create that energy. And what I could change it to, empowering belief. Pehle ho raha tha ki main nahi kar sakta, main kar sakta hu. Shaktishali belief system apna banaye, main kar sakta hu, kyun nahi kar sakta, main inke sath apne relation change kar sakta hu. So that belief, everything
0: again, कितने सारे beliefs हम साथ साथ लेके चलते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता,
1: absolutely.
0: You know, सारी खुशियाँ नहीं मिल सकती, ऐसा होता है,
1: these are all blocking beliefs. तो इसकी वजह से वो नहीं मिलती है, क्योंकि जैसा आप बिलीव करते जाएंगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द ट्रू बिलीव्स, मैं आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, ये भी एक बिलीफ है, इसको एक्सपेरिमेंट करें। जब ये आपके लिए वर्क कर जाता है, इट्स अ ट्रू बिलीफ, इट्स द ट्रूथ फॉर यू। अगर वो ट्रूथ नहीं आप फील करते हैं तो ईदर इट वॉज नॉट राइट और देन आई डिडंट डू इट द राइट वे, मैंने उस राह पर ठीक से चल कर नहीं देखा, या वो रास्ता ही ठीक नहीं था। लेकिन हर अपने बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए टिल इट बिकम्स द ट्रूथ। तो अपने बिलीफ्स को बहुत ध्यान से, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लॉज, सारा दिन जो वर्क कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इट्स बिकॉज मैंने वो बिलीफ होल्ड किया हुआ है, मैंने वो थॉट क्रिएट की हुई है, मैंने वो थॉट को अटेंशन दी हुई है, तो दैट विल बी माई रिजल्ट। इट्स ऑल सेम विद कार्मिक फिलोसफी, लेकिन धीरे अलग अलग अगर ध्यान दें तो वी अंडरस्टैंड कि हर चीज जो हमारी तरफ आ रही है
0: ये लॉ ऑफ कर्मा के हिस्सा बन जाते हैं एक्चुअली. अगर हम तोड़ने पे आए तो लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ बिलीफ की बात, सारे बिलीफ वही आ जाते हैं इनफैक्ट. और अगर हम पीछे मुड़कर देखें, जो हमने सफर जब शुरू किया था तो आपने यही कहा था कि हमारा थॉट जो क्रिएट होता है वो बिलीफ से होता है. उसमें तीन चीजों से हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे थे, बिलीफ था. सो बिलीफ एक्चुअली बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: फैक्टर. एंड नाउ सोल कॉन्शियसनेस इज दैट बेसिक बिलीफ सिस्टम जो हमें करेक्ट करना है कि आई एम अ बॉडी, तो ओ मैं मरने वाली हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगी, ये सब कुछ मेरे से चला जाएगा, जितना है अभी इकट्ठा कर लो. तो होल्ड किया, नहीं मिल रहा था, गुस्सा आना शुरू किया, किसी ने छीनना लगे तो डर लगा, औरों से छीनने लगे तो ग्रीड, कहीं चला ना जाए, अटैचमेंट, फियर. सो ऑल दीज वाइसेस केम इन विद वन बिलीफ
0: सिस्टम.
1: बॉडी
0: इन फैक्ट बट लेकिन इट्स अमेजिंग यू नो, जितने लोगों के साथ जब भी मेरी बातचीत हुई है अब, लाइक व्हेन वी से जैसे कि पर ये बॉडी नहीं हूं मैं, ये कैसे मैं मान लूं, बट द मोमेंट वी से माय बॉडी यू नो लाइक दैट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्क्ड यू नो बिकॉज द माइंडसेट एक चेंज होते हैं. सो सचिव चिमानी, यहाँ एक और बिलीफ सिस्टम है या एक और बात जो कहीं ना कहीं मुझे खटकती रही है, मेरा सवाल अपना पर्सनली हो जाता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं जो भी मैंने किया है या जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं करके भी आई हूं या इस जन्म में भी जो मैंने किया है, इस बर्थ में भी, तो क्या जब मैं कहीं ये कहा जाता है कि मैं वहां जाकर सारे पाप धो सकती हूँ, मैं मतलब कई बार मुझे एक क्वेश्चन होता है कि मैं सारी जिंदगी गलत करती रहूंगी, फिर मैं वहां जाकर अपने सारे पाप धो लूंगी, तो इसका मतलब मैं मुझे परमिशन है कि मैं सब कुछ, दिस इज माई माई क्वेश्चन.
1: अगर आप किसी का मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद आप उस चाकू को धो देते हैं, तो क्या पाप खत्म हो गया?
0: डेफिनेटली.
1: क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया गया था, तो पनिशमेंट चाकू को नहीं मिलती है, तो ना चाकू धोने से पाप धुलने वाले हैं. इसी तरह जो हाथ है जिसने उस चाकू को पकड़ा हुआ था, इसको भी तो आप नल के नीचे धो देते हैं, खून उतर जाता है, पाप धुल गया?
0: नहीं,
1: क्योंकि ये भी उतना ही इंस्ट्रूमेंट है जितना इसके हाथ यू नो इसमें जो पकड़ा हुआ चाकू था. लेकिन हमने अभी तक क्या समझ लिया था, चाकू इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी कोई गलती नहीं, बाकी पाप इसने किया, इसने तो नहीं किया, इसको कोई नॉलेज नहीं.
0: लेकिन
1: है, हम धो इसको देते
0: से जाते हैं लोग,
1: हम धो इसको देते हैं.
0: यहाँ ये सवाल मेरा ये है कि मैं मान रही हूँ यू नो कि जो पाप है उसको ना धोने से ना किसी से जा
1: नहीं
0: सकता.
1: शरीर को धोने से नहीं करेगा, क्योंकि पाप करने वाला या पुण्य करने वाला शरीर नहीं है. आई द सोल एक्ट थ्रू द बॉडी, तो किसी को सुख दिया, किसी को दुख दिया, मैं आत्मा कर रही हूँ. ये मुख नहीं कर रहा, ये हाथ नहीं कर रहे, ये पांव नहीं कर रहे, पर हम धो सिर्फ इनको रहे. यू नो जो भावना थी, देखो अगेन इट्स बॉडी कॉन्शियसनेस, भावना बहुत अच्छी है लेकिन उस कॉन्शियसनेस से जाना पड़ेगा आपको. जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए कि मुझ आत्मा ने ये विकर्म किए हैं, मुझ आत्मा को परमात्मा को याद करके अपने संस्कारों को धोना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, तब वो पाप धुल रहे हैं. मैं अपनी वही ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में जाऊं और सिर्फ शरीर को वहां तक ले जाऊं और शरीर वापस आ जाए, तो वो तो सिर्फ शरीर धुला, वो तो रोज ही धुलता है. यू नो भले वो बहुत ही पवित्र जल में धुला, लेकिन फिर भी शरीर धुला, लेकिन उसने पाप नहीं किया था. तो कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, वो संस्कारों को परिवर्तन करना है. तो हम कहते हैं कि ज्ञान गंगा स्नान, कि ज्ञान की एक एक बूंद जब इस आत्मा पर गिरेगी और इससे वो जो पुराने इम्प्रेशन है उसको वो धोती जाएगी और नए इम्प्रेशन बनते जाएंगे, तब पाप धुलते जाते हैं. स्थूल धुलाई से सिर्फ नहीं हो पाएगा.
0: यहाँ एक छोटी सी बात मैं ये जानना चाहूंगी कि गहरी आस्था से जब लोग जाते हैं, जब ये मान के जाते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अपने सारे पाप धो के आऊंगे, अपने कर्मों की माफी मांग के भी आएंगे या जो करके आएंगे, डज इट वर्क?
1: सी अगेन, इट वर्क्स इफ यू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. यू नो लेट्स से कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो मैंने बहुत पाप किए होंगे इस पूरे साल के अंदर, मैंने अनेक आत्माओं को दुख दिया होगा और वो सारा अक्यूमुलेट हो गया है. अब मैं जा रही हूँ स्थान पर ये सोच के कि ये सारे धुल जाने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि फिर आने के बाद मुझे अंदर एक अंश भी क्रोध का नहीं रहना चाहिए. तब तो मैं आगे अक्यूमुलेट नहीं करूँ ना, तब कहेंगे सही मायने में कि कुछ धुलाई हो गई. लेकिन गए बहुत अच्छी आस्था के साथ, रियली बहुत अच्छी फीलिंग के साथ जाते हैं, लेकिन आने के बाद क्या किया?
0: आने के बाद तो फिर वही वैसा का वैसा
1: देन
0: जिंदगी।
1: फिर कैसे हम कह सकते हैं ना
0: हाँ
1: कि रियली वो उतने स्ट्रॉन्ग उसके साथ गए थे? पश्चाताप मतलब परिवर्तन, पश्चाताप मतलब नहीं कि हाय मैंने क्या किया और फिर वही किया। शिव बाबा निराकार परमात्मा हमें बताते हैं पुरुषार्थ मतलब एफर्ट, मतलब ये कि एक बार की हुई गलती दूसरी बार नहीं होनी
0: रिपीट
1: चाहिए।
0: नहीं होनी चाहिए।
1: क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हो जाएगा हो जाएगा, तो शिव बाबा से कब कब होगा, मतलब आप वही गलती करते रहेंगे और कहेंगे ये पुरुषार्थ चल रहा है, हो जाएगा। सिर्फ पुरुषार्थ का भी मतलब है एक बार की हुई गलती फिर नहीं होगी, देन इट इज सही मायने में वो हिसाब किताब को फिनिश करना।
0: सचिन तिवारी, बहुत सी अभी बातें बाकी हैं, लेकिन वक्त है कि अब हम आगे बढ़े। लेकिन चलते चलते बहुत से लोगों के सवाल है। एक छोटा सा ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोग इनफैक्ट ये भी समझने लग गए हैं कि शायद मैं भी बता रही हूँ ये बात, लोग जब मुझसे बात करते हैं कि इतनी क्लैरिटी से कैसा ये हो गया है, सदियों से हम सुनते आ रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ये जो बातचीत है ये हमें समझ में आ रही है? अभी तक हमें समझ क्यों नहीं आ रही थी? क्या है ऐसी बात, क्या है ऐसा इस ज्ञान में जो मुझे इतना क्लियर, इनफैक्ट मुझे भी और बहुत से हमारे दर्शक हैं तो वो यही जानना चाहते हैं, मुझसे भी बहुत बार पूछते हैं कि आपको ये आता है, आपको पता है पहले? तो मैं उन्हें ये बार बार कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था बट मुझे क्लैरिटी है, ऐसा कैसे है?
1: जैसे आपको नहीं पता था ना, सुनने सुनते आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा और फिर आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे ही हम में से किसी को भी नहीं पता था, ये हम में से किसी को भी नहीं आता था। मैं मतलब इंडिविजुअली अपने लिए कह सकती हूँ कि वही पुराने संस्कार, वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, लेकिन जब निराकार परमात्मा ने स्वयं आकर ये ज्ञान दिया है, अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हमें ज्ञान आत्माएं दे रही थी, जो हमने पहले भी देखा कि कोई गलत नहीं था, लेकिन हर आत्मा ने शरीर लेने के कारण परसेप्शंस में बहुत सारी वेरिएशन आती है। जो इस बॉन्डेज से ऊपर होगा वो पूरी पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इस बॉन्डेज से ऊपर सिर्फ एक निराकार परमात्मा है। तो जब निराकार परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जब वो स्वयं आकर ये ज्ञान देते हैं, सुप्रीम टीचर है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सिंपल है, मैं कौन हूँ वो कौन है, जिसको राइट नॉलेज है जब वो आकर देते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, एंड फिर वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ, हमें समझ में आने लगता है, वी गेट द रिजल्ट इन आवर लाइफ, एंड दैट्स हाउ वी ओनली बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। अभी भी वी आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट हु इज सिटिंग हियर, ज्ञान सारा उसका है, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी।
0: That's great actually, because वही क्लैरिटी जो है वो समझ में आती है।
1: अभी तक जितने भी हम संस्थाओं में गए, जहां भी गए, आत्माएं ज्ञान दे रही थी, महान आत्माएं, संत आत्माएं, वेरी प्योर सोल्स, धर्म आत्माएं, लेकिन परमात्मा डायरेक्ट ज्ञान देते हैं।
0: बिल्कुल, और वो ज्ञान तभी इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे साथ है। सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। ये बात तो सामने आती है कि क्यों ये ज्ञान जो है वो इतना क्लैरिटी से हमें समझ में आ रहा है। ये बात जो छोटी सी बात थी, कब से सुनते आ रहे थे।

0: या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
1: हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
0: इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अभी जो बात हमारे दिल में चल रही है वो ये है कि आज के इस दौर में ऐसा क्या हो गया है कि हर आत्मा, हर इंसान इतना परेशान नजर आता है, और सिर्फ बड़ा व्यक्ति नहीं, बच्चों से ये शुरुआत नजर आती है। क्या हो चुका है ऐसा कि आज हमें बच्चा बच्चा दुखी और बोझ से दबा दिखता है? अगली कड़ी में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

अच्छा सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो

0: बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: गुड मॉर्निंग भूना।
1: गुड मॉर्निंग भैया।
0: ये मेरे गालों पे रंग किसने लगाया सुबह सुबह?
1: मैंने भैया।
0: तुमने? क्यों?
1: होली पे एग्जाम्स थे ना, इसलिए मैंने आपके साथ होली नहीं खेली, इसलिए आप खेल रही हूँ।
0: ओ, तो आज तुमने होली की कमी पूरी कर दी।
1: हाँ।
2: अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये?
0: भूना मेरे साथ होली खेल रही है दीदी।
2: लगता है तुम लोग को होली का जो त्योहार है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, होली फेवरेट फेस्टिवल किसका है यहाँ पे?
3: मेरा दीदी।
2: सैंडी का? अच्छा, तुम्हें होली बहुत पसंद है?
3: बहुत।
2: होली क्यों बहुत पसंद है?
3: कि मजा आता है होली, सबके साथ खेलते हैं ना, रंग लगाना, फिर अलग अलग कलर्स, सात रंग, अच्छा लगता है बहुत।
2: होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तक की जितनी भी होली तुमने खेली है, तुम्हारी सबसे फेवरेट होली कौन सी थी?
3: सबसे फेवरेट होली 2 साल पहले।
2: 2 साल पहले? और उसमें ऐसा क्या स्पेशल हुआ?
3: मम्मी पापा मैं भैया सब साथ में खेले थे, और ज्यादातर मैंने होली पापा के साथ खेली थी।
2: मतलब पापा के खूब रंग लगाया था?
3: पापा ने मुझे उठा के ना टब में डाल दिया था।
2: अच्छा,
0: पानी के टब में या रंग वाले टब में?
3: पहले पानी वाले टब में डाला, फिर रंग डाल दिया ऊपर से।
2: मतलब सैंडी का पूरा कलर चेंज हो गया। होली की स्पेशलिटी ये होती है। क्या होती है होली की स्पेशलिटी?
3: अलग अलग रंग।
2: बिल्कुल, रंग का ही तो त्योहार है होली। तो जब तक रंग बिरंगे ना हो तब तक मजा कैसे आएगा?
0: इस दिन तो दुश्मन भी इतने प्यार से होली खेलते, इतने प्यार से रंग लगाते कि ऐसा लगता है कि वो भी अपने ही
2: है। हाँ, बात तो सही है, कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं।
3: हाँ दीदी।
2: तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको होली का, जो आपके दोस्तों के साथ आपने होली खेली हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमें बताना चाहें?
3: फिर हम लोग थोड़ा केफ्री केफ्री में आ गए, फिर हम लोगों ने फोटो खींची, फिर इसको अभी भी अपलोड करा।
0: दीदी आपको पता मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: होली बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें पंकज?
0: हाँ दीदी।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि लोग होली को होली के तरीके से नहीं खेलते।
3: हाँ।
2: अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से होली खेलनी चाहिए?
0: होली खेलनी चाहिए मतलब होली रंगों का त्योहार है, और इसमें जितना रंग लगावे उतना अच्छा है, लेकिन इस त्योहार का लोग अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई कीचड़ में किसी को पटक देता है, तो कोई कपड़े फाड़ देता है, और एक दूसरे को नाराज कर लेते हैं ऐसे त्योहार पे।
2: बात तो सही है, होली हमेशा हमें लोगों को खुश करने के लिए खेलनी चाहिए, और अगर किसी को परेशानी हो तो हमें वो चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? और किसी को जबरदस्ती रंग लगाना, कीचड़ में डालना, परेशान करना, ये सब तो हमें ना करना चाहिए और ना होने देना चाहिए।
0: इसलिए मुझे सिर्फ होली देखना ही अच्छा लगता है, लेकिन खेलने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता।
2: तो आकाश, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है?
4: दीदी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन।
2: अच्छा, और रक्षाबंधन क्यों?
4: क्योंकि दीदी रक्षाबंधन में ये होता है कि जब कोई सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो राखी बांधने के साथ साथ वो इतने सारे स्वीट्स मेरे मुंह में ठूस देती है कि खाते खाते मेरे को बहुत मजा आता है, और वो इतने टेस्टी होते हैं ना, मन करता है पूरा प्लेट ही में चटकर।
2: और आपकी सिस्टर्स, आपको कितनी सिस्टर्स राखी बांधती है?
4: ऐसे तो मेरी कजिन्स में 21 सिस्टर है, लेकिन राखियां मेरे पास सिर्फ 8 आती है। मुझे रक्षाबंधन इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है, और जब भी कोई मेरी कजिन सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे को भी एक तो बहन दे।
2: ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, बहनें इतनी प्यारी होती है ना।
3: हाँ दीदी।
0: हाँ, लेकिन कजन सिस्टर भी तो अपनी अच्छी बहन होती है।
3: हाँ।
2: ये बात पंकज ने बिल्कुल सही कही, आपकी बहन नहीं है ऐसा दोबारा नहीं सोचना, क्योंकि वो सभी आपकी बहन है ना। तो रक्षाबंधन पे वो आपसे मिलने आती है?
0: नहीं, वो मेरे लिए राखी भेज देते हैं।

0: तो रक्षाबंधन पे तो बहन की याद आती होगी।
1: बहुत।
0: और भुवना, आपको रक्षाबंधन अच्छा लगता है?
2: हाँ।
0: क्यों?
2: मैं भी मेरे भाई लोगों को राखी बेचती हूँ।
0: आप भी राखी बेचते हो अपने भाई लोगों को? तो आपको रक्षाबंधन में और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बताओ?
2: मुझे सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं लगती है, लेकिन बुरा लगता है एक भाई नहीं है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन स्कूल हो जाता है।
3: हम है ना भुवना, हमें कैसे भूल गई तुम?
0: हाँ, मतलब
4: हमारा हाथ सदैव आगे है।
0: मतलब अब कुछ और राखियाँ बढ़ने वाली हैं जो भुवना को भेजनी होगी, है ना? बच्चों, भाई बहन का रिश्ता हमारे इमोशन से होता है, तो अगर मेरी सगी बहन या सगा भाई नहीं है ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए।
1: ओके दीदी।
0: कोई भी हमारे आसपास है जिसे हम बहन या भाई मानते हैं, कजिन हो या ना हो, तो भी हम रक्षाबंधन मना सकते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: है ना?
1: हाँ
3: दीदी।
0: क्या आप लोग मुझे ये बताओ, कभी अपने भाई बहन या उसको लेटर्स लिखते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी, मैं लिखती हूँ।
0: लिखते हो? और पंकज और सैंडी?
1: मैंने एक बार लिखा था।
3: और दीदी, मैंने कभी नहीं लिखा।
0: और आकाश? आजकल ईमेल और एसएमएस का जो जमाना है, लेकिन लेटर्स लिखने का भी अपना अलग मजा है।
1: मैंने ग्रीटिंग कार्ड लिखा था।
0: ग्रीटिंग कार्ड?
1: हाँ।
0: जब रक्षाबंधन होता है तो अपने भाई बहन को हम लेटर्स या फिर ग्रीटिंग कार्ड लिख के भी भेज सकते हैं, उन्हें हमारी प्रेजेंस फील हो जाएगी, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार से कौन कौन लेटर्स भेजेगा?
3: मैं।
0: बस सैंडी?
2: मैं भी।
0: और आकाश?
4: मेरे लिए तो पहले से ही दीदियाँ राखी में चिट्ठी भर के भेज देती हैं।
0: चिट्ठी भर के भेज देती
4: हैं।
0: अच्छा, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप सबसे फिर से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना, क्योंकि रोज हमारा एक त्योहार की तरह बीत सकता है अगर हम वापस उस सेलिब्रेशन के मूड में रहें और सबसे प्यार से बात करें तो रोज ही एक फेस्टिवल हो सकता है।
1: हाँ दीदी,
0: है कि नहीं। तो अभी हमने होली की बात की और रक्षाबंधन की बात की, पंकज तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा फेस्टिवल कौन सा अच्छा लगता है?
2: मुझे भी भुवना की तरह दिवाली पसंद है।
0: दिवाली पसंद है, और दिवाली तुम्हें क्यों अच्छी लगती है?
2: दिवाली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही किसी से बहस होती है। हम अपने घर पे उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं।
0: अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा और नहीं होता इसलिए आपको दिवाली पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और दिवाली में सबसे स्पेशल चीज क्या करते हो तुम?
2: स्पेशल चीज तो हम दिवाली को हम सबसे स्पेशल ये करते हैं कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को मिलते हैं और उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे जो लक्ष्मी पूजा होती है उसकी मिठाइयाँ खाते हैं।
0: अच्छा, लक्ष्मी पूजा के बाद जो मिठाइयाँ मिलती हैं इसीलिए पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और पटाखे नहीं जलाते?
2: पटाखे तो बहुत जलाते।
0: बहुत जलाते हैं?
2: हाँ।
1: फोड़ते हैं।
0: अच्छा, और फेवरेट पटाखा कौन सा है?
1: सुतली बम।
0: अच्छा, ये तो सैंडी का फेवरेट हुआ, पंकज का फेवरेट कौन सा है?
2: लक्ष्मी बम।
0: और भुवना, दिवाली तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना?
3: हाँ।
0: और तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: टिकड़ी।
3: चक्री।
0: चक्री देखना अच्छा लगता है और सबसे मिलना भी अच्छा लगता है। दिवाली के दिन तो हम सबसे मिलते हैं।
1: हाँ दीदी।
0: और लाइट्स और दिए जलाना किसे अच्छा लगता है?
4: मुझे।
0: आकाश को?
4: हाँ,
0: क्योंकि
1: मुझे थोड़ी थोड़ी रंगोली बनानी आती है।
0: अरे वाह, रंगोली बनानी आती है?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: अच्छा, क्या बनाते हो रंगोली में?
1: जैसे दिए टाइप, मतलब दीदी है ना हमारे पास में रहती है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है तो वो थोड़ा उनकी हेल्प कर देता हूँ मैं, रंग ला के देना और सब करना। अरे तो थोड़ा तो आता है ना।
0: और आकाश को रंगोली बनानी आती है, दिए जलाते हैं?
4: हाँ, रंगोली बनानी आती है।
0: रंगोली बनानी आती है, कभी रंगोली बनाई है आपने? क्या बनाते हो?
4: रंगोली में एक चक्री जैसा गोल सा बनाता हूँ। हर दिवाली में अलग अलग तरह की बनाता हूँ।
0: तो लास्ट दिवाली में आपने क्या बनाया था?
4: लास्ट दिवाली में मैंने बनाया था एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, उसके अंदर फ्लावर था, फिर फ्लावर में व्हाइट कलर से मैंने लिखा था हैप्पी दिवाली।
0: अरे वाह,
1: वाओ, नाइस।
0: ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था।
1: अच्छा, तो मेरी तरह नहीं बनाते हो?
0: और आकाश, क्या क्या करते हो दिवाली पे?
4: दिवाली में घर में सबसे पहले जो दिए खरीद के लाता हूँ, दिए भी मैं ही चूज करता हूँ, दिए को धोता हूँ, दिए में डालने के लिए बत्ती बनाता हूँ, सबसे रात में घर पे मैं ही दिए सब जगह में लगाता हूँ, और जब सब जगह दिए लग जाते हैं तो सारे घर की लाइट ऑफ कर दो, ताकि मतलब बाहर से जाने से इतना अच्छा चमकता है ना घर, बहुत सुंदर लगता है।
0: बात तो सही है, देवों की रोशनी से जब घर जगमगाता है तो वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है ना। और आजकल तो इलेक्ट्रिक दिए और इलेक्ट्रिकल कैंडल्स भी आ गई है।
1: हाँ दीदी, बहुत
0: है ना,
2: लेकिन तो हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए।
0: हाँ, हमें ओरिजिनल दिए और ओरिजिनल कैंडल्स यूज करने चाहिए।
1: हाँ,
4: आखिर भारत की परंपरा
1: है
0: और हम बच्चे ही तो उसे आगे लेके जाएंगे। हाँ, और फिर ओरिजिनल में जो मजा है
1: वो लेटेस्ट में नहीं है।
0: हाँ, सही बात है,
4: ओरिजिनल में मजा आता है ना, जैसे कोई बड़ा सा बम फोड़ दिया हमने, जैसे सुतली बम फोड़ दिया, भाड़ करके आवाज आई तो दिए बुझ जाते,
1: फिर वापस जलाना उसे।
4: हाँ,
0: उसमें भी मजा आता है।
1: और ज्यादातर दिए हम ही बुझाते हैं, बम फोड़ते दिए लेके जाते हैं।
2: मैंने भी दियो के नीचे बम रख के बहुत फोड़े।
1: मैंने भी बहुत।
4: एक दिन मैंने क्या किया था, छोटी दिवाली थी तो बीच में सुतली बम रख दिया था, चारों तरफ से रेत ढक दी थी, फिर उसको जला दिया था, फट करके फूटा, सारा रेत आजू बाजू फैल गया।
0: लेकिन हमें पटाखे जलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
2: हाँ दीदी, एक बार मेरा हाथ जल गया था।
0: हाथ जल गया था?
1: मेरा
0: कैसे?
1: भी मेरा तो जो अनार होता है ना तो वो फूटता तो है नहीं, तो मुझे लगा ये फूटता नहीं है, मैंने अनार धरा लिया जला के, फिर हाथ में लेके ऐसे कर रहा था, फिर वो फूट गया तो थोड़ा हाथ में चोट लग गया था।
0: हाथ में चोट लग गई थी? हाँ। ये कितनी पुरानी बात है सैंडी?
1: ये पुरानी बात 3 साल पुरानी बात है।
0: तो अभी आपका हाथ फिर ठीक हो गया?
1: हाँ, ज्यादा चोट नहीं लगा था, तब से मैंने तो अनार को भी जला के दूर भाग जाता हूँ।
0: हाँ, हम एक लंबे से अखबार का या किसी लंबी सी चीज का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम उस पटाखे से दूर रहें, और कभी भी जब तक वो पूरी तरीके से बुझ ना जाए, उसको देर ना हो जाए, तब तक उसे हाथ में ना लें और ना ही उसके पास जाएं।
2: हाँ दीदी, मैंने नोटिस किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि अनार में, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होता है कि अनार फूट जाते हैं।
1: हाँ दीदी, आजकल ऐसे अनार अच्छे नहीं आ रहे।
4: हाँ, करीब जब मैं 5 साल का था तो मेरे पापा ने करीब 2000 के पटाखे लेकर आए थे, उसके अंदर करीब 30 अनार थे। तो हमने पहला बॉक्स खोला, तो बॉक्स में से जब अनार जलाना चालू किया ना, तो अनार करीब मेरे से 2 कदम सामने था। मैं और पापा अनार को जला के देख रहे थे। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, इतनी जोर से फूटा, आंख में उसका जो चूरा होता है ना वो घुस गया था। चारों तरफ से धुंधला धुंधला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं धुआं दिखाई दे रहा। काफी चेहरे पे छींटा मारा, तब जाके आंख की रोशनी साफ हुई, तब ठीक तरह से देख पाया।
0: आजकल पटाखे भी ऐसे आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम जब दिवाली के बाद अखबार पढ़ते हैं तो कई ऐसी दुर्घटनाएं हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं, जो कि फेस्टिवल का सारा मजा तो खत्म कर ही देती हैं, बल्कि उनसे हमें सबक भी लेना चाहिए।
1: हाँ, आजकल के पटाखे काफी खराब आ रहे हैं।
0: पटाखों को कम जलाने में हमारे पर्यावरण की भी भलाई है और हमारी भी।
1: हाँ, वायु प्रदूषण बहुत होते हैं।
0: और भुवना, आप क्या क्या करते हो दिवाली में?
3: मैं भी बहुत सारी पटाखे जलाती हूँ।
2: लेकिन तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल है, तो कुछ स्पेशल करती होगी तुम?
3: हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्नेक्स को जलाती हूँ।
0: स्नेक्स?
1: हाँ, मस्त आते, जलाओ अंदर सांप निकलते हैं।
4: छोटे छोटे
1: छोटे छोटे आते पीछे से आते हैं।
0: अच्छा, वो छोटी छोटी जो ब्राउन कलर की गोलियां आती हैं,
1: ब्लैक
0: कलर की गोलियां आती हैं, वो आपको बहुत पसंद है भुवना? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको दिवाली के बारे में?
3: हर दिवाली में सारी फैमिली हमारी घर आ जाती है, तो इतना फुल फुल घर, इतना अच्छा लगता है। मुझे फैमिली बहुत पसंद है।
0: फैमिली बहुत पसंद है क्योंकि सब लोग मिलते हैं और साथ में इकट्ठा होते हैं, इसलिए आपको दिवाली बहुत अच्छा लगता है?
3: हाँ दीदी।
0: ओके।
3: और इस फेस्टिवल पे इतना पसंद क्योंकि मेरे पापा भी खेलते हैं।
0: आपके पापा भी आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आपको दिवाली अच्छी लगती है?
3: हाँ दीदी। कोई भी फेस्टिवल मेरे पापा नीचे नहीं आते, लेकिन जब दिवाली होती है सारी फैमिली नीचे आती है और इंजॉय करते हैं, और लास्ट पे आइसक्रीम खाते हैं।
0: मतलब अगली दिवाली पे सब लोग अपनी आइसक्रीम खा सकते हैं कि नहीं भुवना?
3: हाँ।

0: अच्छा, और कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं? ये तो हमारे इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े फेस्टिवल्स हैं जिनकी हमने बात की।
1: हाँ दीदी,
0: क्या कोई ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी हैं जो आपके घर पे या फिर आपके आसपास बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, या आपको कुछ खास पसंद है?
1: हाँ दीदी, मुझे मकर संक्रांति भी बहुत है।
2: मुझे भी बहुत
0: मकर संक्रांति।
3: हाँ दीदी, उसके अंदर अलग अलग तरीके के मंजे लेकर आते हैं और ना पतंगों को काटने में बड़ा मजा आता है।
4: मुझे भी संक्रांति बहुत पसंद है दीदी, लेकिन मुझे पतंग उड़ाना नहीं।
0: तो फिर क्या अच्छा लगता है भूमनाथ में?
4: पतंग देखना उड़ते हुए।
0: पतंग उड़ते देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बात तो बिल्कुल सही है। और पंकज को क्या अच्छा लगता है मकर संक्रांति में?
1: मुझे मकर संक्रांति पे उस बंदे की पतंग काटना अच्छा लगता है जो अपने आसपास के सारे पतंगों को काट कर अकेले मजे में उड़ रहा हो।
0: अच्छा, मतलब जो सबकी पतंग काट रहा हो आप उसकी पतंग को काटना चाहते हैं?
1: हाँ दीदी, और मैं काट भी देता हूँ।
2: सिखा आखिर मैंने, है ना?
0: अच्छा, मतलब सैंडी आपकी पतंग टीचर है?
2: हाँ।
1: सिर्फ यहाँ बोल रहा है, नहीं।
2: हाँ, सिखाया मैंने।
0: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
3: मुझे पतंग जब उड़ाते हैं ना, तो एक बार मैं और मेरे पापा ने क्या किया था, एक पिंक कलर की पतंग थी जो हमारे इलाके में करीब जितनी भी पतंगें उड़ रही थी ना, खच खच खच खच उसको काट रही थी। तो पापा ने पतंग नीचे उतारी, दो घिरियां लेकर आए, दोनों को एक पतंग में बांध दी, दो मंजे से उड़ाना चालू कर दिया। दो मंजे से उड़ा रहे थे, वो हमसे आया टक्कर लेने, ऐसे आया अड़ती चली गई। ओ वहां से चिल्ला रहा, भैया क्या किया हमने, बोला दो दो मन जैसे उड़ा रहे हैं।
2: ये तो आइडिया पहली बार सुना हम लोगों ने,
1: लेकिन ये चीटिंग है।
3: तो क्या हुआ, जीत तो जाते हैं ना।
0: कोई भी फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए मनाया जाता है कि नहीं? जीते या हारे मजा आना चाहिए बस, है ना? अब पतंग उड़ाना तो हम सबको अच्छा लगता है, बस
4: आना चाहिए दीदी।
0: तो कौन उड़ाता है भूपना तुम्हारे घर में पतंग?
4: कोई नहीं दीदी।
0: आप बस छत पे जाके देखते हो?
4: हाँ।
0: और एंजॉय करते हो ना? बस वही तो इम्पोर्टेंट है।
1: लेकिन पतंग देखने में भी अच्छा लगता है।
4: हाँ,
0: पतंग आसमान में जब उड़ती है रंग बिरंगी तो बहुत सुंदर लगती है।
2: और पतंग उड़ाने के बाद जो भूख लगती है ना, उसके बाद खाने में और मजा आता है।
0: हाँ, और फेस्टिवल्स की सबसे खास बात कि खाने को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलता है।

0: ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है जो किसी त्योहार के दिन हुआ हो और अभी तक आपको याद है?
1: हाँ दीदी, मेरे साथ एक बार हुआ है। हमारे घर में जब भी नवरात्रे की पूजा हो रही थी ना, तो 3 साल तक क्या हुआ था कि जब भी नवरात्रि का जिस दिन 9वां दिन होता था ना, जिस दिन हमारे घर में हवन होता था, कुछ ऐसा बात हो जाता था ना कि पापा को मेरे पे गुस्सा आ जाता था और मेरे आंसू टप टप आंसू। 3 सालों से ऐसा हो रहा था और पिछले साल मैंने नोटिस किया मेरे आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा।
0: और ये चेंज कैसे आया?
1: ये चेंज आया कि पापा के सामने मैं बहुत कम आ रहा था।
0: मतलब पापा अगर डांटते हैं तो आप उनके सामने कम जाते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, नहीं ठीक है, बच्चों अगर कोई चेंज लाना है तो कोई भी तरीका अपना के आप उस चेंज को ला सकते हैं।
2: दीदी, मुझे नवरात्रि भी अच्छी लगती है क्योंकि गरबे खेलते हैं ना 9 दिन।
0: हाँ।
2: और मुझे खेलना भी आता है
3: और मुझे थोड़ा थोड़ा आता है और लोग मुझे देख के हंसते हैं, इसलिए मुझे और मजा आता है।
2: और गरबे मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने सिखाया, ये तो बात तो झूठ बोलना ही मत।
0: अरे वाह, मतलब सैंडी गरबा खेलते हैं, तो फिर सैंडी को तो हम सबको गरबा सिखाना पड़ेगा।
2: ठीक है।
3: सैंडी को बस अपनी वाह वाह ही चाहिए।
2: गरबा खेलना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मुझे ये हमारे पास में एक फ्रेंड है, वो गुजरात से बिलोंग करता है, उससे आता, उसने मुझे सिखाया।
0: हाँ, गुजरात में तो गरबा बहुत खेला जाता है,
2: फेमस है वहाँ।
0: आखिर वो वहाँ की तो डांस है।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। और उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? सब लोग मिलके ऐसे कर सकते हैं,
2: मिलके खेलते हैं, वो मजा आता है,
0: है ना। और डांस करना और गरबा करना किसको अच्छा लगता है?
1: मुझे भी
0: सबको अच्छा लगता है।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आपको गरबा आता है कि नहीं?
4: हाँ आता है।
1: लेकिन मुझे नहीं आता। मेरे को सिर्फ गरबा में एक स्टेप आता है, एम बनाना, वो भी ढंग से नहीं कर पाता। जहाँ गोल गोल घूमते वहाँ जाके बस हाथ हिला के आ जाता हूँ, बोले मैंने गरबा खेल लिया।
2: इसमें भी मजा है।
1: हाँ।
2: जब अपने को नहीं आता, नहीं कोई देखता है ना, फिर हंसता है तो मजा आता है।
1: किसी के हंसी का हम कारण बने, उसको खुशी मिलती है तो हमको भी अच्छा लगेगा।
0: ये बात तो आपने,
2: और गरबा तो मेरे घर के आगे होता है।
0: खुशी मिलनी चाहिए, डांस अच्छा हो नहीं हो, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं?
2: हमने एंजॉय किया।
0: हाँ।

0: अच्छा यहाँ पे गणेश चतुर्थी किस किस को अच्छी लगती
1: है? मेरी फेवरेट है,
2: मुझे भी पसंद है।
1: क्योंकि हम विसर्जन में जाते हैं ना, जो विसर्जन में डांस करते हैं सबसे मजा आता है।
0: और गणेश जी की घर में स्थापना होती है,
2: विसर्जन में डांस करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि उसमें डांस करने का कोई तरीका नहीं होता।
1: जैसा आए वैसा करो।
0: बिल्कुल, जैसा मन करे वैसा करो।
2: हाँ दीदी।
0: और शुरुआत कैसे होती है गणेश चतुर्थी की?
1: गणेश चतुर्थी की शुरुआत तो हमारे कॉलोनी में मेरे घर के आगे रखते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि हमारे कॉलोनी में तो पहले की गणेश जी की मतलब आज स्थापना करनी है, तो दो दिन एक दिन पहले जाएंगे गणेश जी की मूर्ति अच्छी सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम क्या ढोल नगाड़े की मूर्ति लेके आते हैं, ढोल नगाड़े से लेके आते हैं, फिर पंडित जी को बुलाते हैं, फिर मुहूर्त देखते हैं कि हाँ किस मुहूर्त में स्थापना करनी है, फिर उस मुहूर्त में स्थापना करते, फिर हमारे कॉलोनी में से कोई भैया मतलब बैठते पूजा के लिए, फिर स्थापना करके उसके बाद से फिर शाम को प्रोग्राम रखते हैं मतलब आरती का, गणेश जी की आरती सुबह शाम करनी पड़ती है, तो शाम को हमारे यहाँ मतलब आरती की बोली भी लगती है।
0: आरती की बोली?
1: हाँ, तो मतलब इसमें कि जो मतलब अच्छी बोली लगाता है वो मतलब शाम की आरती करता है।
2: मतलब गणेश जी की पहली आरती उसे मिलती
1: है? हाँ, पहली आरती उसे मिलती है। फिर ऐसे मतलब जितना दिन रखना हो मतलब उतना गणेश जी को रखते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब सब मूर्तियाँ साथ में निकलती है, तो कम से कम 250 मूर्ति साथ में निकलती है, फिर ट्रैक्टर पे मतलब जो ट्रक होता है उस गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, फिर साथ में डीजे वजे होता है, फिर जाते साथ में, फिर मस्त कपड़े पहन के मतलब गणेश जी का मतलब ड्रेस लाते हैं सबका एक जैसा,
3: ब्लैक ब्लैक जीन्स और ऑरेंज कलर का।
1: हाँ, मतलब जैसा अच्छा लगे, मतलब कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सबका एक जैसा लाते हैं, फिर डीजे लगाते हैं, फिर साथ में यहाँ से डांस करते हुए लेके जाते हैं,
0: डांस करते हुए।
1: हाँ, फिलहाल फेंकते हुए और डांस करते हुए ले जाते हैं, बहुत मजा आता है,
0: खूब मजा आता होगा। हाँ, फ्रेंड्स और फैमिली हर कोई होता है ना।
1: हाँ,
0: और आप लोग ये बताओ कि कोई फेस्टिवल्स की ऐसी चीज भी है जो आपको अच्छी नहीं लगती?
1: नहीं, हमें सारी फेस्टिवल अच्छे लगते।
0: तो आज हमने फेस्टिवल्स के बारे में खूब रंग बिरंगी मीठी खट्टी बहुत ढेर सारी बातें की और हमें बहुत मजा भी आया और हमें ये भी पता चला कि कैसे हम मनाते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें इन फेस्टिवल्स के दौरान बरतनी चाहिए।
4: हाँ दीदी।
0: अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर से करेंगे कुछ ऐसे ही बातें, लेकिन उससे पहले क्योंकि फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे तो फेस्टिवल्स पे तो खूब गाना बजाना और डांस होता है, तो हो जाए एक गाना।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पेड़ों का दर्द, पात्र परिचय, पंकज, आदित्य, वेदांत, यश, आदित्य प्रकाश, उन्नति, लेखिका सुधा पुरी।
3: कितना मजा आता अगर मैं एक पेड़ होता, कितने फल लगते मुझ पर।
4: पर इससे तुम्हें क्या फायदा होता?
3: मजे से खूब सारे फल खाता।
5: पर पेड़ तो अपने फल खा ही नहीं सकता, तुम्हें तो खाद खानी पड़ती।
6: बात तो सोचने की है, नदी अपना जल नहीं पी सकती, पेड़ अपना फल खा नहीं सकते।
4: यानी पूरी की पूरी प्रकृति हमें दूसरों के लिए जीना सिखा रही है।
7: मम्मी भी पहले सबको खिलाकर बाद में खाती है।
6: हम भी क्या ले बैठे हैं सुबह सुबह, चलो वहाँ योग की कक्षा में ध्यान सिखा रहे हैं आज।
4: मेडिटेशन, चलो चलो।

0: धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मस्तक के बीचों बीच ध्यान ले जाए। विचारों को साक्षी भाव से देखिए, उन पर विचार न करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए।
1: मुझे इस ध्यान में हमेशा ही आनंद आता है, पर ये क्या ऐसा लग रहा है पेड़, हवा, पृथ्वी, जल सब बातें कर रहे हैं। ये यहाँ है, जैसे ये पेड़, ये हवा, ये जलाशय, ये पृथ्वी, ये सब मेरी ओर आते हुए कुछ कह रहे हैं। इधर से चुपके से सुनती हूँ।

0: मैं भी सुन पा रहा हूँ साफ साफ प्रकृति के सब अंगों की बातें।
1: लगता है योग कर करके हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। अब हम प्रकृति को और स्पष्ट सुन पा रहे हैं। देखो वहाँ योग की कक्षा चल रही है।
2: तो हम भी तो हाथ से योग कर रहे हैं।
3: आज ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इन सब प्रकृति के अंगों की सब बातें हम साफ साफ सुन पा रहे हैं।

0: ओह, तो क्या कह रहे थे कल तुम सब? ये धरती विनाश की ओर ही बढ़ रही है। विनाश नहीं, घोर विनाश।
1: पर ये आप कैसे कह सकते हो?
0: मैं पेड़ हूँ और वनों की तीव्रता से नष्ट होने से परेशान हूँ।
2: मतलब?
0: कोई समझ ही नहीं रहा है।
3: क्या पेड़ भैया?
0: अरे यही कि वन धरती के फेफड़े हैं। आपके फेफड़ों को ही कोई नष्ट कर दे तो क्या आप जी सकेंगे?
3: हैं? ये क्या बात कर रहे हो
0: भाई? इस धरती को अपना ही शरीर समझो और पेड़ों की वनों की रक्षा करो। लेकिन तुम कहाँ सुनने वाले?
2: पर मैं, बल्कि हम सब अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं।
0: उससे क्या होगा?
1: क्यों, क्यों नहीं होगा?
0: हर रोज, जी हाँ, हर रोज पूरे विश्व में एक फुटबॉल कोर्ट जितना वन नष्ट कर दिया जाता है। भूमध्य रेखीय वन कितनी तीव्रता से नष्ट हो रहे हैं, कुछ अंदाजा भी है?
3: हे भगवान, पर क्यों?
0: मानव की जरूरतों और प्रगति के लिए।
4: हे ईश्वर, कितनी अंधेर गर्दी है प्रगति के नाम पर।
0: प्रगति या जनसंख्या में वृद्धि?
2: मतलब?
0: मानव की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे के पूरे वन ही साफ। उफ।
4: फिर कहते हो, आह कितनी गर्मी हो रही है।
5: उफ, कितनी सर्दी है।
3: कहीं बारिश का कहर है तो कहीं आंधी तूफान का, सुनामी और ना जाने क्या क्या।
1: वो तो है ही।
3: तुम सब अपने जीवन काल में ही वो परिवर्तन देख पा रहे हो मौसमों के, जिनको की सदियां लग जाती थी। वो क्या कहते हो तुम? क्लाइमेट चेंज
0: और ग्लोबल वार्मिंग।
5: कुछ ऐसा ही हुआ था आइस एज में, जब सब एक बार को तो नष्ट हो गया था।
2: हम भारतीय तो पेड़ों को पूजते हैं।
0: हाँ पूजते हैं, राजस्थान में गणगौर के समय,
3: उत्तर प्रदेश में तीज पर,
5: दक्षिण भारत में पोंगल पर,
2: पूरी भारत में बीहू पर,
0: पंजाब में बैसाखी और संक्रांत पर,
5: और गुजरात में मकर संक्रांत पर।
0: क्या कुमकुम लगाते हो, जड़ों के पास अगरबत्ती, प्रसाद के ढेर लग जाते हैं।
5: दूध दही की बारिश कर देते हो उस एक दिन तो।
0: कितना सुंदर नृत्य किया है मेरे इर्द गिर्द इन सब महिलाओं ने। पर फिर बाद में क्या?
2: बाद में मतलब? बाद में भी हमारे मन में श्रद्धा होती है।
0: सिर्फ श्रद्धा से पेट नहीं भरता साहब, पूजा तो आप हम पेड़ों की बहुत करते हैं, पर उनमें पानी देने से कतराते हैं।
2: क्या कभी किसी ने किसी पेड़ का जिम्मा उठाया है?
5: कई संस्थाओं के लोग दिखावे के लिए पेड़ तो लगाते हैं, फिर मुड़कर भी नहीं देखते कि उसका क्या हुआ।
0: जैसे ये काम किसी और का है, उन्हें तो पेड़ लगाते हुए फोटो खिंचाकर अखबारों की सुर्खियां बटोरनी थी बस।
4: लेकिन वो अब कहूँ भी क्या, ये पेड़ क्या समझेगा हम मानवों के सामाजिक झमेले, करना पड़ता है।
2: कभी उदाहरण बनाने के लिए है ना दीदी?
4: और क्या, कभी सिर्फ सांकेतिक रूप से संदेश देना पड़ता है, या जैसे किसी अधिकारी को किसी नई योजना के शुभारंभ का संकेत करते हुए, तो फिर जैसे वो पेड़ लगा के, है ना?
2: और मेरी सुन लो साहब, मैं पानी हूँ पानी।

0: ये तो स्पष्ट कुछ कह रहे हैं। ये सारा माजरा है क्या?
1: पेड़ भैया, तुम्हारी जड़ों के आसपास ये जो सीमेंट लगाकर पटरियों पर तुम्हारी सीमा रेखा तय करते हैं ना, ये मानव
0: कहने का तो बड़े वैज्ञानिक बनते हैं।
2: ये भी नहीं समझते कि आपके तने के अंत से बहुत दूर तक तुम्हारी जड़े फैली होती है और उनका सबसे दूर वाला छोर ही पृथ्वी से तुम्हारे लिए हवा और पानी बटोरता है।
3: तुम्हारे तने के आसपास सीमेंट लगा देने से जैसे तुम्हारी जड़ों की सांस ही थम जाती है, पानी क्या खाक बटोरेगी?
1: फिर देखो ना अपने पत्तों का हाल, एकदम निर्जीव और पीले पड़े हुए हैं।
4: वही तो कह रहा हूँ, ये मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये हरे भरे पत्ते ही तो हैं जो इनका छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इनके काम आने वाले ऑक्सीजन में बदलते हैं, अपने साथ साथ इनके लिए भी भोजन बनाते हैं।
0: ठीक ही तो है, और कपास से कपड़ा और लकड़ी से मकान,
1: यानी रोटी कपड़े और मकान का फुल पैकेज।
4: सुना तो है अब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं ऐसे सीमेंट के चबूतरे हटाने के लिए, कुछ एनजीओ भी इसमें मदद कर रहे हैं, पर वही ना, लातों के भूत
5: बातों से नहीं मानते।
2: नौबत यहाँ तक आ गई कि राष्ट्रीय स्तर पर बात उठानी पड़ी, प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान।
4: साफ सफाई जैसी मौलिक बात भी अभियान के रूप में उठानी पड़ रही है।
1: ठीक कहते हो पेड़ भाई, नए नए बड़े कार्यक्रम तो बहुत शुरू करते हैं, पर साथ साथ कूड़े के ढेर भी लगाते जाते हैं।
0: दीदी ये सब प्रकृति के अंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह मानवों की कहाँ की अकलमंदी है।
4: पर यह स्वच्छता अभियान एक आदमी या संस्था का नहीं, पूरे मानव जाति का है।
3: मैं भी मानव की इस मूर्खता से हैरान हूँ। और तो और, मैं तो सभी जलाशयों, नदी, तालाब, समुद्रों, महासागरों के प्रदूषित होने से परेशान हूँ। ये सब प्रदूषित हुए तो समझ लो दो तिहाई धरती प्रदूषित।
1: इतना गणित तो जानते ही होंगे ये बुद्धिमान मानव, या भूगोल ही सही, पढ़ाई तो बहुत करते रहते हैं।
5: बस करो अब, बस करो, समझ लो अब, समझ लो, मत करो मत करो मत करो।

0: पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा,
1: लुट गए मामा।

इन पे टैक्स खर्चूंगी। अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स खर्चूंगी। साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा करके लूंगी, अरे कब्जा करके लूंगी। तौबा तौबा आग की छोरी बन गई एक ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे। अरे डबल रोटी को टांगे। ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ। एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा। लुट गए।

जाने क्यों ठीक है जवाब तो दे। अरे मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने। सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने। अरे दुनिया वाले क्या जाने ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ,

हाथों बेजार, मर गए जीते जी हम यार। चुप बैठूं तो वो नाराज, बोल पड़ूं तो सत्यानाश। यार कहीं से ला दे मुझको तोला भर अफियों।

0: खट्टू भाड़ के टट्टू हो तेरा सत्यानाश, बोल ये तेरे मुंह से कैसी आ जा रही बास।
1: हम तो आज जरा के आए, पी के आओ पिला के आए।
0: अरे बोल कहाँ से पी के आया,
1: ये न समझना चोरी की है, तेरे बाबा के संग पी है।
0: लेता है मेरे बाप का नाम
1: तेरा।

0: बंसी हरी आई हाय
1: छठ गरिया की नाई।

इन बालों का अखाड़ा अखाड़ा हो गया, अपने ही हाथों से खुद अपना

बेटी उलझन में है, प्यार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, वो हो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार बड़ी।